0: कर्मयोग कर्म को एक विज्ञान बना देता है, जिसके द्वारा हम ये जान सकते हैं कि संसार के समस्त कार्यों का सर्वोत्तम उपयोग किस प्रकार करना चाहिए। कर्म तो अनिवार्य है, करना ही पड़ेगा, किंतु हमें सर्वोच्च ध्येय को ध्यान में रखकर कार्य करना चाहिए। कर्म योग का अर्थ है मौत के मुंह में भी जाकर बिना तर्क वितर्क किए सबकी सहायता करना। भले ही हम लाखों बार ठगे जाएं, पर मुंह से एक बात तक ना निकालो और तुम जो कुछ भले कार्य कर रहे हो उसके संबंध में सोचो तक नहीं। निर्धन के प्रति किए गए उपकार पर गर्व मत करो और ना उससे कृतज्ञता की आशा ही रखो। कर्म योग हमें शिक्षा देता है कि सबसे पहले हम स्वार्थपरता के अंकुर के बढ़ने की प्रवृत्ति को नष्ट कर दें और हमें जब इसके दमन की क्षमता आ जाए तो मन को बस वही रोक लें। स्वार्थपरता की इन लहरों से उसे मत बह जाने दें। कर्मयोग हमें शिक्षा देता है संसार को मत छोड़ो, संसार में ही रहो, जितना चाहो सांसारिक भाव ग्रहण करो, परंतु वह अपने ही भोग के निमित्त हो तो फिर तुम्हारा कर्म करना व्यर्थ है।
1: सुप्रभात, नमस्कार। एक नई सुबह, एक नई उम्मीद और एक नई ताजगी के साथ यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM है, जिसका प्रसारण किया जा रहा है 103.1 MHz पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस वक्त सुबह के 5:55 हो रहे हैं। इसी के साथ ही आरंभ होती है हमारी आज की प्रभातकालीन प्रसारण सभा। इस सभा को सुनने वाले आप सभी श्रोताओं का मैं उद्घोषिका पूरा दुनिया आकाशवाणी ईटानगर के स्टूडियो से हार्दिक स्वागत करती हूँ। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ है स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। आज सन 2024 की मई महीने की 23 तारीख है और दिन है शनिवार। रोजाना की तरह आज भी हम इस सभा में आपके लिए पेश करेंगे ढेरों ज्ञानवर्धक एवं मनोरंजक कार्यक्रमों के साथ देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरें। तो आइए सभा की शुरुआत करते हैं।

श्रोताओ, सभा की शुरुआत करने से पहले आइए आप सबको जानकारी दे देते हैं आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा में अब से लेकर सुबह के 11:10 तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। अब से थोड़ी ही देर बाद यानी 6 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचारों को 6:10।

समाचार 7:40 पर आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सदाबहार। सुबह के 8 बजे से लेकर 8:40 तक बारी बारी से आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज तथा आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से प्रसारित नॉर्थ ईस्ट न्यूज।

0: सुबह के 10:10 पर आप सुन पाएंगे आप सबको पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। ग्यारह बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचार। तो दोस्तों, ये थे अब से लेकर सुबह के 11:10 तक प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों का रूपरेखा। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। अब से थोड़ी ही देर बाद आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। उन्होंने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: दोनों नेताओं ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र के ढांचे के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक समझौता को शीघ्र अंतिम रूप देने और अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने आतंकवाद के प्रति अपनी शून्य सहिष्णुता के दृष्टिकोण को भी दोहराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज कोलकाता पहुंचेंगे। ये उनकी पहली भारत यात्रा है। श्री रूबियो नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मुतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलू की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में इन्वेस्टमेंट कंपनी इंस्टीट्यूट ऑफ द अमेरिका के एशिया और ग्लोबल एनालिटिक्स के प्रबंध निदेशक मैथ्यू मोहले कैंप से मुलाकात की और भारत की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश के अवसरों पर चर्चा की। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि चर्चा का मुख्य केंद्र प्रौद्योगिकी, अवसंरचना, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल व्यवस्था सहित उच्च विकास वाले क्षेत्रों में अमरीकी संस्थागत निवेश को मजबूत करना, साथ ही विनिर्माण, नवाचार और रोजगार सृजन को बढ़ावा देना था। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता के अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी है। मंत्रालय ने कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर अस्थायी दबाव को तेल विपणन कंपनियों द्वारा निरंतर आपूर्ति निगरानी और समन्वित वितरण प्रयासों के माध्यम से दूर किया जा रहा है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में पुणे से एक और महिला को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान मनीषा हवलदार के रूप में हुई है, जिन्हें राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी NTA द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया गया था। अब इस मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में

0: In South Sudan, while Major Radhika Sen received the award in 2023 for her work with the UN Stabilization Mission in Congo. US Director of National Intelligence Tulsi Gabbard has announced her resignation from the post. Ms. Gabbard said she will step down from her position effective 30th of June after her husband Abraham Williams was diagnosed with an extremely rare form of bone cancer. In IPL cricket, Sunrisers Hyderabad defeated Royal Challengers Bengaluru by 55 runs in Hyderabad last night. Today, Lucknow's Super Giants will take on Punjab Kings in Lucknow at 7:30 this evening. And that is the end of this news bulletin.
1: श्रोताओ अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी और अंग्रेजी में समाचारों को। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे कार्यक्रम भक्ति गीत। इस कार्यक्रम के तहत आज आप सुन पाएंगे जोमनिया सिरम और पार्टी की आवाजों में गालो दोनी पुलो डिवोशनल सॉन्ग।

0: अभी आपने सुना डोमिनियन सिराम और पार्टी की आवाजों में गालोर दोनीपोलो डिवोशनल सॉन्ग। इसी के साथ ही भक्ति गीत समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे गालोर श्रोताओं का समाचार।
1: हे आकाशवाणी ईटानगर तनगदम रोगम जब एमदागला लुसर पोलोग हम गो लोम आर हो घलो मेंकेन अबालोक के मेलेन जिदा नांगो मारियो मत प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मुग अलग लोक के लग 51,000 गो गवर्नमेंट हकोरी पान एक अपॉइंटमेंट पोता एमने जिलेन गेबा आगाम जाब एक्सिन आधा आधा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट लोक कमने ओके हिलोने कुद्दा 19 रोजगार मेला के अबालो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे इदागला अल्लू बे मेलन जीता दाग ओगो एक ने 19 रोजगार मेला एमने गुगे देश आरा होक 47 लोकेशन गोलो अलजाब इकता दाग नाक एमला सिन मेम पाजीता दाग ओके कुद्दा 12 लाख रिक्रूटमेंट लेटर गोसिन जिलेन ये एमदाग एक सिन 18 रोजगार मेला के आरा लोकम ने होकपोलो के हम निगो लोक एन तारीख ओगो अपर सिमोसरी डिस्ट्रिक्ट लोक नि दो कोदिया माज बे ओदाक ओगो नीलिंग ओके गुबा सर्कुल लोक आरसीसी द लोगो नाम आको कानगो ब्यूलिंग नाम गो ओके कुदा इसरिक एकना गदम ने पुम लाला इंगम ग तुकु ओगो एकना पुम इंगम गनम रु गदम ने अपर सिमोसरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर निगो ग दकागो तागो तु एम्बे कागो तागो दकला तिंग अलुक ना नाम रूम तुम गदम ने मेंकेन हितु सरकारी गे पेले लोक यादना कागुर तागुर सा गो कादंग नादु ओगो स्कीम ओक पांद गो जिले नाम गो कादु बोलोसिन अलजब काज तोल पक एमला तोके योकला गोमरेग लरेक तुकु सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई पेले लोक मेनलेन मेनला क्लास 12 गद गे एंसर्स बुक एमने अलिब कादर तादर नाम ला ओगो स्कीम इनाम लगाबे होक पोलोग अलोग अलो अलो लोबे होमोय अमने एक्सटेंड का कारण मुनुक रिजल्ट ग मार्कशीट अबा अमने अलिब होमोय गो लालें गेकला री इवलेशन इरु कुप लागे ओक लगाब एकना अबा अमने लोमला चेक के मदुना के अमला सिन अलजाब मेंकेन जीता तु ओक लगाब ये कैंडिडेट मुनु अलिब आयग मार्कशीट अमने लकें गो ता चेक इदि रु काए अमला मुन गोन गो कादु बोलो लकुदा ऑनलाइन लो अप्लाई रु कातला का अमला सि मेंदी रिसेजी दाग सीबीएसई पेले लोक मलोग लुगो आलो हुकुरबार ओगो अपर सिमोसरी डिस्ट्रिक्ट लो स्टेट पुट कमिश्नर चेयरमैन तार थाराक मु दुखी दुकुला रिव्यू कबागो दुखतु डिपार्टमेंट लोग निगम नीति का दम ने अगर सेंट्रल एंड स्टेट फ्लेक्सी प्रोग्राम आरालो ओक दुना नेशनल पुट सिक्योरिटी एक्ट आरालो AAY SNP HEF ओक PM पोषण स्कीम्स अमने जिलेंगे ला लगे कु हक ना आरा लोक बेनिफिशरीज अबा गदम ने अल्लू बे पारु निग्रु दुख ना बे अमला दुखुंगे तो ओक चेयरमैन मु मेंटला हक ना अबा लोक अमने अल्लू बे बेनिफिशरीज अमने हिलोलो बे अलजा बे पामा म येन गो कादु बोलो सिन एक एक ना गदम अल्लू बे मदर कादर गेकला पाम रू तो लाका अमला दिन से जाब कबालो के दूलग ना गदम ने मेंकेन हितु तानगा दुनु गालो मेंकेन आगम हिम आकाशवाणी ईटानगर लोक के तापदु मलोग लुगो आलो हुकुरबार ओगो मेचुका ओक मोनीगाव मोकलो 12 इंटरनेशनल योगा दे आद आनिकलेले दुख नाक एमला इरगा जाब लोदुम गका एकना योगा आलो एमने स्पियर हेड डिविजन अंडर द एजिस ऑफ स्पियर क्रॉप्स गद इगमेंग तु ओक एकना योगा अबा एमने अनि दिक्कुब इंडियन आर्मी गद इगमेंग कंबदु मुनु healthy living discipline ok mental wealth wellness am panam laga ba aljab ibagadna ke amdo ok munu yoga in lok alo yelik dulik na ruga damne menken hitu karta tan lui pologa ham go lok entare 21 amne international yoga de sin ata du kunna ke oxi munu alub lodum kam balajka amla akenak nemne mempajitu arunachal pradesh state transport service apst gadga APST अमला नमीन मिनलें कुना में अनि हमगो 50 इयर्स गोब इदा कुना के अमला गोल्डन जुबली अमीन ब नेहरू स्टेडियम कोनसा तिरप डिस्ट्रिक्ट लो मैराथन रेस दुक्का हिनाम गो इगमेंग तो मलोग अलोलो ओके एक ने दुक्का हिक लोक विनर्स गदम ने hokpolo ga 29 tarik amne prize amne jilen yeku amla menjitu ok ekne dukka hiklo ananyama amne adagbe ok asab ga damne adagbe prize am sin lejitu ok first prize amne 10,000 go ok second prize amne 5,000 ba lejitu mak amla sin menpa jidak care blooming early interventions and living center arunachal life saving foundations ok ngo ga de ok ayang multipurpose cooperative society limited ga de bakengo ba idum hidagla hokpolo ga 24 allone ga alumne arke mission hospital itanagar lo blood donation camp go iktada munuka team amne donate blood for inclusive futures amla letu ok weather abalo meteorological center itanagar pelelok menda lower sibonsri leparada siang lower siang west siang east siang ok tirap district gadrulo nido kodia majba ola ogo taurbe ok nidu asin majba atba doido yak basin equal pak amla sin mem pa jida ka tan ga da hir ga ghalo men ken agma ega
0: अभी आप सुन रहे थे गालो श्रोताओं का समाचार। दोस्तों बता दूं, अगर आप गालो श्रोताओं का पूरा कार्यक्रम सुनना चाहते हैं तो आप ट्यून इन कर सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मेधुमय 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर, या फिर आप न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप के द्वारा भी हमारे कार्यक्रमों का आनंद ले सकते हैं। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। दोस्तों आप सुन पाएंगे कार्यक्रम सुबह सवेरे, जहां बात करते हैं हमारी स्वस्थ जीवन शैली की और साथ ही पेश करेंगे चंद खूबसूरत नगमे।

दोस्तों, आज इस कार्यक्रम के तहत हम बात करेंगे योग, कुछ योग आसनों और उनके फायदों के बारे में। योग सिर्फ शरीर को फिट रखने का माध्यम नहीं, बल्कि मन को शांति और जीवन को संतुलन देने की एक प्राचीन कला भी मानी जाती है। आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग स्ट्रेस, बॉडी पेन, नींद की कमी और थकान जैसे कई समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में योग एक ऐसा साथी बन सकता है जो शरीर और मन दोनों को तंदुरुस्त रखने में मदद करता है। तो चलिए, आज इस कार्यक्रम के माध्यम से जानते हैं कुछ बैठकर किया जाने वाला योगासनों के बारे में, जो बिगिनर्स के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। सबसे पहले बात करते हैं सुखासन की, जिसे इजी पोज भी कहा जाता है। ये एक बहुत सरल और शांत बैठने वाला योगासन है, जिसमें पैरों को क्रॉस करके सीधा बैठा जाता है और हाथों को घुटनों पर रखा जाता है। इस योगासन को ध्यान और प्राणायाम के लिए बहुत उत्तम माना जाता है। सुखासन करने से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है, पोस्चर सुधरता है और मानसिक तनाव कम होने लगता है। जो लोग मेडिटेशन शुरू करना चाहते हैं, उनके लिए ये एक बेहतरीन आसान माना जाता है।

इसके बाद आता है ब्रजासन, जिसे थंडर बोल्ट पोज भी कहा जाता है। ये एक ऐसा योगासन है जो खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। इसमें घुटनों को मोड़ कर एड़ियों पर बैठा जाता है। ब्रजासन को पाचन क्रिया यानी डाइजेशन सुधारने के लिए बहुत फायदेमंद माना गया है। ये गैस और एसिडिटी की समस्या में राहत पहुंचा सकता है और साथ ही शरीर को शांत करने में भी मदद करता है। नियमित रूप से ब्रजासन करने से लोअर बैक पर पड़ने वाला दबाव भी कम हो सकता है।

अब बात करते हैं पश्चिम मोता संघ की, जिसे सीटेड फॉरवर्ड बेंट के नाम से भी जाना जाता है। इस योगासन में पैर सीधा रखकर धीरे धीरे आगे की तरफ झुकते हुए पैरों को छूने की कोशिश की जाती है। ये योगासन रीढ़ की हड्डी, कंधों और हैमस्ट्रिंग्स को स्ट्रेच देने में मदद करता है, साथ ही पीठ दर्द, स्ट्रेस और शारीरिक थकान को कम करने में भी ये काफी लाभदायक माना जाता है। इस योगासन से मन को शांति मिलती है और नर्वस सिस्टम भी आराम पहुंचता है।

दोस्तों बातचीत हम आगे बढ़ाएं उससे पहले आइए कार्यक्रम का सबसे पहला गीत सुनते हैं ट्रैफिक फिल्म से नेकी की राह पर अरिजीत सिंह की आवाज में।

अरुण FM 103.1 MHz पर आप सुन रहे हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम, जहां हम बात कर रहे थे बैठकर किया जा सकने वाले कुछ योग आसनों के बारे में। तब बात करते हैं बद्ध कोणासन की, जिसे बटरफ्लाई पोज भी कहा जाता है। शरीर के लोअर बॉडी हिस्सों के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। इसमें पैरों के तलवों को आपस में मिलाकर तितली के पंखों की तरह घुटनों को ऊपर नीचे हिलाया जाता है। ये योगासन हिप्स और थाइस को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है। महिलाओं के लिए भी ये योगासन काफी उपयोगी माना गया है, क्योंकि यह मेंस्ट्रुअल डिस्कम्फर्ट को कम करने में मदद करती है। वही दोस्तों, अर्ध मत्स्येन्द्रासन, जिसे हाफ स्पाइनल ट्विस्ट भी कहा जाता है, इस योगासन में शरीर को कमर से मोड़कर एक तरफ घुमाया जाता है। ये रीढ़ की हड्डी को फ्लेक्सिबल बनाने में मदद करता है और पीठ और कमर के जकड़ को कम करने में सहायक माना जाता है। इस योगासन को डाइजेशन सुधारने और पेट के अंदर के अंगों को एक्टिव रखने के लिए भी फायदेमंद माना जाता है। नियमित रूप से इस योगासन को करने से शरीर हल्का और एनर्जेटिक महसूस होती है।

तो दोस्तों ये थे कुछ आसान योगासन से आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर हैं तो भी आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं। याद रखिए, योग को अगर नियमित रूप से किया जाए तो ये सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि मन को भी तंदुरुस्त बनाने में मदद करता है। योग करने से बॉडी फ्लेक्सिबल बनती है, मसल स्ट्रांग होते हैं और शरीर में एनर्जी बनी रहती है। इसके साथ ही योग स्ट्रेस और एंग्जाइटी को कम करने, नींद को बेहतर बनाने और ब्लड सर्कुलेशन सुधारने में भी सहायक माना जाता है। नियमित योग से पोस्चर इम्प्रूव होता है, डाइजेशन बेहतर होता है और क्रोनिक पेन यानी लंबे समय के दर्द में भी राहत मिल सकती है। लेकिन ध्यान रहे, योग हमेशा धीरे धीरे और सही तरीके से करना चाहिए। किसी भी योगासन को जबरदस्ती करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। अगर किसी को गंभीर दर्द, सर्जरी या कोई बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम हो तो डॉक्टर या सर्टिफाइड योगा ट्रेनर की सलाह जरूर लेनी चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों आज के स्वस्थ जीवन शैली की बातचीत में इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं सुबह सवेरे कार्यक्रम का अगला गीत, दिल है तुम्हारा फिल्म से छाया है जो दिल पे क्या नशा है, कविता कृष्णमूर्ति और शान की आवाजों में।

दोस्तों, कार्यक्रम का अंतिम गीत आपने सुना, मैं हूं ना फिल्म का किसका है तुमको इंतजार, सोनू निगम और श्रेया घोषाल की आवाज में। इसी के साथ ही सुबह सवेरे कार्यक्रम का ये अंक ही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफ एम 103.3

अभी आपने सुना आप पतनी श्रोताओं का समाचार। आप पतनी श्रोताओं के आगे के कार्यक्रमों को आप सुन सकते हैं आकाशवाणी ईटानगर का मीडियम वेव 444.4 मीटर यानी 675 किलोहर्ट्ज तथा DRM 666 किलोहर्ट्ज पर। आप बने हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। अब आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट, जहां हम आपको बताएंगे आज के यानी 23 मई की हिस्टोरिकल इवेंट्स और साथ ही द अरुणाचल टाइम्स की न्यूज हेडलाइंस।

दोस्तों मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम के आरंभ में जानते हैं इतिहास के पन्नों में और जानते हैं क्यों खास है आज का दिन। भारत और विश्व इतिहास में 23 मई का अपना ही एक खास महत्व है, क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज होकर रह गई। तो आइए नजर डालते हैं 23 मई की ऐसे ही कुछ ऐतिहासिक घटनाओं पर। तेईस मई 1919 को गायत्री देवी का जन्म लंदन में हुई थी। वे जयपुर के राजघराने की महारानी होने के साथ साथ अपनी खूबसूरती, आधुनिक सोच और समाज सेवा के लिए भी जानी जाती थी। उन्होंने महिलाओं की शिक्षा और सशक्तिकरण के लिए कई महत्वपूर्ण काम किए। राजनीति में भी उनकी मजबूत पहचान रही और वे लोकसभा सदस्य भी चुनी गई। एक समय उन्हें दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिनी जाती थी। द्वितीय विश्व युद्ध के अंतिम दौर में नाजी जर्मनी के सबसे शक्तिशाली नेताओं में से एक हेनरिच हिमलर ने 23 मई 1945 को आत्महत्या कर ली। वे अडोल्फ हिटलर के बेहद करीबी सहयोग थे और एसएस नामक नाजी संगठन के प्रमुख भी रहे। युद्ध में जर्मनी की हार के बाद उन्हें ब्रिटिश सेना ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के कुछ समय बाद उन्होंने जहर खाकर जान दे दी। ये घटना नाजी शासन के अंत के एक बड़ा प्रतीक मानी जाती है। तेईस मई 1945 को फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी यानी पश्चिमी जर्मनी की स्थापना को आधिकारिक मंजूरी मिली। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी दो हिस्सों में बंट गया, पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ा और बाद में यूरोप की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो गया। आगे चलकर 1990 में दोनों जर्मनी फिर एक हो गए। बचेंद्री पाल 23 मई 1984 को माउंट एवरेस्ट चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उत्तराखंड के एक साधारण परिवार से आने वाली बचेंद्री पाल ने कठिन परिस्थितियों के बावजूद अपने सपने को पूरा कर लिया। उनकी इस उपलब्धि ने देश की लाखों महिलाओं को बड़े सपने देखने की प्रेरणा दी। 23 मई 2016 को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अपने पुनः उपयोग किया जा सकने वाले स्पेस शटल RLV-3D का सफल परीक्षण किया। ये भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक बड़ी उपलब्धि थी। इस तकनीक का उद्देश्य भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों की लागत कम करना और स्पेस यात्रा को अधिक किफायती बनाना है।

30 मई 1995 को भारत में लागू TADA यानी टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज एक्ट समाप्त कर दिया गया। ये कानून आतंकवाद और हिंसक गतिविधियों को रोकने के लिए बनाया गया था। हालांकि समय के साथ इस कानून के दुरुपयोग को लेकर कई सवाल उठे। मानवाधिकारी संगठनों और राजनीतिक दलों ने इसकी आलोचना की, जिसके बाद सरकार ने इसे समाप्त करने का फैसला लिया। दोस्तों, इतिहास के पन्नों से आज बस इतना ही। लेते हैं एक छोटा सा संगीत अंतराल, उसके तुरंत बाद हम नजर डालेंगे दी अरुणाचल टाइम्स की न्यूज हेडलाइंस पर। मॉर्निंग इंफोटेनमेंट कार्यक्रम का सबसे पहला गीत आप सुन पाएंगे बिल्लू फिल्म का खुदा या खेर, सोहम चक्रवर्ती, आकृति कक्कर और मोनाली की आवाजों में।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम मॉर्निंग एंटरटेनमेंट में। आइए अब नजर डालते हैं राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों पर। द अरुणाचल टाइम्स की पहली हेडलाइंस है, अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन वर्न्स ऑफ 72 आर बंद ओवर ILP इशूज। अरुणाचल एसटी बचाओ आंदोलन कमेटी यानी ASTBSC ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम देते हुए 72 घंटे बंद की चेतावनी दी है। संगठन का कहना है कि ILP सिस्टम को और मजबूत बनाया जाए और इंडिजिनियस कम्युनिटीज के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अगली हेडलाइन है, कांग्रेस क्वेश्चंस व्हाई CM हैजंट स्टेप डाउन। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री पेमा खांडू को लेकर सवाल उठाया है। पार्टी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा CBI इंक्वायरी के निर्देश के बाद भी उनसे इस्तीफा क्यों नहीं मांगा गया। राज्य की राजनीति में इस मुद्दे को लेकर चर्चा तेज हो गई है। अगली हेडलाइन है, स्टॉर्म वेदर स्लोवर असम IMD वार्न्स ऑफ हैवी रेन इन नॉर्थ ईस्ट। पूर्वोत्तर के कई राज्यों में मौसम ने अचानक करवाहट ली है। असम के लोअर एरियाज में आंधी और तेज बारिश से लोग प्रभावित हुए हैं, जबकि IMD ने अरुणाचल प्रदेश सहित नॉर्थ ईस्ट के कई इलाकों में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। असम राइफल्स किल 2 NSCN के मिलिटेंट्स इन अरुणाचल। चंगलंग जिले के सोंगकिंग गांव के पास असम राइफल्स और मिलिटेंट्स के बीच भयंकर मुठभेड़ हुई, जिसमें NSCN के फैक्शन के 2 मिलिटेंट्स मारे गए। सुरक्षा बलों ने हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया है। अगली हेडलाइन है, गवर्नर स्ट्रेसेस एक्शन अगेंस्ट इलीगल इमिग्रेशन। अरुणाचल प्रदेश के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल KT परनायक ने पुलिस विभाग को इलीगल इमिग्रेशन और ड्रग मैनेज के खिलाफ सख्त कदम उठाने के निर्देश दिया है। उन्होंने इंटरनल सिक्योरिटी और यूथ प्रोटेक्शन पर विशेष जोर दिया। अगली हेडलाइन है, अरुणाचल स्टूडेंट्स फ्रॉम रिमोट एरियाज क्लियर सैनिक स्कूल एग्जाम्स। सरली और डापरजो जैसे दूर दराज क्षेत्रों से कई विद्यार्थियों ने सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन सफलता से पास किया है। इंडियन आर्मी के गाइडेंस और कोचिंग इनिशिएटिव की इस उपलब्धि में महत्वपूर्ण भूमिका रही। अगली हेडलाइन है, सिविल सोसाइटी कंटिन्यूस प्रोटेस्ट ओवर एलिजिड कॉन्ट्रैक्ट इरेगुलरिटीज। अरुणाचल सिविल सोसाइटी ने राज्य में कॉन्ट्रैक्ट अलॉटमेंट से जुड़े आरोपों को लेकर अपना विरोध जारी रखा है। संगठन ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन की मांग कर रहे हैं और इस मुद्दे पर डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट भी चल रहा है। राजधानी ईटानगर से प्रकाशित समाचार पत्रों की सुर्खियों से आज बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, कलयुग फिल्म से जिया धड़क धड़क जाए, राहत फतेह अली खान की आवाज में।
1: लेकिन अब सोएंगे कहाँ?
2: मैं वही जहाँ आधा हिंदुस्तान सोता है।

ये तुम्हारा टिकट और ये पानी, बैग में कुछ खाने का सामान है और ये 100 रुपए रखो तुम्हारे रास्ते के खर्च के लिए।

इसी के साथ ही दोस्तों मॉर्निंग इन्फोटेनमेंट कार्यक्रम यही समाप्त होते हैं। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे तागिन श्रोताओं का समाचार।

अभी आप सुन रहे थे तागिन श्रोताओं का समाचार। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, आप सुन पाएंगे हमारा अगला कार्यक्रम सदाबहार, जहां हम आपको सुनवाएंगे कुछ खूबसूरत सदाबहार पुराने गीतों को। तो चलिए कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं उमराव जान फिल्म से इन आंखों की मस्ती, आशा भोसले की आवाज में।

इसी के साथ ही दोस्तों सदाबहार कार्यक्रम का ये अंक यही समाप्त होते हैं। आप बने हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे

0: रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
1: हर घर सूर्य घर।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रुपए के अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने आतंकवाद से निपटने के लिए बहुपक्षीय प्रयासों को मजबूत करने और संयुक्त राष्ट्र ढांचे में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन को शीघ्र अंतिम रूप देने का आह्वान किया है। दोनों नेताओं ने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने के नीति को दोहराते हुए दोहरे मापदंड, राज्य प्रायोजित आतंकवाद और किसी भी परिस्थिति में आतंकवादी कृत्यों के औचित्य को अस्वीकार कर दिया। नई दिल्ली में कल दोनों नेताओं के बीच हुई वार्ता के बाद दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ द्वारा नामित सभी आतंकियों और आतंकी संगठनों के खिलाफ मजबूत और समन्वित कार्रवाई का आग्रह किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ भारत के रक्षा सहयोग में वृद्धि हुई है।
4: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारत और साइप्रस के बीच सहयोग की अपार संभावनाएं हैं। राष्ट्रपति ने कहा कि भारत और साइप्रस की मित्रता साझा मूल्यों और एकजुटता पर आधारित है।
5: 1962 में हमारे राजनयिक संबंधों की स्थापित के बाद से ही भारत और साइप्रस एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। हमारे जानसीपुर की मित्रता अब से सम्मान, साझा मूल्यों, विश्वास और एकजुटता पर आधारित है। आने वाले वर्षों में भारत साइप्रस के साथ अपने व्यापक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए उत्सुक है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपके मार्गदर्शन और नेतृत्व के साथ हमारी मित्रता निरंतर सुदृढ़ होती जाएगी।
2: राष्ट्रपति मुर्मू ने कल राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के सम्मान में राजकीय भोज का आयोजन किया। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड

0: 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की पर्याप्त उपलब्धता है और आपूर्ति स्थिर बनी हुई है। सोशल मीडिया पोस्ट में मंत्रालय ने नागरिकों को घबराहट में खरीदारी न करने और केवल आवश्यकता अनुसार ईंधन खरीदने की सलाह दी। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल के मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YARNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
2: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
1: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की पहली भारत यात्रा है। ये यात्रा अमेरिका और भारत के बीच आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। श्री रूबियो मंगलवार को नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में हिस्सा लेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोतेगी भी शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि क्वाड बैठक में स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के दृष्टिकोण के अनुरूप जारी पहलों की प्रगति की समीक्षा की जाएगी। बैठक में आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को वर्ष 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं।
3: मेजर अभिलाषा बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। मेजर बराक ये पुरस्कार प्राप्त करने वाली तीसरी भारतीय शांति रक्षक बन गई हैं। इससे पहले मेजर सुमन गवानी को 2019 में और मेजर राधिका सेन को 2023 में ये पुरस्कार मिला था। वर्ष 2016 में स्थापित ये पुरस्कार प्रतिवर्ष संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में तैनात बलों के कमांडरों और मिशन प्रमुखों के नामांकनों में से चुना जाता है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में सैनिकों और पुलिस कर्मियों का सबसे बड़ा योगदान देने वाले देशों में शामिल है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। एक रिपोर्ट।
4: इस दल ने 21 मई को नेपाल की ओर से दक्षिण कोल मार्ग से विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की। अभियान को 19 अप्रैल को बल के मुख्यालय से रवाना किया गया था। स्वच्छ हिमालय ग्लेशियर बचाओ अभियान के अंतर्गत दल ने पर्यावरण जागरूकता गतिविधियां भी चलाई और एवरेस्ट क्षेत्र से गैर बायोडिग्रेडेबल कचरा एकत्र किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस सफलता पर दल को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि दुर्गम भूभाग और कठोर परिस्थितियों में यह उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करके टीम ने बल के आदर्श वाक्य राष्ट्र सर्वोपरि को कायम रखा है। उपलब्धि के साथ बल ने अब तक 232 पर्वतारोहण अभियान पूरे कर लिए हैं। इनमें एवरेस्ट पर 5 सफल चढ़ाई शामिल हैं। बल ने एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, लोहत्से, धौलागिरी और मनालसू सहित दुनिया की 8,000 मीटर से अधिक ऊंची 6 चोटियों पर भी चढ़ाई की है। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: मध्य प्रदेश सरकार ने समान नागरिक संहिता यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया। हैदराबाद में कल टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 255 रन बनाए। जवाब में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु की टीम निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर केवल 200 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी समाचार के विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म की अगली कड़ी में हम प्रसिद्ध वायलिन वादिका एन राजम से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्म विभूषण से सम्मानित किया जाएगा। ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
5: धन्यवाद कनकलता। आरक्षण को लेकर सर्वोच्च न्यायालय का बयान अनेक अखबारों की पहली सुर्खी है। अमर उजाला ने न्यायालय के हवाले से लिखा है, माता पिता में से कोई भी आईएएस अफसर तो बच्चों को आरक्षण क्यों। राजस्थान पत्रिका की ऐसी ही सुर्खी है। जनसत्ता लिखता है, मलाईदार तबके के आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने उठाया सवाल। नीट पेपर लीक केस में एक और शिक्षिका की गिरफ्तारी हिंदुस्तान के पहले पृष्ठ पर है। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है, तीसरी मनीषा फिजिक्स की एक्सपर्ट हुई गिरफ्तार। दैनिक भास्कर लिखता है, अब तक 11 गिरफ्तार, इनमें से 7 आरोपी महाराष्ट्र के। दैनिक जागरण ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का बयान दिया है, नीट यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को कराएंगे शत प्रतिशत त्रुटि रहित। नव भारत टाइम्स ने त्विषा शर्मा मामले में लिखा है, पोस्टमार्टम फिर होगा, त्विषा का 10 दिन से फरार पति हिरासत में। दैनिक ट्रिब्यून ने कुश्ती महासंघ द्वारा पहलवान विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने के अयोग्य घोषित करने पर हाईकोर्ट की कड़ी फटकार की खबर देते हुए लिखा है, प्रतिशोध की भावना से काम ना करें WFI। लोकसत्ता की हेडलाइन है, आसमानी आग में झुलसा देश, पारा 47 डिग्री के पार। जनसत्ता संपादकीय में लिखता है, इस बात पर भी गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए कि आखिर मैदानों के साथ अब पहाड़ भी क्यों तपने लगे हैं। मौसम विज्ञानियों का मानना है कि पहाड़ी क्षेत्रों में वनों की अंधाधुंध कटाई, अवैज्ञानिक तरीके से खनन और पर्यटक वाहनों के बढ़ते दबाव से स्थानीय मौसम चक्र में बदलाव हो रहा है। ऐसे में अगर अब भी हम नहीं तो निकट भविष्य में इसका परिणाम भयावह हो सकता है। एनसीईआरटी की 8वीं की किताब में न्यायपालिका पर विवादित चैप्टर मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 3 शिक्षाविदों को ब्लैकलिस्ट से हटाया, दैनिक भास्कर में है।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में 51,000 से अधिक चयनित युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को 2,86,000 करोड़ रूपए की अधिशेष हस्तांतरण को मंजूरी दी। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो भारत की 4 दिन की यात्रा पर कोलकाता पहुंचे, आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया। और आईपीएल क्रिकेट में मेजबान सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस।
6: Prime Minister Narendra Modi to distribute over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments today.

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित समाचार प्रभात मॉर्निंग न्यूज और आकाशवाणी के शिलांग केंद्र से नॉर्थ ईस्ट न्यूज। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां होती है दिल से दिल की बात।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, सौभाग्य इस बार मेरे लिए जब प्रस्तुत है ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम हेलो ईटानगर।
2: हेलो ईटानगर।

दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम हेलो ईटानगर में। और आज इस शांत सुबह में चलते हैं एक ऐसे विषय की ओर जो हमारे मन और शरीर दोनों को सुकून देता है, जहां दोस्तों बात करेंगे ध्यान यानी मेडिटेशन पर। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि ध्यान करने के लिए कोई खास जगह चाहिए, शांत कमरा चाहिए या लंबा समय चाहिए, लेकिन सच तो ये है कि ध्यान आप कहीं भी कर सकते हैं। सुबह की सैर के दौरान, बस में बैठे हुए, डॉक्टर के क्लिनिक में इंतजार करते समय, या फिर दिन के किसी छोटे ब्रेक में भी। ध्यान कोई नई चीज नहीं है, हजारों सालों से ये हमारी परंपरा का हिस्सा रहा है। पहले ध्यान को जीवन की गहराई, अध्यात्म और आत्मचिंतन से जोड़ा जाता था, लेकिन आज के समय में ध्यान को सबसे ज्यादा तनाव कम करने और मन शांत रखने के लिए अपनाया जा रहा है। ध्यान एक तरह से मन और शरीर के बीच संतुलित बनाने की प्रक्रिया है। जब हम अपने मन को धीरे धीरे शांत करना सीखते हैं, यही वजह है कि ध्यान हमें गहरी शांति और मानसिक स्थिरता देता है। ध्यान के समय हम अपना ध्यान सिर्फ एक चीज पर केंद्रित करते हैं, जैसे सांसों पर, किसी शब्द पर या फिर किसी शांत विचार पर। इस प्रक्रिया में हमारे मन में चल रही लगातार सोच, चिंताएं और तनाव भरे विचार धीरे धीरे शांत होने लगता है। और जब मन हल्का होता है तो उसका असर हमारे शरीर और भावनाओं पर भी दिखता है। यही कारण है कि ध्यान से भावनात्मक और शारीरिक सेहत दोनों बेहतर होता है।

दोस्तों, ध्यान सिर्फ सुकून देने तक सीमित नहीं है, ये हमारी सोचने समझने की क्षमता को भी मजबूत करता है। नियमित ध्यान करने से हमारा ध्यान केंद्रित करने की शक्ति बढ़ती है, फोकस बेहतर होता है और मन भटकता कम है। जो लोग पढ़ाई करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं या फिर रोजमर्रा के फैसले लेते हैं, उन सभी के लिए ध्यान बहुत मददगार साबित होता है। ध्यान से याददाश्त बेहतर होता है, समस्याओं को समझने की क्षमता बढ़ती है और हम चीजों को ज्यादा साफ तरीके से सोच पाते हैं। आज की रिसर्च भी ये बताती है कि नियमित ध्यान दिमाग के सेहत के लिए बहुत फायदेमंद है। ध्यान से दिमाग के उस हिस्से को मजबूती मिलती है जो निर्णय लेने, आत्मनियंत्रण और ध्यान केंद्रित करने से जुड़ा होता है। इतना ही नहीं, ध्यान से दिमाग में याददाश्त और भावना को संतुलित करने वाले हिस्सा पर सकारात्मक असर पड़ता है। इसका मतलब ये है कि ध्यान न सिर्फ आज के लिए बल्कि भविष्य में भी दिमाग को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अब बात करते हैं शरीर की। ध्यान का असर सिर्फ मन तक सीमित नहीं है। ध्यान रक्त संचार नियंत्रित रखता है, दिल पर तनाव कम पड़ता है और हृदय से जुड़ी बीमारियों का खतरा करता है। जब हम ध्यान करते हैं तो शरीर एक गहरी रिलैक्सेशन की अवस्था में चला जाता है। इससे नींद बेहतर होती है, थकान कम महसूस होती है और इम्यून सिस्टम भी मजबूत होता है।

दोस्तों आगे और भी देर सारे बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और सुनते हैं कार्यक्रम का पहला गीत जब हुई मैथ फिल्म से आओ मिलो चले, शान और उस्ताद सुल्तान खान की आवाज में।

दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम हेलो ईटानगर। और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे थे मेडिटेशन के बारे में। तो अक्सर एक सवाल हमारे मन में आता है, ध्यान कैसे करें, शुरुआत कहां से करें। तो दोस्तों ध्यान का कोई एक सही तरीका नहीं होता। जैसे हर इंसान अलग है, ध्यान का तरीका भी हर किसी के लिए अलग हो सकता है। अगर आप बिल्कुल शुरुआत कर रहे हैं तो सबसे आसान तरीका है गहरी सांसों पर ध्यान देना। अपनी आंखें बंद करें, धीरे धीरे गहरी सांस लें और फिर आराम से सांस छोड़ें। अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने सांसों पर रखें, नाक से हवा अंदर जाती हुई और बाहर निकलती हुई। जब मन इधर उधर भटकने लगे तो खुद को डांटिए नहीं, बस प्यार से फिर से अपने सांसों पर लौटाइए। यही ध्यान की असली शुरुआत है। एक और सरल तरीका है अपने शरीर को महसूस करना। ध्यान के दौरान धीरे धीरे अपने शरीर के हर हिस्से पर ध्यान ले जाइए। पैरों से लेकर सिर तक, कहीं तनाव है, कहीं हल्कापन है, कहीं गर्माहट है, बस उसे महसूस कीजिए। इससे हमें अपने शरीर की जरूरतों को समझने में मदद मिलती है और तनाव अपने आप कम होने लगता है। कुछ लोग किसी शब्द या मंत्र को दोहराकर ध्यान करना पसंद करते हैं। ये कोई धार्मिक मंत्र भी हो सकता है या फिर कोई साधारण सा शब्द जो आपको सुकून देता हो। उस शब्द को धीरे धीरे मन में दोहराइए। ये मन को भटकने से रोकता है और एकाग्रता बढ़ाता है।

और साथ ही कई लोगों के लिए प्रार्थना भी ध्यान का ही एक रूप है। अपने शब्दों में ईश्वर से बात करना या किसी लिखी हुई प्रार्थना को पढ़ना, ये भी मन को शांत और स्थिर करता है। इस तरह अच्छी किताबें पढ़ना, कविताएं या प्रेरणादायक विचारों पर कुछ पर चिंतन करना ध्यान का हिस्सा है।

तो दोस्तों, ध्यान कोई मुश्किल साधना नहीं बल्कि खुद को मिलने का एक आसान रास्ता है। दिन की शुरुआत अगर कुछ शांत पलों से किया जाए तो पूरा दिन अपने आप बेहतर लगने लगता है। इसी सकारात्मक सोच के साथ स्वस्थ रहें, शांत रहें और मुस्कुराते रहें। दोस्तों, ये कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत आजा नचले फिल्म से ओ रे पिया, राहत फतेह अली खान की आवाज में।

इस खूबसूरत गीत के साथ ही दोस्तों हेलो इटानगर कार्यक्रम ये समाप्त होते हैं। ये आकाशवाणी इटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही पलों में आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे।

0: देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की यह पहली भारत यात्रा है। यह यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री एस जयशंकर से भी बातचीत करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.91 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इनके पास अवैध दस्तावेज थे। ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पलडाम्बे में एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र पाए गए। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिन में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु को 55 रन से हरा दिया है। आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. A correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. President Draupadi Murmu has said there is tremendous potential for cooperation between India and Cyprus in new and emerging sectors such as semiconductors, space and artificial intelligence. The president was speaking after hosting a banquet in honor

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 में।

दोस्तों अब वक्त है कार्यक्रम फिल्म मेकअप सब का, एक ऐसा कार्यक्रम जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सिनेमा की दुनिया की ताजा खबरें, नई रिलीज फिल्मों के हालचाल और ऑडिटी अपडेट्स, और साथ ही पेश करते हैं चंद खूबसूरत नगमे। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज का फिल्म मेकअप सब कार्यक्रम, और आज सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसी फिल्म की जिसका नाम सुनते ही कॉमेडी, कंफ्यूजन और रिलेशनशिप ड्रामा याद आ जाता है, पति पत्नी और वो दो। 2009 हिट फिल्म के बाद इस बार मेकर्स लेकर आए हैं एक नया ट्विस्ट और एक नई स्टारकास्ट के साथ, फुल और एंटरटेनर के साथ। फिल्म 15 मई को थिएटर्स में रिलीज हुई और ऑडियंस से मिक्स्ड बट एंटरटेनिंग रिस्पॉन्स मिल रही है। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है मुदस्सर अजीज ने, जो पहले भी लाइट हार्टेड कॉमेडी और रिलेशनशिप बेस्ड एंटरटेनर्स के लिए जाने जाते हैं। फिल्म में नजर आ रहे हैं आयुष्मान खुराना, सारा अली खान, रकुल प्रीत सिंह और वमिका गब्बी। सपोर्टिंग कास्ट में विजय राज और तिग्मांशु धूलिया भी इम्पोर्टेंट रोल्स में दिख रहे हैं। फिल्म की स्टोरी प्रयागराज के बैकड्रॉप में सेट है, जहां एक सीमिंगली परफेक्ट शादी मिसअंडरस्टैंडिंग्स और एक्स्ट्रा कॉम्प्लिकेशंस की वजह से कॉमेडी केओस में बदल जाती है। इस बार सिंपल लव ट्रायंगल नहीं बल्कि लव रेक्टेंगल का तड़का दिया गया है, जो फिल्म को और भी ज्यादा एंटरटेनिंग बनाता है। अगर बॉक्स ऑफिस की बात करें तो फिल्म ने अपने फर्स्ट वीक में वर्ल्ड वाइड 40 करोड़ के आसपास कलेक्शन कर लिया। इंडिया नेट कलेक्शन लगभग 24 करोड़ के करीब बताया जा रहा है। ओपनिंग डिसेंट रही, लेकिन वीक डेज में कलेक्शन में हल्का सा ड्रॉप देखने को मिला। रेटिंग्स और रिव्यूज भी काफी अच्छे आ रहे हैं। क्रिटिक्स और ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिक्स है। कुछ लोगों को आयुष्मान खुराना का कॉमिक टाइमिंग और सिचुएशनल कॉमेडी का अंदाज काफी पसंद आया, वहीं कुछ व्यूवर्स को लगा कि स्क्रिप्ट और सेकेंड हाफ और स्ट्रॉन्ग हो सकता था। सनसनील पर यूजर रेटिंग अराउंड 4.6 आउट ऑफ 10 बताई गई है, जबकि कुछ एंटरटेनमेंट पोर्टल्स ने इसे अराउंड 6 से 6.7 आउट ऑफ 10 के बीच रेटिंग दी है। रेडिट और सोशल मीडिया पर भी फिल्म को लेकर काफी डिस्कशन चल रही है। कई व्यूवर्स को फिल्म का कॉमेडी ऑफ एरर स्टाइल एंटरटेनिंग लगा, स्पेशली सेकेंड हाफ का मैडनेस और कन्फ्यूजन वाला एंगल। वहीं कुछ फैंस ने कहा कि आयुष्मान को और एक्सपेरिमेंटल स्क्रिप्ट्स चूज करनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको लाइट हार्टेड कॉमेडी पसंद है तो ये फिल्म आप जरूर देख सकते हैं। चलिए आगे और भी फिल्मों के बारे में बात करेंगे, उससे पहले सुनते हैं फिल्म मेकअप सब कार्यक्रम का पहला गीत, जब हुई मैथ फिल्म से ये इश्क है श्रेया घोषाल की आवाज में।

जी हाँ दोस्तों, आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्में गपशप। आइए बात करते हैं इस वक्त की सबसे डिस्कस्ड थ्रिलर फिल्म दृश्यम 3 की। जी हाँ दोस्तों, सस्पेंस और माइंड गेम से भरी ये मच अवेटेड फिल्म अब थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है और ऑडियंस के बीच जबरदस्त बज क्रिएट कर रही है। फिल्म 21 मई को रिलीज हुई और रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर जॉर्ज कुत्ती का नाम फिर से ट्रेंड करने लगा। फिल्म में वंस अगेन मोहनलाल अपने आइकॉनिक जॉर्ज कुत्ती अवतार में नजर आ रहे हैं और डायरेक्शन संभाला है जीतू जोसेफ ने। फ्रेंचाइज के पहले दो पार्ट्स की तरह इस बार भी सस्पेंस, इमोशंस और शॉकिंग ट्विस्ट का पावरफुल कॉम्बिनेशन देखने को मिल रहा है। ऑडियंस रिस्पॉन्स की बात करें तो थिएटर्स में फैंस का एक्साइटमेंट देखने लायक है। कई व्यूवर्स ने फिल्म के इंटरवल और सस्पेंस मूवमेंट्स को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस बताया है और सोशल मीडिया पर थ्योरीज और डिस्कशंस का सिलसिला लगातार चल रहा है। बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ने धमाकेदार शुरुआत की है। रिपोर्ट्स के मुताबिक फर्स्ट डे पर वर्ल्ड वाइड अराउंड 43 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जो मलयालम सिनेमा के बिगेस्ट ओपनिंग में से एक माना जा रहा है। और एक इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, हिंदी वर्जन स्टारिंग अजय देवगन अलग रिलीज होगा, रिपोर्टेडली 2 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। मेकर्स के अकॉर्डिंग इस बार मलयालम और हिंदी वर्जन का ट्रीटमेंट और क्लाइमेक्स दोनों थोड़ा अलग होगा ताकि ऑडियंस को फ्रेश सरप्राइज मिल सके। तो अगर आपको सस्पेंस थ्रिलर्स पसंद है तो ये फिल्म आपको जरूर देखनी चाहिए।

0: अदर से आप बात करते हैं रोमांटिक ड्रामा फिल्म चांद मेरा दिल की, जो कल यानी 22 मई को थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। रिलीज के साथ ही फिल्म स्पेशली यंग ऑडियंस और सोशल मीडिया पर काफी डिस्कशन में बनी हुई है। फिल्म में फ्रेश पेयरिंग देखने को मिल रही है अनन्या पांडे और लक्ष्य की। डायरेक्शन संभाला है विवेक सोनी ने, जबकि फिल्म को प्रोड्यूस किया गया है धर्मा प्रोडक्शन के बैनर तले। फिल्म की स्टोरी आरब और चांदनी नाम के दो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के दौरान घूमती है, जिनकी कॉलेज रोमांस जर्नी अडल्टहुड और रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ एक इमोशनल टर्न ले लेती है। रोमांस, इमोशंस और म्यूजिक का कॉम्बिनेशन फिल्म को एक सॉफ्ट यूथफुल वाइब देने वाला है। रिव्यूज की बात करें तो ऑडियंस का रिस्पॉन्स मिक्सड नजर आ रहे हैं। कुछ व्यूअर्स को फिल्म की केमिस्ट्री, इमोशनल सीन्स और म्यूजिक पसंद आ रहा है, वही कुछ लोगों को स्टोरी प्रिडिक्टेबल लगी। फिल्म फेयर ने फिल्म को 3.5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दी है और इसे मॉडर्न रोमांस विद ए रियल ट्विस्ट बताया है। सोशल मीडिया और रेडिट पर भी फिल्म को लेकर काफी डिस्कशन चल रही है। कुछ यूजर्स इसे स्वीट और इमोशनल लव स्टोरी बता रहे हैं, जबकि कुछ व्यूअर्स का मानना है कि फिल्म का प्लॉट थोड़ा फेमिलियर फील देता है और सॉन्ग्स ज्यादा है। बॉक्स ऑफिस की बात करें तो अर्ली रिपोर्ट्स के हिसाब से ओपनिंग थोड़ी स्लो रही, लेकिन वीकेंड कलेक्शन पर सबकी नजर बनी हुई है। तो दोस्तों, आपको थ्रिलर पसंद हो या रोमांस पसंद हो, इन फिल्मों में से कोई चुनिए और जरूर सिनेमा हॉल पर देखने चाहिए। दोस्तों, कार्यक्रम का अगला गीत आप सुन पाएंगे ये जवानी है दीवानी फिल्म का घाघरा सॉन्ग, जिसे गाया है रेखा वर्डवाज और विशाल ददलानी ने।
1: साहेबान, कदरदान, मेहरबान, दिल थाम के बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी।
2: ये निगाहें नश्तर, ये होंठ कौसर, मेरी आगोश में होश भी बेहोश होगा।
3: अब भी वक्त है निकलने वालों, नहीं तो कल सुबह अफसोस होगा।
2: ये शोखी, ये अदाएं, ये बांकपन, इनकी कीमत भला दुनिया तय कर सकती है क्या?
3: अच्छा चल, इतना बता, तीनों का मिला के पैकेज में कुछ कम करती है क्या?
2: बरखुदार, हुस्न का मजाक ना उड़ा, कहीं हुस्न के हाथों तेरा मजाक ना बन जाए। मन चला है, खूबसूरत है, मगर लड़का है तू, तुझे लड़कों और मर्दों में फर्क कौन समझाए?

दोस्तों आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी टनगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्में गपशप। फिल्में गपशप में अब बात करते हैं इस हफ्ते के ओटीटी धमाकों के। अगर आप घर बैठे एंटरटेनमेंट का फुल डोज लेना चाहते हैं तो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर इस बार थ्रिलर, ग्लैमर और एक्शन का जबरदस्त मिक्स देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करते हैं धुरंधर 2 की। धुरंधर 2 का रो एंड अनदेखा वर्जन अब ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है। रणवीर सिंह की इंटेंस परफॉर्मेंस और हाई वोल्टेज एक्शन ने पहले ही थिएटर्स में धमाल मचाया था और अब फैंस को मिल रहा है।

और भी ज्यादा रो और अनसेंसर्ड एक्सपीरियंस। तो अगर आपने धुरंधर द रिवेंज को थिएटर्स पर मिस कर दिया हो तो आप ओटीटी पर देख सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ सतरंगी बदले का खेल रिवेंज और सस्पेंस से भरी एक क्रिपिंग थ्रिलर है, जहां इमोशंस और मिस्ट्री दोनों का तड़का देखने को मिलेगा। अगर आपको ग्लैमर और लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है तो देसी ब्लिंक भी काफी बज क्रिएट करी है नेटफ्लिक्स पर। दुबई में रहने वाले रिच इंडियंस एक्सपेट्स की फ्लैशी लाइफस्टाइल्स और ड्रामा से भरपूर ये रियलिटी शो व्यूवर्स को काफी एंटरटेन कर रही है। और थ्रिलर लवर्स के लिए वारंट फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ विलन को भी ओटीटी पर स्ट्रीम हो रही है। क्राइम इन्वेस्टिगेशन और सस्पेंस से भरी ये सीरीज ऑडियंस को एज ऑफ द सीट एक्सपीरियंस देने

तो दोस्तों, अगर आप घर बैठे एंटरटेनमेंट लेना चाहते हैं तो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी काफ़ी ट्रेंडिंग शोज आ रही है। OTT छोटा स्क्रीन है लेकिन धमाका बड़े पर्दे जितना देता है।

तो दोस्तों फिल्म दुनिया से आज बस इतना ही। आइए अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं अगला गीत, कुछ कुछ होता है फिल्म से कोई मिल गया, कविता कृष्णमूर्ति, उदित नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में।

दोस्तों, इसी के साथ ही फिल्म मेकअप सब कार्यक्रम समाप्त होते हैं। हम कल फिर लौटेंगे बॉलीवुड की दुनिया से ताजा तरीन खबरों के साथ। फिलहाल आज के लिए इतना ही। आप बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और अब वक्त हो चला है देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों का, जिसे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवचयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से

0: 80,000 रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। ये रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। ये निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैंक ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी। बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर कोलकाता पहुंच गए हैं। श्री रूबियो की ये पहली भारत यात्रा है। यात्रा अमेरिका और भारत के आपसी संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका मुख्य उद्देश्य व्यापार, रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, प्रौद्योगिकी और हिंद प्रशांत रणनीति में सहयोग का विस्तार करना है। भारत में अमरीका के राजदूत सर्जियो गोर ने हवाई अड्डे पर श्री रूबियो का स्वागत किया। श्री रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट करेंगे। श्री रूबियो विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से बातचीत भी करेंगे। उनका अमरीकी दूतावास में होने वाले अमरीकी स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज 91 पैसे प्रति लीटर तक की वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार ये वृद्धि दर्ज की गई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रूपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रूपए प्रति लीटर हो गया है। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। तमिलनाडु के तिरुप्पुर स्थित एक विशेष न्यायालय ने भारत में अवैध रूप से रह रहे 25 बांग्लादेशी मजदूरों को 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। इसके पास अवैध दस्तावेज में ये मजदूर तिरुप्पुर जिले के पल्लडम के एक कपड़ा कंपनी में काम कर रहे थे। जांच के दौरान उनके पास बांग्लादेशी नागरिकता दर्शाने वाले पहचान पत्र भी पाए गए हैं। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और विशेष न्यायालय में सुनवाई के बाद कल ये फैसला सुनाया गया। भारतीय सेना के अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता समर्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में भी कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतरोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने अगले 5 दिनों में दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, राजस्थान, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी लू की चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय नीना रकेल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विल डिस्ट्रीब्यूट मोर देन 51,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स टू न्यूली रिक्रूटेड यूथ इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस एट द 19th रोजगार मेला थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टुडे। मिस्टर मोदी विल ऑल्सो एड्रेस द गैदरिंग ऑन द ओकेजन। अ कॉरेस्पॉन्डेंट रिपोर्ट्स दैट द रोजगार मेला इज अ की इनिशिएटिव रिफ्लेक्टिंग द प्राइम मिनिस्टर्स कमिटमेंट टू गिविंग टॉप प्रायोरिटी टू एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड टर्निंग दिस विजन इनटू रियलिटी। The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

0: दोस्तों सुबह के 10:10 हो चुके हैं। अब पेश है आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड।
1: रेडियो ऑन डिमांड सुबह के 10:10 से सिर्फ और सिर्फ अरुण FM 103.1 MHz पर। जी हाँ दोस्तों, SMS के जरिए भी आप अपने मनपसंद गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेज सकते हैं 9436887808 पर। जी हाँ, हमारा फोन नंबर है 9436887808। इस नंबर पर हमें आपके

0: नमस्कार प्यारे श्रोताओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम में, जहां गाने सुनते हैं आप और उन्हें हम पहुंचा देते हैं आप तक और आपके अपनों तक। आपके मैसेजेस, आपकी फरमाइश और आपके फेवरेट सॉन्ग्स के साथ चलिए शुरू करते हैं ये खास सेगमेंट। और आज इस सफर में आपके साथ हूँ मैं, आपकी रेडियो साथी आरजे दुनिया। रेडियो डिमांड पर आज सबसे पहला मैसेज हमें आया है गोलाघाट आसाम से रोमेश पात्रो, रुनु पात्रो और लकी जी का। उन्हें सुनना है फिल्म मैं सुंदर हूँ से तुझे दिल की बात बता दूँ नहीं नहीं, जिसे गाया है लता मंगेशकर ने। और साथ ही इस गाने को वो डेडिकेट करे अपने कुछ दोस्तों को। उनके दोस्तों के नाम है अमोल, विमोल, बाइकोम, जोगेंद्र, सोनाली और अंजलि। उम्मीद करते हैं आप सभी हमें सुन रहे होंगे, तो चलिए आपकी पसंदीदा गाने का आनंद लेते हैं।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं बताऊंगी, तुझे दिल की बात बता दूं। नहीं नहीं नहीं नहीं, नहीं।

दोस्तों बढ़ते हैं अगले रिक्वेस्ट की ओर, जो हमें आया है सारिया जान कार्बी अंगलोंग आसाम से, जोगिंद्र रोंगपी धर्म की रोंगपी सोनाली इंगटीपी जी का। उन्होंने रिक्वेस्ट हमें करी है, मैं सुंदर हूँ फिल्म से तुझे दिल की बात बता

माफ कीजिएगा दोस्तों, रिक्वेस्ट हमें आया है रोमेश पात्र, रोनू पात्र और लकी गोलाघाट आसाम से। उन्होंने रिक्वेस्ट करी थी फिल्म प्यार का मौसम से, नी सुल्ताना रे प्यार का मौसम, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने। अभी जो गाना आपने सुना दिल तुझे दिल की बात बता दूं नहीं नहीं, इस गाने की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी जोगेंद्र रोंगपी, दोनग्री रोंगपी और सोनाली इंगती विजय का। मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं मिक्सअप कर गई। अब सुनते हैं रमेश पात्रो, रोनू पात्रो और लकी जी का गाना।

0: I love my Eco, cause it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
2: We love our Eco, cause we can bring all our friends.
3: We love our Eco, cause it's made every journey special.
4: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
5: दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात, और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। तो चलिए बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की ओर, जो हमें आया है हेलम आसाम से ज्योति सुरन जी का। उन्हें सुनना है डुप्लीकेट फिल्म का कथई आंखों वाली एक लड़की, जिसे गाया है कुमार सानू ने।

दोस्तों, वीडियो ऑन डिमांड पर अगला गीत आप सुन पाएंगे जानवर फिल्म का मेरा यार दिलदार, जिसे गाया है अलका याग्निक, सोनू निगम, सुखविंदर सिंह और जसविंदर ने। और इस गीत की फरमाइश हमें भेजी है दुर्गेश नागनपुर, राधेश्याम नागनपुर, वंदना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार दहास के, जो कि रहने वाले हैं खांडवा डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश का।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
1: Get attractive offers up to Rs. 52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: छोटे से अंतराल के बाद आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां होती है दिल से दिल की बात और आप बने हुए हमारे साथ कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड पर। तो चलिए बढ़ते हैं अगली रिक्वेस्ट की ओर, जो हमें आया है विजय दास से। विजय जी को सुनना है दिनो जेम्स का एल्बम सॉन्ग वो। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऐसे ही रोज अपने पसंदीदा गीतों का रिक्वेस्ट हमें भेजते रहेगा। तो चलिए आपकी रिक्वेस्ट पर सुनते हैं दिनों की आवाज में वो सॉन्ग।

दोस्तों बने हुए हमारे साथ आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां होती है दिल से दिल की बात। और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रेडियो ऑन डिमांड। आप सबको बता दो, आप अगर अपने पसंदीदा गीतों को अरुण FM 103.1 पर सुनना चाहते हैं या फिर किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। हमारा नंबर है

9436887808, जी हाँ दोस्तों हमारा नंबर है 9436887808। हमें आप सबका मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज के अगली रिक्वेस्ट की ओर, जो हमें आया है नाहरलगन से भेजा है जेम्स जी ने। उन्हें सुनना है दिल फिल्म का हमने घर छोड़ा है, जिसे गाया है साधना सरगम और उदित नारायण ने।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा

दोस्तों बढ़ते हैं रेडियो ऑन डिमांड पर अगले मैसेज की ओर, जो हमें आया है ईटानगर से विजय जी का। विजय जी ने रिक्वेस्ट करी है तेरे नाम फिल्म का टाइटल ट्रैक, जिसे गाया है उदित नारायण और अलका याग्निक ने, और विजय जी ने इस गाने को डेडिकेट किया है शिखा दास को। तो शिखा जी, उम्मीद है आप हमें सुन रहे होंगे, ये गाना विजय जी ने आपको बहुत ही प्यार से डेडिकेट किया है। तो चलिए सुनते हैं तेरे नाम फिल्म का ये टाइटल ट्रैक।

दोस्तों हम रेडियो ऑन डिमांड के अंतिम रिक्वेस्ट की ओर पहुंच चुके हैं। अंतिम रिक्वेस्ट प्ले करें, उससे पहले आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने पसंदीदा गीतों का मैसेजेस हमें भेजने के लिए। ऐसे ही रोज हमारे साथ जुड़िए और अपने पसंदीदा गीतों को अरुण FM 103.1 पर आनंद लीजिए। और आज के अंतिम रिक्वेस्ट हमें आया है असम से उमा जी का। उमा जी ने रिक्वेस्ट करी है क्रिमिनल फिल्म का तुम मिले दिल खिले, अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में। तो उमा जी, पेश है ये खूबसूरत गीत आपकी रिक्वेस्ट पर।

इसी के साथ ही दोस्तों हम आज के रेडियो ऑन डिमांड कार्यक्रम के समापन पर आ पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूँ हमने आप सबका भरपूर मनोरंजन किए होंगे। यह आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz से जहाँ होती है दिल से दिल की बात। और अब से कुछ ही देर बाद यानी 11 बजे आप सुन पाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। साथ ही बता दूं दोस्तों इसी के साथ ही हम आज के प्रभातकालीन प्रसारण सभा के समापन पर आप पहुंचे हैं। उम्मीद करती हूं इस सभा में प्रसारित सभी कार्यक्रम आपको रोजाना की तरह बेहद पसंद आए होंगे। इस सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाने के लिए आज हमारे साथ थे स्टूडियो तथा HPT में मौजूद सहकर्मी सहित प्रसारण निष्पादक गोपाल राय तथा तकनीकी अभियंता ताना आतुम। और साथ ही बता दूं दोस्तों इसी तरह के बेहतरीन कार्यक्रमों का सिलसिला चलता रहेगा हमारी आज की दूसरी प्रसारण सभा में। और दूसरी प्रसारण सभा के कार्यक्रमों को आप तक पहुंचाएंगे आपके अपने RJ मंच। तो अब मुझे यानी आपके रेडियो साथी RJ दुनिया को दीजिए इजाजत। शुभ दिन, नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। इनमें विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नव चयनित युवा शामिल हैं। श्री मोदी इस अवसर पर उपस्थित लोगों को संबोधित भी करेंगे। ये रोजगार मेला देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रोजगार मेला प्रधानमंत्री मोदी की रोजगार सृजन को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की प्रतिबद्धता दर्शाता है।
1: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12 लाख नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। इसमें देश के सभी हिस्सों से चयनित नव नियुक्त उम्मीदवार केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और भागों में नियुक्त होंगे, जिसमें रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग सहित अन्य विभाग शामिल हैं। यह रोजगार मेला देश के विकास में युवाओं की भागीदारी को मजबूत करने की दिशा में एक और बड़ा कदम है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को

0: किया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल के कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्यरत हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए केंद्र सरकार को रिकॉर्ड 2,86,000 करोड़ रुपए का अधिशेष हस्तांतरित करने की मंजूरी दे दी है। यह रिजर्व बैंक के अब तक के सबसे अधिक लाभांश में से एक है। यह निर्णय कल मुंबई में रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अध्यक्षता में बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की 623वीं बैठक में लिया गया। बैठक में बैंक ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान उसकी सकल आय पिछले वर्ष की तुलना में 26.42% बढ़ी, बैंक का व्यय 27.6% बढ़ा। मध्य प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कल सचिवालय में वेबसाइट ucc.mp.gov.in का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन प्रस्तावित यूसीसी पर अपने विचार और सुझाव साझा कर सकते हैं। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि इस वर्ष 15 जून है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के महिला दल ने एवरेस्ट शिखर पर सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। ये उनका पहला अभियान था। 14 सदस्यीय दल में 11 महिला पर्वतारोही और 3 तकनीकी तथा सहायक कर्मचारी शामिल थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। मौसम विभाग ने आज पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sunil Verma. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly recruited youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing today. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. Our correspondent reports that the Rozgar Mela is a key initiative reflecting the Prime Minister's commitment to giving top priority to employment generation and turning this vision into reality. The Reserve Bank of India, RBI, has approved a transfer of record 2.86 lakh crore rupees as surplus to the central government for the financial year 2025-26, marking one of the highest dividend payouts by the central bank. The decision was taken during the 623rd meeting of the Central Board of Directors of the RBI, chaired by Governor Sanjay Malhotra in Mumbai yesterday. The RBI in its release said its gross income increased by 26.42% during financial year 2025-26 compared to the previous year, while expenditure before risk provisions rose 27.60%. U.S. Secretary of State Marco Rubio arrived in Kolkata this morning on a four-day visit to India. This is his maiden visit to India, marking an important step towards strengthening bilateral ties and expanding cooperation in trade, defense, energy security, technology, and Indo-Pacific strategy. U.S. Ambassador to India Sergio Gore received Mr. Rubio at the Kolkata airport. Soon after his arrival, the U.S. Secretary of State visited Mother House, the headquarters of St. Teresa's Missionaries of Charity, and the children's home in the city. Mr. Gore, in a social media post, said Secretary Rubio will travel to New Delhi later in the day and call on Prime Minister Narendra Modi. According to the U.S. ambassador, the upcoming engagements will primarily focus on

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के आज की दोपहर की प्रसारण सभा में। दोस्तों, मैं हूं आपकी RJ बिंदुंग दिंदो मांच। आप सभी का स्वागत करना चाहती हूं हमारे इस प्रसारण सभा में। इससे पहले दोस्तों, आप बने हुए थे RJ क्षमा कीजिए दोस्तों, इससे पहले आप बने हुए थे RJ पूरा दुनिया के साथ। मैं आपको बता दूं कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा HPT में मौजूद है अन्य सहकर्मियों सहित हमारे प्रसारण निष्पादक पी दोले एवं तकनीकी अभियंता। चलिए दोस्तों, हमारे इस दोपहर की प्रसारण सभा की शुरुआत करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम शुरुआत करें, मैं आपको बताना चाहती हूं, अब से लेकर शाम के 4:25 तक के प्रसारित होने वाले अन्य कार्यक्रमों के बारे में। अभी यानी कि 11:10 से आप सुनेंगे हमारा खास कार्यक्रम फिल्मी लहर, जिसके बाद दोस्तों प्रसारित होगा वेस्टर्न मेलोडीज का कार्यक्रम कामसेन तांगजांग के साथ। ठीक 12 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार, जिसके बाद 12:10 पर हम लाएंगे दोस्तों यादों की बारात का कार्यक्रम। 12:30 पर प्रसारित होगा गीतमाला, हमारे फौजी भाइयों और बहनों के लिए एक खास डेडिकेटेड प्रोग्राम, जिसके बाद ठीक 1 आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए।

1:10 पर दोस्तों हम लाएंगे हिंदी क्लासिक म्यूजिक का सफर, जहां हम सुनाएंगे आपको 60s से लेके 80s के दशक तक के अन्य कारक आर अन्य गीत। जिसके बाद 1:40 पर आप सुनेंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स। ठीक 2 बजे आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार के लिए। 2:30 पर हम लाएंगे हिट्स ऑफ 90s, सुनाएंगे आपको 90s के कुछ सुनहरे गीत। 2:58 पर प्रसारित होगा न्यूज हेडलाइंस, जिसके बाद 3 बजे पर हम सुनेंगे मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम। 3:15 पर लाएंगे ताय खामती श्रोताओं का कार्यक्रम, जिसके बाद दोस्तों 3:30 पर हम आपसे जुड़ेंगे बॉलीवुड अपडेट्स के साथ। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया में क्या हो रहा है, कौन से नए गॉसिप घूम रहे हैं, सब कुछ बताएंगे आपको बॉलीवुड अपडेट्स में। 3:40 पर प्रसारित होगा वांचो श्रोताओं का कार्यक्रम, वांचो भाषा में समाचार, जिसके बाद 3:45 पर हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एक छोटा सा कार्यक्रम की पेशकश होगी। ठीक 4 बजे आप सुनेंगे ईदू मिश्मी श्रोताओं का कार्यक्रम, ईदू मिश्मी भाषा में समाचार, जिसके बाद 4:05 पर हम लाएंगे हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का एक प्यारा सा कारवा। 4:20 से लेकर 4:25 पर दोस्तों हम सुनेंगे तांगसा श्रोताओं का कार्यक्रम, तांगसा भाषा में समाचार। तो दोस्तों ये थी आज की हमारे दोपहर की प्रसारण सभा की रूपरेखा। अब वक्त है कार्यक्रम फिल्मी लहर का, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों कभी कभी लगता है ना कि बारिश जो है सिर्फ आसमान से नहीं, यादों से भी बरसती है। बाहर बारिश हो रही है और बॉलीवुड के रोमांटिक गाने क्या ही कमाल का कनेक्शन देते हैं। अब जो गाना हम आपके लिए लेकर आए हैं फिल्मी लहर के इस कार्यक्रम में, वो सिर्फ एक सॉन्ग नहीं, एक एहसास है। फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड का ये खूबसूरत गाना बारिश दिल की उन फीलिंग्स को बयां करता है जो अक्सर लफ्जों में कहना मुश्किल होता है। ये फिल्म है मशहूर राइटर चेतन भगत की नोवेल हाफ गर्लफ्रेंड पर बेस्ड। फिल्म में नजर आए अर्जुन कपूर और श्रद्धा कपूर, जिनकी केमिस्ट्री ने इस लव स्टोरी को और भी खास बना दिया। एक तरफ माधव की सिंपल और सच्ची मोहब्बत और दूसरी तरफ रिया की खामोश फीलिंग्स, इन दोनों के बीच का इमोशनल सफर इस गाने में खूबसूरती से महसूस होता है। तो चलिए इस बारिश भरी दिन में वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और महसूस करते हैं यादें और बारिश की मैजिक। अरिजीत सिंह की सोलफुल आवाज में फिल्म हाफ गर्लफ्रेंड से चलिए सुनते हैं बारिश।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, बॉलीवुड की दुनिया दूर से जितनी चमकदार दिखती है, उसके पीछे उतनी ही कहानियां, स्ट्रगल्स और इमोशंस छुपे होते हैं। और इसी दुनिया को बहुत खूबसूरती से दिखाया है

जोया अख्तर की फिल्म लक बाय चांस ने 2009 में रिलीज हुई इस फिल्म में फरहान अख्तर ने विक्रम का रोल निभाया, एक ऐसा लड़का जो मुंबई आता है सिर्फ एक सपना लेकर, सुपरस्टार बनने का। साथ थी कोंकणा सेन एज सोना मिश्रा, एक टैलेंटेड एक्ट्रेस जो सिर्फ प्यार ही नहीं स्ट्रगल और सेक्रीफाइस का भी एहसास दिलाती है। फिल्म में ऋषि कपूर, जूही चावला और डिंपल कपाड़िया जैसे लेजेंड्स ने भी कमाल की परफॉर्मेंस दी। और खास बात ये थी कि शाहरुख खान, आमिर खान, ऋतिक रोशन और कई बॉलीवुड स्टार्स ने कैमियो अपीयरेंस करके फिल्म को और भी रियल बना दिया। अब बात करते हैं एक सोलफुल गाने की जो मैं आपके लिए अभी प्ले करने जा रही हूँ। गीत का नाम है बावरे। ये गाना उन लोगों के दिल की आवाज लगता है जो सपनों के पीछे भागते भागते खुद में ही कहीं खो जाते हैं। बावरे का मतलब होता है थोड़ा पागल, थोड़ा खोया हुआ, बिल्कुल उस इंसान की तरह जो दिल और दुनिया के बीच उलझा हो। तो इस सुहाने बारिश भरे मौसम में अपने दिल को थोड़ा सा फिल्मी होने दीजिए और सुनिए फिल्म लव बाय चांस से ये खूबसूरत गाना बावरे, शंकर महादेवन और मम्मी खान की आवाज में।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: दोस्तों, फिल्मी लहर में आज के लिए बस इतना ही। चलिए अब बदलते हैं मूड, चलते हैं और सुनते हैं वेस्टर्न मेलोडीज का कार्यक्रम कामसेन तांगजांग के साथ। आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि वेस्टर्न मेलोडीज के इस कार्यक्रम के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार के लिए।
1: Hello everyone, this is Kamsen, your host for today, and welcome back to Western Music Program only on Akashwani Itanagar. In this session, we slow things down and turn inward. These are the songs that don't need to be loud to be powerful. They speak softly yet leave a lasting impact. So we begin with a song that feels like home in itself. It's familiar, comforting, and filled with a sense of belonging. Here's Take Me Home, Country Road by John Dever. Please enjoy.

0: And that was the final track for today. I hope these songs kept you company and made your day just a little brighter. This was Western Music Program only on Akashwani Itanagar. Take care and have a great day.
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नव नियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि देश दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का एक भरोसेमंद सप्लाई चेन पार्टनर बन रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: ये रोजगार मेला पूरे देश में 47 स्थानों पर आयोजित किया गया। पूरे देश से चुने गए ये नए उम्मीदवार रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में शामिल होंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में

0: से भूमि उपयोग परिवर्तन प्राप्त करने से संबंधित धन शोधन के मामले में गिरफ्तार किया है। ये जांच पंजाब पुलिस ने किसानों की शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज की थी। विभाग की जांच में पता चला कि आरोपियों ने 15 भूस्वामियों की 30.5 एकड़ भूमि के संबंध में फर्जी सहमति पत्र तैयार किए थे। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित है। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज CNG की कीमत में 1 रुपए तक की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम CNG की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो 4 दिन की भारत यात्रा पर आज सवेरे कोलकाता पहुंचे। ये उनकी भारत की पहली यात्रा है। इस यात्रा से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक प्रगाढ़ होंगे। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Naresh Mako. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela through video conferencing, the Prime Minister said the world is eager to be a part of India's growth journey. Mr. Modi said that the country is also partnering with various countries of the world aimed at providing opportunities, employment, and global exposure to the youth of the nation. The Prime Minister noted that India is becoming the trusted supply chain partner of the globe.
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग-अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ-साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले।
1: Mr. Modi added that every Indian is working with a commitment to making India Viksit Bharat by 2047, and to achieve this, the country is investing in several sectors. The Prime Minister highlighted that new employment opportunities are being created for the youth of the country.
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary has announced that 1 lakh teachers will be recruited in the state over the next 5 years. During a high-level review meeting of the Education Department, the Chief Minister directed officials to ensure the recruitment of at least 20,000 teachers every year. He said that the notification for teacher appointments will now be issued annually in the month of July to streamline the recruitment.

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम।
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

दोस्तों, कुछ गाने सिर्फ गाने नहीं, वो वक्त की तरह होती है। जैसे ही उनकी धुन कान में पड़ती है, दिल एकदम से पीछे चला जाता है, बचपन की तरफ, स्कूल के दिनों में, पुराने यादों की तरफ। आखिर ऐसा क्यों होता है? शायद इसीलिए, क्योंकि म्यूजिक सिर्फ आवाज नहीं, उसमें हमारी जिंदगी के लम्हे बस जाते हैं। एक पुराना गाना हमें याद दिलाता है वो सफर, वो दोस्त, वो बारिश, वो पहाड़ों के बीच गुजरे हुए पल, जिन्हें हम कभी भूल ही नहीं पाते। और आज यादों की बारात में हम लेकर आए हैं एक ऐसा ही गाना जिसे सुनकर आज की पूरी जनरेशन बड़ी हुई है। फिल्म दिल है तुम्हारा का ये खूबसूरत टाइटल ट्रैक, जिसकी धुन में प्यार है, मासूमियत है और वो यादें हैं जो दिल के बहुत करीब होती है। और कौन भूल सकता है फिल्म के वो खूबसूरत माउंटेनियस विजुअल्स, हरे भरे पहाड़, खुला आसमान और उनके बीच चलता ये गाना। उस वक्त शायद हमें समझ नहीं आता था, लेकिन आज महसूस होता है कि हम सिर्फ फिल्म नहीं, हम देख रहे थे, हम बना रहे थे अपने यादें। प्रीति जिंटा, अर्जुन रामपाल, महिमा चौधरी और जिमी शेरगिल स्टारर इस फिल्म का ये गाना आज भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना पहली बार सुनते वक्त लगा था। तो चलिए इस सुहाने मौसम की तरफ और

0: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है, जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न दे। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दें। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
1: दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक, और आप सुन रहे हैं हमारा

खास कार्यक्रम यादों की बारात। 90s के गानों में एक अलग ही जादू था, ना ज्यादा शोर ना फ्लैशी म्यूजिक, बस सीधे दिल को छू जाने वाले लिरिक्स और वो मासूम सी मेलोडीज। और जब बात हो पुराने बॉलीवुड रोमांस की, तो कुछ गाने ऐसे हैं जो वक्त के साथ और भी खूबसूरत लगने लगते हैं। अब जो गाना हम लेकर आए हैं वो भी एक ऐसा ही एवरग्रीन नगमा है, फिल्म अनारी से फूलों सा चेहरा तेरा। एक ऐसा गाना जो प्यार की तारीफ को इतनी सादगी और खूबसूरती से बयां करता है कि सुनते ही दिल मुस्कुरा उठता है। वेंकटेश और करिश्मा कपूर की इनोसेंट केमिस्ट्री, उदित नारायण की सोलफुल आवाज और वो 90s वाली सिंप्लिसिटी सब मिलकर इस गाने को यादों का हिस्सा बना देते हैं। सच कहे तो उस दौर के गाने सिर्फ लव सॉन्ग्स नहीं, वो दिल की फीलिंग्स हुआ करते थे। तो चलिए दोस्तों, थोड़ा सा वक्त पीछे ले चलते हैं और महसूस करते हैं 90s के प्यार का वो हसीन एहसास। सुनिए फिल्म अनारी से उदित नारायण की आवाज में फूलों सा चेहरा तेरा।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: I love my Eco because it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
3: We love our Eco because we can bring all our friends.
2: We love our Eco
1: because it's made every journey special. Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to Rs. 37,500.
4: नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ डीडीएमए कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मानसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है।

0: जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं, वे सतर्क रहें और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न दे। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या बंद नालों जैसी घटनाओं की तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद। The office of the district magistrate, capital Itanagar, has observed that illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts, and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
1: दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं हमारा कार्यक्रम गीत माला। हमारे देश के वीर जवानों के लिए एक स्पेशली डेडिकेटेड म्यूजिक प्रोग्राम। दोस्तों, हम अक्सर उन्हें सिर्फ यूनिफॉर्म में देखते हैं, सरहदों पर खड़े एक ऑफिसर के रूप में, लेकिन उन यूनिफॉर्म्स के अंदर भी एक दिल धड़कता है जो अपने घर को याद करता है, माँ की आवाज को मिस करता है, बच्चों की हंसी के लिए तरसता है और कभी कभी खुद भी बस एक आम इंसान की तरह जीना चाहता है। एक फौजी सिर्फ देश की हिफाजत ही नहीं करता, वो अपने सपने, अपनी खुशियाँ और अपने अपनों से दूर रहकर हम सबकी जिंदगी को महफूज बनाता है। और आज का ये पहला गाना उन्हीं दिलों के नाम जो ड्यूटी के साथ साथ मोहब्बत और यादों के रंग भी अपने अंदर संभाल कर रखते हैं। फिल्म रमैया वस्तावैया से आतिफ असलम की सोलफुल आवाज में एक ऐसा गाना जो प्यार के रंग को दिल में उतार देता है। गीत का नाम है रंग जो लागियो और साथ दिया है उनका श्रेया घोषाल की मधुर आवाज ने। तो देश के हर सोल्जर, हर ऑफिसर और उनके परिवार को हमारा सलाम। ये गाना आपके नाम।

0: handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: I love my Eco because it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
3: We love our Eco because we can bring all our friends.
2: We love our Eco because it's made every journey special.
1: Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to ₹37,500.
4: दोस्तों आज के गीतमाला सिर्फ गानों का सफर नहीं, ये उन वीर जवानों को याद करने का एक पल है जो हर रोज अपनी जान की परवाह किए बिना देश की हिफाजत में खड़े रहते हैं। 2019 का पुलवामा अटैक वो दिन शायद ही कोई हिंदुस्तानी कभी भूल पाए। एक पल में देश ने अपने 40 बहादुर सीआरपीएफ जवान खो दिए थे। किसी ने अपना बेटा खोया, किसी ने अपना पति और किसी बच्चे ने अपने पिता का साया। आज जब हम उन अटैक्स के मास्टरमाइंड्स और आतंक के चेहरों के खत्म होने की खबर सुनते हैं तो सिर्फ एक एहसास दिल में आता है कि देश के वीरों की कुर्बानी कभी बेकार नहीं जाती। लेकिन दोस्तों हर खबर के पीछे एक और सच होता है। एक सोल्जर सिर्फ एक यूनिफॉर्म नहीं, वो भी सपने देखता है, घर लौटने की उम्मीद रखता है, माँ की आवाज सुनना चाहता है, बच्चों के साथ वक्त बिताना चाहता है, और फिर भी जब देश पुकारता है तो वो अपनी खुशियों से पहले तिरंगे को चुन लेता है। हमारी फौज की सबसे बड़ी ताकत सिर्फ उनके हथियार नहीं, उनका हौसला, उनकी हिम्मत और उनका प्यार है इस मिट्टी के लिए। आज का ये प्रोग्राम उन सभी शहीद जवानों, ऑफिसर्स और उनके परिवारों को समर्पित है जिन्होंने देश के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। और इसी जज्बे के साथ सुनिए एक ऐसा गाना जो दिल को मोहब्बत से भर देगा अपनी मिट्टी के लिए। चलिए सुनते हैं ये बहुत ही दिल छू लेने वाला गीत, तेरी मिट्टी।

दोस्तों, कुछ कहानियां सिर्फ इतिहास के पन्नों में रहने तक नहीं, वो हवा में महसूस होती है। वो बर्फीली चोटियों पर गूंजती है और हर उस कदम में जिंदा रहती है जो हमारे जवान सरहद पर रखते हैं। आज गीतमाला में हम याद करते हैं एक ऐसे वीर को जिनकी कहानी हिम्मत की परिभाषा बन चुकी है। हम बात कर रहे हैं राइफलमैन जसवंत सिंह रावत जी, फोर गढ़वाल राइफल्स। 1962 के इंडो चाइना युद्ध के दौरान नूरानंग के मुश्किल इलाके में जब हर तरफ घना संघर्ष था, तब भी एक जवान ने अपनी पोस्ट छोड़ने से मना कर दिया। वो पीछे हट सकता था, लेकिन उसने देश के लिए रुकना चुना। कहते हैं कि उनकी हिम्मत इतनी प्रबल थी कि उन्होंने अकेले ही कई दिनों तक मोर्चा संभाला, अपनी जान की परवाह किए बिना। उनकी वजह से आज भी जसवंतगढ़ उस वीरता की निशानी के रूप में खड़ा है। लेकिन दोस्तों, इस कहानी का सबसे बड़ा सच ये है कि ये सिर्फ एक सोल्जर की कहानी नहीं, ये उस जज्बे की कहानी है जो हर फौजी के दिल में होता है। मैं पीछे नहीं हटूंगा जब तक देश सेफ ना हो। ऐसे जवान सिर्फ लड़ते नहीं, वो अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल लिखते हैं, और शायद इसीलिए उनकी

याद आज भी उन पहाड़ों में महसूस होती है, उन बर्फीली हवाओं में और उन रास्तों पर चलने वाले हर सिपाही के कदमों में। जसवंत सिंह रावत जैसे वीरों की कहानी हमें याद दिलाती है कि देश की रक्षा सिर्फ ड्यूटी नहीं, एक प्यार है, एक वादा है और एक जिंदगी से भी बड़ा जज्बा है। एक बहुत ही अमेजिंग सा फन फैक्ट मैं आपको अगर बताऊं तो कहते हैं कि कई सारे सोल्जर्स आज भी जसवंत सिंह के रूह को महसूस करते हैं। ऐसे बहुत सारे कहानियां हमने सुनी है हमारे तवांग के पहाड़ों से कि जब भी कोई आर्मी, जब भी कोई जवान ड्यूटी पर पोस्ट पर होता है और वो कहीं नींद उसे आ जाती है तो उसे एक थप्पड़ पड़ता है जसवंत जसवंत सिंह रावत के रूह की तरफ से। ये पता नहीं शायद उनका भाव हो, वो कैसे फील करते हैं, जसवंत सिंह की जो सेक्रीफाइस है शायद इतना गहरा हो गया कि हर कई जवान उसके स्पिरिट को आज भी महसूस करते हैं। जसवंत सिंह को हम जानते हैं द हीरो दैट लिव्स ऑन के नाम से भी। उन्होंने मरने के बाद भी, मर के भी आज भी उनकी आत्मा जो है हम महसूस कर सकते हैं, उनका प्यार अपने देश के लिए। ना वो उस समय पीछे हटे, ना वो आज पीछे हटे हैं। तो चलिए आज उनके नाम पर उनकी श्रद्धा और गौरव के लिए हम सुनते हैं ये बहुत ही प्यारा सा गीत। गीत का नाम है भारत हमको जान से भी प्यारा है, जिसे गाया है हरिहरन ने और निर्देश किया है AR रहमान ने। दोस्तों मैं आशा करती हूँ कि इस गीत के द्वारा आप समझेंगे हमारे वीर जवानों के दिल की गहराई को, उनके प्यार को हमारे हमारे देश के लिए, और साथ ही शायद आप भी महसूस कर पाएंगे देश के लिए वो प्यार। तो चलिए एक गीत की तरफ बढ़ते हैं, इस गीत की तरफ बढ़ते हैं जो दिल में मोहब्बत बढ़ता है अपनी देश के लिए, हमारे भारत के लिए।

0: आज की गीत माला यही समाप्त होती है, लेकिन जो एहसास हमने आज महसूस किया वो सिर्फ इस पल तक सीमित नहीं रहना चाहिए। आज हमने याद किया उन वीरों को जो सरहदों पर खड़े रहकर हमें महफूज रखते हैं। हमने उन कहानियों को सुना जो हमें याद दिलाता है कि देश सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं, देश एक जिम्मेदारी है, एक जज्बा है और एक रिश्ता है जो हर हिंदुस्तानी को जोड़ता है। देशभक्त सिर्फ यूनिफॉर्म में नहीं होती, वो हर उस काम में होती है जो हम ईमानदारी से करते हैं। ट्रैफिक रूल्स फॉलो करने में, सफाई रखने में, एक दूसरे की मदद करने में और अपने आसपास की सोसाइटी को बेहतर बनाने में, अगर हम सच में अपने देश से प्यार करते हैं तो हमें हर दिन एक जिम्मेदार नागरिक बनना होगा। क्योंकि एक मजबूत देश सिर्फ फौज से नहीं बनता, वो बनता है हर उस इंसान से जो अपनी जगह पर सही काम करता है। तो दोस्तों, आज घर जाते वक्त या इस प्रोग्राम के बाद सिर्फ गाने मत याद रखना, उन जज्बों को याद रखना जो आपने महसूस किया। अब आप सुनेंगे दिल्ली से, आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19वें रोजगार मेले में विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक नवनियुक्त युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए रोजगार मेले को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत दुनिया के विभिन्न देशों के साथ भी साझेदारी कर रहा है, जिसका उद्देश्य युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव देना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दुनिया का भरोसेमंद आपूर्ति श्रृंखला साझेदार बन रहा है। उन्होंने कहा कि दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। श्री मोदी ने कहा कि हर भारतीय 2047 तक देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: केरलम में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग के उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट यूजी पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बेंच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में

आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। इंडियन ऑयल ने बताया कि 1 मई से 22 मई की अवधि के दौरान कंपनी ने ईंधन की बिक्री में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की है। इस दौरान पेट्रोल की बिक्री में 14% जबकि डीजल की बिक्री में करीब 18% की वृद्धि हुई है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से पराजित किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: नमस्कार दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित हिंदी एवं अंग्रेजी में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। नमस्कार दोस्तों, अभी वक्त है कार्यक्रम हिंदी क्लासिक म्यूजिक का, जहां हम आपके सामने पेश करते हैं 60s से लेके 80s के दशक के सुनहरे गीत। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा ये सुहाना सफर। कुछ गाने वक्त के साथ पुराने नहीं, वो और गहरे हो जाते हैं और दिल के और करीब आ जाता है। ऐसे ही नगमे हमें एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहाँ शब्द कम पड़ जाता है और एहसास ज्यादा बोलने लगता है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है, जहाँ हम रुक कर खुद से पूछते हैं, ये कहाँ आ गए हम। न मंजिल पूरी समझ आती है, न रास्ता पहले जैसा लगता है, बस एक एहसास होता है यादों का, मोहब्बत का और थोड़ी सी तन्हाई का भी। और इसी एहसास को आज हम आपके लिए लाए हैं एक लेजेंडरी कंपोजिशन के रूप में, फिल्म सिलसिला से लता मंगेशकर और अमिताभ बच्चन की आवाज में। इस गीत के बोल लिखे हैं जावेद अख्तर ने, वहीं पे संगीत के निर्देशक हैं शिव हरी। तो चलिए इस शांत और गहरे सफर की शुरुआत करते हैं, सुनते हैं फिल्म सिलसिला का ये कहाँ आ गए हम।
1: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर

ते गुम सुन कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर यह दिल है कि कह रहा।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

0: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Pay Pro Plus with surround sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per litre in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
1: Get attractive offers up to Rs. 55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
2: I love my Eco because it's got more power.
1: And it also comes with all new safety features.
3: We love our Eco because we can bring all our friends.
2: We love our Eco
1: because it's made every journey special. Over 15 years, 12.5 lakh proud owners made their dream come true. The Eco family is growing. Get attractive offers up to Rs. 37,500.
4: दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक का ये सुहाना सफर और आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। मैं हूं आपकी आरजे मंज। कुछ गाने ऐसे होते हैं जो सिर्फ कानों तक नहीं सीधा दिल के अंदर उतर जाता है। वो ना सिर्फ मोहब्बत की बात करता है बल्कि दिल की उस आवाज की भी जो अक्सर हम खुद ही इग्नोर कर देते हैं। जिंदगी के शोर में हम इतना खो जाते हैं कि अपने ही जज्बात सुनना भूल जाते हैं। लेकिन कभी कभी एक गाना आके हमें याद दिलाता है कि दिल भी कुछ कहना चाहता है और आज का ये नगमा कुछ ऐसा ही एहसास लेकर आएगा। सादगी, मोहब्बत और एक गहरी सी इमोशनल पुकार के साथ फिल्म हमसाया से मोहम्मद रफी के अमर आवाज में एक क्लासिकल गीत जो दिल को जगा देगा। तो चलिए खामोशी को थोड़ा सा सुकून देते हैं और सुनते हैं दिल की बात। गीत का नाम है दिल की आवाज भेसन।

0: The office of the district magistrate, capital Itanagar, has observed that illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts, and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
1: दोस्तों आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिकल म्यूजिक का ये सुहाना सफर. बॉलीवुड के सुनहरे दौर की बात ही कुछ और थी, जहां गाने सिर्फ रिकॉर्ड नहीं बल्कि जिंदगी के मूड को रिफाइन करता था. और जब बात हो मस्ती, टाइमिंग और कॉमेडी के परफेक्ट ब्लेंड की, तो दो नाम खुद ही याद आ जाते हैं, किशोर कुमार और मन्ना डे. एक तरफ किशोरदा की नेचुरल मस्ती, उनका केयरफ्री अंदाज, और दूसरी तरफ मन्ना डे की क्लासिकल डेप्थ और इम्पेकेबल टाइमिंग. जब ये दोनों एक ही फ्रेम में आ जाता है तो मैजिक क्रिएट होता है. और ऐसा ही एक टाइमलेस क्लासिक हम आपके लिए लेकर आए हैं, फिल्म चलती का नाम गाड़ी से किशोर कुमार और मन्ना डे की आइकॉनिक जोड़ी में एक प्लेफुल एवरग्रीन नगमा, जो आज भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना रिलीज के वक्त था. तो दोस्तों थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए और इस क्लासिक वाइब को फील कीजिए, क्योंकि अब बजने वाला है एक ऐसा गाना जो सिर्फ सुना नहीं जाता, जिया जाता है. सुनिए बाबू समझो इशारे.
2: बाजू

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हिंदी क्लासिक म्यूजिक का ये खूबसूरत सा सफर। दोस्तों कुछ गाने हैं जो वादे जैसे लगने लगते हैं, जैसे कोई पुकार रहा हो और हम बिना सोचे बिना रुके बस चले आए। मोहब्बत की सबसे खूबसूरत बात शायद यही होती है कि दूरी कितनी भी हो, अगर दिल जुड़ा हो तो आवाज दिल तक पहुंच ही जाती है। और आज का ये नगमा भी इसी एहसास को लेकर आता है, वफा, इंतजार और एक गहरी सी इमोशनल कनेक्शन के साथ। फिल्म राजकुमार से मोहम्मद रफी की सोलफुल आवाज में एक टाइमलेस रोमांटिक क्लासिक जो दिल को छू जाता है। तो दोस्तों अपने दिल को थोड़ा सा महसूस करने दीजिए और सुन लीजिए वो एहसास जो सिर्फ प्यार समझ सकता है। चलिए सुनते हैं तुमने पुकारा और हम चले आए।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: तो दोस्तों, आज का हिंदी क्लासिक म्यूजिक का सफर यहीं पर थोड़ा ठहर जाता है। किशोर कुमार जी की मस्ती भरी अदाएं, मन्ना दे जी की गहरी संगीत की समझ, मोहम्मद रफी का वो टाइमलेस आवाज, साथ ही लता मंगेशकर का मेलोडी, इन सब ने मिलकर हमें एक ऐसे दौर में ले गए जहां गाने सिर्फ सुनने के लिए नहीं, जीने के लिए होते थे। उम्मीद है आपने भी इन पुराने नगमों के साथ अपनी यादों को थोड़ा सा फिर से महसूस किया होगा। लेकिन दोस्तों, सफर यही रुकता नहीं, म्यूजिक बदलता है, रंग बदलते हैं।

लेकिन जज्बा वही रहता है। और अब हम लेकर आ रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का अगला सेगमेंट, जहां हम सुनेंगे कुछ नए जमाने के गाने नए अंदाज के साथ। इस नए सफर की शुरुआत होगी एक सोलफुल ट्रैक से, फिल्म जोली LLB 2 से सुनते हैं दोस्तों बावरा मन, जिसे गाया है जुबिन नौटियाल और नीति मोहन की जुगल आवाज ने। तो बने रहिए क्योंकि अब म्यूजिक थोड़ा नया होगा लेकिन एहसास उतने ही गहरे रहेंगे। दोस्तों मैं हूं आपकी RJ मंच, तो चलिए शुरुआत करते हैं बावरा मन।

0: आकाशवाणी ईटानगर का अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़, दिल से दिल की बात।
1: दोस्तों, कुछ गाने आज के जमाने की धड़कन है, जहां बीट्स भी दिल की बात करता है और लिरिक्स भी अलग ही एहसास जगा देता है। आज का म्यूजिक सिर्फ सुनने का नहीं, फील करने का है, हर मूड हर मोमेंट के साथ। चलिए अब सुनते हैं अगला सॉन्ग। फिल्म सत्य प्रेम की कथा से गीत का नाम है पसूरी नू, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और तुलसी कुमार ने। संगीत के निर्देशक हैं रोचक कोहली और अली सेट्टी, वहीं पे गीत के बोल लिखे हैं गुरप्रीत सैनी और अली सेट्टी ने। चलिए सुनते हैं ये गीत पसूरी नू।

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद
1: दोस्तों, आप बने हुए हैं आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज के साथ, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। और आप सुन रहे हैं हिंदी फिल्म सॉन्ग्स का हमारा ये प्यारा सा नगमा। दोस्तों चलिए, अब इस कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और इस कार्यक्रम का आखिरी गीत लेने का। फिल्म हॉलीडे से सुनते हैं अरिजीत सिंह की आवाज में ये गीत आज दिल शायराना। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस गीत के निर्देशक है प्रीतम और संगीत गीत के बोल लिखे हैं इरशाद कामिल ने। तो चलिए एंजॉय करते हैं ये प्यारा सा गीत। साथ ही दोस्तों इस गीत के तुरंत बाद आप जुड़ेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ।

0: Akashvani, and I am Naresh Mago with the Midday News. The headlines. Prime Minister Narendra Modi distributes over 51,000 appointment letters to new recruits in various government departments. Says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 board examinations until tomorrow. U.S. Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. The newly recruited candidates selected from across the country will be joining various ministries and departments, including the Ministry of Railways, Home Affairs, Health and Family Welfare, and Department of Higher Education, among others. Addressing the Rozgar Mela, the Prime Minister emphasized that government jobs serve as a vital means to improve and ease the lives of the citizens. Mr. Modi noted that the nation has placed its trust in its Karma Yogis, and it's now their responsibility to honor and strengthen that trust through their dedication, conduct, and everyday actions.
1: Karma Yogi प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी. मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं. आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है. यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए. विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं.
0: मिस्टर मोदी हाइलाइटेड दैट द वर्ल्ड इज ईगर टू बी अ पार्ट ऑफ इंडियाज ग्रोथ जर्नी. द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द कंट्री इज ऑल्सो पार्टनरिंग विद वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड एम्ड एट प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटीज, एम्प्लॉयमेंट एंड ग्लोबल एक्सपोजर टू द यूथ ऑफ द नेशन.
1: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है. आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है. भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है. इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे. साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले.
0: Mr. Modi added that every Indian is working with a commitment to making India Viksit Bharat by 2047 and to

0: says India is partnering with various countries across the world to provide opportunities, employment and global exposure to youth. Bihar government to recruit 1 lakh teachers in the state over next 5 years. CBSE extends last date for obtaining scanned copies, photocopies of answer books for Class 12 board examinations until tomorrow. US Secretary of State Marco Rubio to call on Prime Minister Modi in New Delhi today. WHO raises public health risk of Bundibugyo strain of Ebola in Congo from high to very high. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to take on Punjab Kings in Lucknow this evening. And with that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवली निकम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक नवनियुक्त कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे कहा भारत युवाओं को अवसर रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल तक की अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा अब समाचार विस्तार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बातें कहीं प्रधानमंत्री ने कहा कि देश ने अपने कर्मचारियों पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे का मान रखें और उसे मजबूत करें श्री मोदी ने कहा कि पूरी दुनिया भारत के विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले रोजगार मिले उनका सामर्थ्य खिल उठे साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर भी मिले
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनाने के संकल्प के साथ काम कर रहा है
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आईगॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी मेरा आपसे आग्रह है इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है यही स्पिरिट यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों में नवनियुक्त 51,000 से भी ज्यादा युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे गए संसदीय कार्य सूचना तथा प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा है कि सरकार 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। चेन्नई स्थित ICF में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश बुनियादी ढांचे, डिजिटलीकरण, रोजगार के अवसरों और व्यापार में सुगमता के क्षेत्र में तीव्र प्रगति कर रहा है। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉक्टर सिंह ने कहा कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी बताया।
3: मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत आई गॉट प्लेटफॉर्म पर अभी तक 1,64,00,000 उम्मीदवार रजिस्टर हो चुके हैं और 4,776 से अधिक कोर्सेज उपलब्ध हैं। आज भी आपके द्वारा नियुक्ति पत्र प्राप्त करते ही प्रत्येक उम्मीदवार को साथ ही साथ मिशन कर्मयोगी प्रारंभ का विकल्प भी प्रदान कर दिया जाएगा।
1: देशव्यापी रोजगार मेला कार्यक्रम के अंतर्गत आज पश्चिम बंगाल में 3 जगहों पर नए भर्ती हुए उम्मीदवारों को 185 नियुक्ति पत्र सौंपे गए। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने मुख्य अतिथि के तौर पर इसमें भाग लिया। केरल में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस तथा पर्यटन राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने आज तिरुवनंतपुरम में रोजगार मेले का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया रोजगार मेला केवल एक भर्ती अभियान से कहीं अधिक है और इसका उद्देश्य युवा शक्ति को राष्ट्र शक्ति में बदलना है। पंजाब में आज रेल कोच फैक्ट्री RCF कपूरथला और पटियाला लोकोमोटिव वर्क्स पटियाला सहित 2 स्थानों पर रोजगार मेला आयोजित किया गया। यहां 281 नए लाभार्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कहा कि रोजगार मेला एक सशक्त राष्ट्रीय संस्था बन गया है जो पारदर्शिता और योग्यता आधारित समयबद्ध भर्ती सुनिश्चित करता है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि राज्य में अगले 5 वर्ष में 1,00,000 शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। शिक्षा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे हर साल कम से कम 20,000 शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि भर्ती प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए अब शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अधिसूचना हर साल जुलाई महीने में जारी की जाएगी। बिहार सरकार ने 21 जून को नीट UG पुनः परीक्षा में शामिल होने वाले राज्य के सभी छात्रों के लिए सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की घोषणा की है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे newsonair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक और दिन बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। CBSE ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा करें। आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई जिले में आज राष्ट्रीय सीमा शुल्क अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में भारतीय राजस्व सेवा के 76वें बैच के अधिकारियों की पासिंग आउट परेड आयोजित की गई। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस अवसर पर श्री चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने युवाओं को लगभग 4 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। उन्होंने कहा कि युवाओं को राष्ट्र के विकास में सक्रिय भागीदार बनना चाहिए। श्री चौधरी ने कहा कि भारत एक विकसित राष्ट्र के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विकसित भारत के निर्माण के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है और एक विकसित आत्मनिर्भर तकनीकी रूप से उन्नत और विश्व स्तर पर सम्मानित राष्ट्र को बनते हुए हम सब देख रहे हैं।
1: राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में आज रोजगार मेले का आयोजन किया गया। यहां 1100 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपे गए। जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय रोजगार मेले में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार पूरे देश में युवाओं को पारदर्शी और समयबद्ध रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।
5: रेलवे में आज करीब करीब 1,60,778 भर्तियों पे काम चल रहा है। पहले 8-8, 10-10 साल में एक बार भर्ती निकलती थी या 4-4, 5-5 साल में एक बार भर्ती निकलती थी। कांग्रेस का वो युग था। मोदी जी ने जब जिम्मेदारी ली तो उस समय को कंप्रेस किया

0: बॉम्बे उच्च न्यायालय ने महाराष्ट्र प्रशासन को जनगणना कार्य के लिए निजी गैर सहायता प्राप्त और अल्पसंख्यक विद्यालयों के लिए शिक्षकों को तैनात करने से रोक दिया है। न्यायमूर्ति गौतम अखंड और न्यायमूर्ति संदेश पाटिल की खंडपीठ ने पाया कि जनगणना अधिनियम और नियमों के अंतर्गत शिक्षकों पर जनगणना संबंधी कार्य करने का कोई दायित्व नहीं है। न्यायालय ने राज्य भर में 500 से अधिक विद्यालयों का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यालय संघों को अंतरिम राहत प्रदान की है। इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलन और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिरता की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों के इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक ही सीमित हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि हुई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी बार वृद्धि हुई है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 87 पैसे बढ़कर 99.51 रुपए प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 91 पैसे बढ़कर 92.49 रुपए प्रति लीटर हो गया है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपए की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपए हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज दोपहर नई दिल्ली पहुंचे। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो आज सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करेंगे। उत्तरी चीन के शानकसी प्रांत में किनयुआन काउंटी में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या 82 हो गई है। ये गैस विस्फोट कल सुबह ल्यूशेन्यू कोयला खदान में हुआ। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के बाद की स्थिति से निपटने के लिए उचित कदम उठाने का आह्वान भी किया है। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता जताई है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के हालिया मामलों से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंजीबुगियो स्ट्रेन से उत्पन्न सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।
1: विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक टेड्रोस अदनोम घेब्रेयेसस ने कहा है कि राष्ट्रीय स्तर पर यह खतरा बहुत उच्च, क्षेत्रीय स्तर पर उच्च और वैश्विक स्तर पर निम्न है। उन्होंने बताया कि संक्रमण के अब तक 82 मामले सामने आए हैं और 7 लोगों की मौत हो चुकी है। संगठन ने पहले इस प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया था। साथ ही ये स्पष्ट किया था कि ये महामारी के स्तर पर नहीं है। इबोला एक वायरल बीमारी है जो चमगादड़ों से फैलती है और संक्रमित व्यक्तियों या जानवरों के शरीर के तरल पदार्थों या दूषित वस्तुओं के सीधे संपर्क से फैलती है। दुर्लभ मामलों में हवा के माध्यम से भी ये बीमारी फैल सकती है। इसका ऊष्मायान काल 2 से 21 दिनों तक होता है, जिसके शुरुआती लक्षणों में बुखार, थकान, मांसपेशियों में दर्द और गले में खराश शामिल है। समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को उनके जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री ने कहा कि श्री नवीन के नए विचार, जोशीले नेतृत्व और संगठन के काम तथा प्रशासन दोनों की गहरी समझ ने उन्हें हर जगह बहुत सम्मान दिलाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। ये मैच लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी एकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रन से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली का आज अधिकतम तापमान 41 से 43 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों

के साथ साझेदारी कर रहा है। बिहार सरकार अगले 5 वर्ष में राज्य में 1 लाख शिक्षकों की भर्ती करेगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर कल की। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबिया आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला के बुंडीबुग्यो स्ट्रेन से उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम किया। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आकाशवाणी ईटानगर के अरुण FM 103.1 MHz पर, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित मिड डे न्यूज एवं दोपहर समाचार। अब दोस्तों, वक्त है हिट्स ऑफ 90s का, एक जबरदस्त सफर का। 90s के बॉलीवुड एक ऐसा दौर था जहाँ इमोशंस सीधे दिल से निकलता था, न ज्यादा फिल्टर्स, न ज्यादा शो ऑफ, बस सिंपल प्यार, सीधी बात और वो यादें जो आज भी दिल में जिंदा है। दोस्तों, वो जमाना कैसेट टेप्स का था, साइकिल पे गाने गुनगुनाने का था और एक लाइन, एक एक लाइन को दिल से फील करने का था। और आज हम उसी गोल्डन एरा की शुरुआत कर रहे हैं एक ऐसे रोमांटिक ट्रैक से जो आज भी उतना ही फ्रेश लगता है जितना कि तब था। फिल्म दिल का क्या कसूर से कुमार सानू और आशा भोसले की सोलफुल आवाज में एक खूबसूरत 90s मेलोडी मिलने की तुम कोशिश करना। तो दोस्तों, थोड़ा सा वक्त पीछे चलते हैं और दोबारा जीते हैं 90s का प्यार।

0: Modern design, advanced tech. Explore Maruti Suzuki Wagon R. Now comes with a true tall boy design, strong look and robust design. Advanced K-Series engine, ideal start-stop technology and safety features like 6 airbags, ABS with AVD.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
0: Dynamic performance, sleek design. Explore Maruti Suzuki Alto K10. Comes with a mileage of 24.90 km per liter. Smart Play Studio, 15 plus safety features including 6 airbags, next gen K-Series, 1.0 liter dual jet, dual vivity engine and spacious interiors.
1: Get attractive offers up to ₹52,100. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. Terms and conditions apply.
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं हिट्स ऑफ 90s का ये यादों भरा सफर 90s के गाने की एक अलग ही कहानी सुनाता था जहां हर धुन के पीछे एक सीधी सी फीलिंग होती थी प्यार का पहला एहसास थोड़ा कंफ्यूजन थोड़ा एक्साइटमेंट और दिल की वो हलचल जो समझ नहीं आती थी बस महसूस कर सकते थे और सच कहे तो प्यार का सबसे खूबसूरत फेज होता ही वही है जब हम खुद से ही पूछते रहते हैं कहीं ये जो मैं महसूस कर रही हूँ या कहीं ये जो मैं महसूस कर रहा हूँ कहीं ये प्यार तो नहीं दिल धड़कता है

नाम किसी का आता है और मुस्कुराहट बिना वजह आ जाती है। और दोस्तों हमारा अगला गाना भी बिल्कुल इसी एहसास को कैप्चर करता है। मासूम सी मोहब्बत, थोड़ी सी शैतानी और दिल की एक स्वीट सी कंफ्यूजन के साथ। फिल्म रंग से कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। चलिए सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज में। इस संगीत के निर्देशक हैं नदीम श्रवण और गीत के बोल लिखे हैं सुरेंद्र साथी ने।

दोस्तों, बॉलीवुड के पास हर फीलिंग का के लिए गाना है। अगर आप किसी के ऊपर क्रश कर रहे हैं तो ये गीत कहीं मुझे प्यार हुआ तो नहीं। अगर आप दोनों का नया नया प्यार शुरू हुआ है तो उसके लिए अगला गीत है। हम आपको ले चलेंगे सीधा उस जमाने में जब लव लेटर्स उड़ते थे, पर एसएमएस नहीं आता था बल्कि कबूतर आते। सोच के देखिए, अगर आपका प्यार आपसे दूर हो और आप उस तक अपना पैगाम भेजना चाहें तो आप क्या करेंगे? कोई व्हाट्सएप नहीं, कोई फोन कॉल नहीं, बस एक ही मैसेंजर, कबूतर। और इसी जज्बात के साथ आपके दिलों पर छा जाने आ रहा है ये टाइमलेस क्लासिक फिल्म मैंने प्यार किया से लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम की आवाज में। ये गीत कबूतर जा, वो सलमान खान की मासूमियत, भाग्यश्री की शर्मीली मुस्कान और प्यार जो लफ्जों से ज्यादा आंखों से बयां होता था। चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: The office of the district magistrate, capital Itanagar, has observed that illegal earth cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts, and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
1: और इसी के साथ दोस्तों आज की ये सुहानी सफर यही थमता है. हिट्स ऑफ द 90s सिर्फ एक रेडियो शो नहीं, ये तो एक वक्त की मशीन है जहां हर गाना आपको ले गया किसी पुरानी याद में, किसी पहले प्यार में या किसी भूली हुई मुस्कान में. अगर आज आपने गाने सुनते सुनते दिल में थोड़ी सी नमी महसूस की हो या थोड़ी सी खुशी, तो समझ लीजिए 90s का जादू अभी भी जिंदा है. दोस्तों अब आप सुनेंगे न्यूज हेडलाइंस, जिसके बाद आप सुनेंगे मिश्मी कमान श्रोताओं का कार्यक्रम और फिर तय कामती श्रोताओं का कार्यक्रम. तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ. ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़ है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक. 3:30 पर हम फिर मुलाकात करेंगे दोस्तों बॉलीवुड अपडेट्स में. तब तक के लिए दिल से सुनते रहिए, दिल से जीते रहिए और याद रखिए 90s कभी पुराने नहीं होंगी, वो सिर्फ दिल में बस जाएगा.

नै आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वेव सिपा सिसपसी चमसी मीटर होपा चिचभा किलो हस में मुचलांग खमताई खमती हो को मा हो मने वन चने लानी पीटई सोहिंग पा साउ तो इंग्रजी पीमो सोहिंग साउ हो नुन मे नै साउ साम वन नम हो वती कुनसिंग कुन मंग तंगलाई मोसम नम खाम मने हे नै थोम खाता प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वन मनाई नियाती तक्तांग सिपकौहा रोजगार मेला मई लोक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग न हासिप इट हिंग अपॉइंटमेंट लेटर मल लाइ डिपार्टमेंट नई खाओ मई तक आप हर कन्याओ रोजगार मेला नई कुपा कुना न सी सेप चेट निया मई तक तंग का नम हो यूएस सेक्रेटरी अन स्टेट मार्को रूबियो मनाई कंगल कोलकाता मई तक थिंग मा हो मनचौ हंग सी वन ओले मा मुंग इंडिया का तंग नई के मनचौ सोंग हा तखा यूएस सेक्रेटरी अन स्टेट टी खाउ हुन मे थनै तिले हेडक्वार्टर ऑफ सेंट टेरेसा मिशनरीज ऑफ चैरिटी खनसम हुन लखा ऑन पोमे मियांग नै खौमै को हो वन मंगा केनमुंग ईटानगर मै न चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू फेजेस सोंग अन डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू मीटिंग अनंग तक तंग कनमा MLA Khun Sam Deputy Commissioner Khong Chila 18 Khun Sam Pabom Bere ICR Tanglong Tangmung Khau Nangka Nam Ho Ho Manta Mai Pong Loi Administrative Challenges Infrastructure Gap Manpower Shortage Khun Sam Development Priorities Mai Ausi Tak Tang Kan Ma तंग मन फेजेस साम नई को वन मनई मई मीटिंग नंग कन मा यौ हो नम खाम नई चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू मनचौ सोशल मीडिया मई पोय हल मा नम हो UPSC पांग वन फोंग एप्लीकेशन लोग एलिजिबल कैंडिडेट हंग डायरेक्ट रिक्रूटमेंट लाइ पोस्ट न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मई लखा फल गई हम नई खाउ लोक कमीशन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन एप्लाई पी निसी लौमा लोक मनाई औसी तु नून पोन सिपसोंग वन टी पोट नम हो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन last date and khong scan photo copies of answer book hang sip song dan board examination nai au khan si tu wan mohok hit hau ma board wa lakha son lek phal kai khai hit verification mark nai khau hit chiu si scan copy au ta ni si lau kan hau ma ta kha नमेन पेट्रोल खनसम डीजल खन नै खनसी तांग कौसिप इट त्रा पर लीटर नम हो लोक मने मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम खनसम नेचुरल गैस वा मंग हाउ मई नमेन खनसम डीजल लोंका नै मंग कुपा कुना मई खंग कम सुल लो खै हौमा अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस नै तक्तांग हासिप पी यौ निसी नुन नै साउ गौ वन मै APSTS टी मध्यम गोल्डन जुबली तंग मन तु लिन अन लेन नंग वा माराथन अनंग को टी औ तो निया दी नेहरू स्टेडियम

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ताईकांती श्रोताओं का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों, वक्त हो चला है हमारे खास कार्यक्रम बॉलीवुड अपडेट्स का। बॉलीवुड अपडेट्स में हम देते हैं आपको वो सारी बात बताते हैं जो फिल्मी दुनिया में चल रहा है। फिल्मी दुनिया में हमेशा कुछ नया होता है और हम लाते हैं वही सबसे पहले, सबसे खास आपके लिए यहाँ बॉलीवुड अपडेट के इस कार्यक्रम में। दोस्तों, चलिए चलते हैं पहले खबर की ओर। वीर दास का रिएक्शन CJP कंट्रोवर्सी पर। कॉमेडियन एक्टर वीर दास ने कॉकरोच जनता पार्टी मूवमेंट के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर हो रही एक्शन को लेकर स्ट्रांग रिएक्शन दिया है। उन्होंने एक्स यानी ट्विटर पर लिखा कि चाहे CJP को लोग लेजिटिमेट माने या ना माने, लेकिन जो यूथ का सेंटिमेंट और ट्रैक्शन इस मूवमेंट को मिल रहा है वो इग्नोर नहीं किया जा सकता। वीरदास के मुताबिक असली इश्यू लेजिटिमेसी नहीं है, ये तो टाइम के साथ क्लियर होगा। लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि अकाउंट्स को शट या सप्रेस करना एक अटरली डम मूव था, जिससे उल्टा मूवमेंट को और ज्यादा लेजिटिमेसी मिल गई। उन्होंने स्ट्रेसेंड इफेक्ट का भी जिक्र किया, जिसका मतलब होता है कि जब किसी चीज को छुपाने या सेंसर करने की कोशिश की जाती है तो वो और ज्यादा वायरल हो जाता है। ऑनलाइन लोगों की मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कुछ लोग वीरदास से एग्री करते हैं कि मूवमेंट को इग्नोर करने से वो खुद ही फेड हो जाता, जबकि कुछ लोगों ने एक्शन को सही बताया है। अब बात करते हैं सेवन डॉग्स इजिप्ट प्रीमियर में सलमान खान का धमाका कैमियो के बारे में। इंटरनेशनल एक्शन फिल्म सेवन डॉग्स के ग्रैंड इजिप्ट प्रीमियर में बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने छोटे से कैमियो से ही पूरी स्पॉटलाइट चुरा ली। फिल्म में संजय दत्त और मोनिका बेलुची भी है और डायरेक्टर और डायरेक्शन आदिल अल अराबी और बिलाल फला ने की है। सलमान खान पर्सनली प्रीमियर में प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उनका सबसे बड़ा सा पोस्टर रेड कार्पेट पर सबका अटेंशन ले रहा था। सोशल मीडिया पर वायरल क्लिप्स में सलमान खान को एक बार्बर शॉप सीन में इंग्लिश डायलॉग बोलते हुए देखा गया। चाहे रोल छोटा था, लेकिन फैंस ने उसे गूज बम एंट्री और मेगा स्टार मोमेंट कहा। फैंस का कहना था कि सलमान की एंट्री ने पूरी फिल्म का लेवल ही चेंज कर दिया। फिल्म की कहानी दो अलग दुनिया के लोगों के अराउंड घूमती है, एक इंटरपोल ऑफिस और एक क्राइम बॉस जो एक डेंजरस ड्रग क्राइसिस के साथ के चलते एक साथ आते हैं। अब बात करते हैं सोनू सूद के रिएक्शन स्ट्रे डॉग रिमूवल ड्राइव पर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, लेते हैं चलिए एक फिल्मी ब्रेक। सुनते हैं दर्शन रावल और जुनिता गांधी की जोड़ी का ये गीत फिल्म धड़क तू से प्रीत रे।

0: दोस्तों, एक्टर सोनू सूद ने पंजाब गवर्नमेंट के स्ट्रे डॉग्स को पब्लिक स्पेसेस से हटाने के डिसीजन पर कंसर्न जताया है। यह एक्शन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद लिया गया है, जिसमें डेंजरस या एग्रेसिव डॉग्स के खिलाफ एक्शन अलाउ किया गया है। सोनू सूद ने कहा कि उन्होंने कुछ डिस्टर्बिंग वीडियोज देखे हैं और वो चाहते हैं कि इस इश्यू को कम्पैशन के साथ हैंडल किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से स्ट्रे डॉग्स को लोकल लोग और केयर करते हैं। उनका कहना है कि सोल्यूशन सिर्फ रिमूवल नहीं होना चाहिए, बल्कि अडॉप्शन, शेल्टर्स और प्रॉपर केयर सिस्टम होने चाहिए। उन्होंने एनिमल लवर्स से अपील की कि वो आगे आकर इन डॉग्स को अडॉप्ट करें। एक्टर रवीना टंडन ने भी इस इश्यू पर अपनी बात रखी और पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान को एक इमोशनल अपील की। उन्होंने कहा कि पब्लिक सेफ्टी जरूर इम्पोर्टेंट है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ह्यूमन और बैलेंस्ड होना चाहिए। रवीना ने सजेस्ट किया कि स्टेरिलाइजेशन, वैक्सीनेशन, शेल्टर्स और रिहेबिलिटेशन जैसे स्टेप्स को प्रायोरिटी दी जाए। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब इस इश्यू को एक एग्जाम्पल बना सकता है, जहां इंसानियत और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों साथ चल सके। एक्टर जुनैद खान ने अपने रिसेंट कन्वर्सेशन में ओपनली बात की कि उनके लिए अपने फादर और सुपरस्टार आमिर खान का बेटा होना कभी भी एक नॉर्मल आइडेंटिटी नहीं बन सका। जुनैद ने कहा कि वो इस बात को एक्सेप्ट कर चुके हैं कि आमिर खान की लेगेसी का शैडो उनके साथ हमेशा रहेगा। उनके वर्ड्स में, आमिर खान के सन होने का शैडो आप कभी आउटग्रो नहीं कर सकते, वो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव, बस एक रियलिटी है। उन्होंने ये भी क्लियर किया कि आमिर खान 35 साल से इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं और उनसे कंपेयर होना इनेविटेबल है। जुनैद ने ऑनेस्टली एडमिट किया कि वो किसी रेस में नहीं है और उन्हें आमिर के लेवल तक पहुंचने में पूरी जिंदगी लग जाएगी। जुनैद ने ये भी बताया कि उनका फोकस फिलहाल सिर्फ अच्छे फिल्म सेट्स पर काम करना है, जहां एनवायरनमेंट एंजॉयबल हो और प्रोजेक्ट्स जेन्युइनली इंटरेस्टिंग हो। उन्होंने कहा कि उनका एक्सपीरियंस अब तक पॉजिटिव रहा है और उन्हें महाराज के सेट पर काम करना खास तौर पर बहुत अच्छा लगा था। उनका मानना है कि वो इंडस्ट्री में अपनी अलग आइडेंटिटी चाहते हैं, लेकिन बिना किसी प्रेशर के, स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारे बॉलीवुड अपडेट्स। बॉलीवुड की दुनिया में हर दिन कुछ नया होता है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग, कभी कंट्रोवर्शियल, कभी हैप्पी सम मोमेंट। दोस्तों, अब आप सुनेंगे इदुमिश्मी भाषा में समाचार, बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़।
1: इजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ अनि मेलेट मनी चा आरम तारीख होनीबार इरुमा केम वांचो चाय का होवांग वांगना होवांग का हो पाई फाले मंचुई जामी खामे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ए अनि वीडियो कॉन्फ्रेंस मखांग ए थम्बनकु लेके रोजगार मेला माली माली गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स बु बोमा होटम हो याबु खातो ले खापक खसे बु मोटो अन्ना पंगाम के थमांग अपॉइंटमेंट लाई जात पुनिबन आता फैचु सलुकु अंगजौ कोले ta to khanga ya tu so okam ke ma mr modi e khapak khase bu sat motto anap cha vanu ma yong yong to akat le aham atai ke rong ma le india e tabi tabi des phai yo rang van sok le tham de puli chu van le mr modi e kem des ang ke khapak khase tham vikshit bharat han pak ma le moksa le ngo tai puli chu van le haya rozgar mela गवर्नमेंट चिमा खांगे खापा खसे बु आंग मोट रन सर रन आलाय लिको आंग ले तुंग के होली चंगले अनि हजार रोजगार मेला डेस्मा पुनी अन्नत होनुई में जाऊ अतु जाले यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इंडिया मा थाम नि अली हान पक मा अनप कोलता कोलकाता कप ले वांगले ची इंडिया मा हले नोकनी बामा तुमैलम खौले गोंग कपक टिक के बोमा थाले वनटाई defense energy security technology boma indo pacific strategy bama chu arong ang le pongwang le ke ang wang ka chang le us secretary of state hale wang le kap ke sham le city ma saint teresa's missionaries of charity boma nau sam bu atua ko le sam ke kha chu chang ke mother house to ngui le เจมเมสเปมาคันดูมาอปาเกคามาทามนีเลเกดิสตริกไวส์รีวิวเมทติ้ง पापुम परे है या आईसीआर नि ओम ले डिस्ट्रिक्ट बंता अंके एमएलएस अंतोले डिप्टी कमिश्नर स्थामले हकले मनि इटानगर मलाले हायमा एडमिनिस्ट्रेटिव सट मोड थांसि टुइटाइ इंफ्रास्ट्रक्चर सट मोड अबाके मोड मि सट मि जीपी के बोमा डेवलपमेंटल सट मोड पक खत खतले टिकांके बामला रोले हालवे थामरम लेके डिस्ट्रिक्ट वाइज रिव्यू मीटिंग चु अनिलाले हाफाई तमले सोशल मीडिया मखांडू ए हया पांगजांग ओरो रंगवन लान चिचंग ले इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बोमा तिंखो आखा दंतो मक्सा लेंगो के ऑफिसर्स बु मखांग एले खनांग नु ए जुलम के होली हेया होम कंटे मोंते बामा चिंग के रोंगमा खात खा खा के प्लेटफॉर्म जो चंगपु ले होले यूपीएससी ची मखांग ए एतोला के कैंडिडेट्स बु हाटो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खामा माली माली पोस्टो मोक अंग हान पमा एप्लीकेशन फाबा खेले होले हले खात के कैंडिडेट स्टम ए लाइक्वाक अनि मखांग ए हायंग के लेट बन्नी तारिक बाबा मा कमिशन्स ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल मा को तोके सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई ए क्लास 12 परीक्षा बोर्ड परीक्षा आंसर बुक स्कैन फोटोकॉपीज अनि कपले ला चोके ले फन के चंग के चले गानी कपले हान पंग नीता चले बोर्ड लाइन नोट नो सम ए हले होम आंसर लाए स्कैन कॉपी ला के फैमा मार्क्स बट बामाटिक टोबा री एवोल्यूशन हान पंग मा को से थे चू नी नी बामा होंग का मोट ले होले पेट्रोल ही या डीजल था नी बन बामा थमरम जाऊं मुझे अनि चू लीटर टूपोंग तो पुली बन अटा पुइसा पोंग अदन ले होठोमा एयरलेट बनगा तारिक तो लीटर तो भारम पोंग अदन के फैमा बनकू तारिक तो चू पुली बन पुइसा पोंग अदन के चंके इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी थाम ए पोंगवांग लेके आंग माउंट एवरेस्ट हा हो तो ngा आंके शिको थाम इंटरनेशनल माउंटेनियरिंग एक्सपेडिशन माइलेवे मोक्सा ले सुक्ले काहोलाई मा आईटीबीपी थाम ए शिको क्लाइंबर्स बंता बोमा टेक्निकल हिया सपोर्ट स्टाफ आरमले ओमला ले मिहक बनली फैके टीम चावन नुखा खामयो असुनके हया हा हो तो नेपाल ची मखंग आचे ले साउथ कॉर्नर रोड मखंग एले ले एयले चाता तारिक तोंगा ले लनपुल होले हाजे एक्सपेडिशन तो लेन के लेट मा बनकू तारिक तो आईटीबीपी हेडक्वार्टर्स मखंग ए फुमरम ले को ले आचे के चंके हाजे टीम क्लीन हिमालय सेफ ग्लेशियर कैंपेन फैके आंग एनवायरमेंटल अवेयरनेस सत मोट मक्के बोमा एवरेस्ट खनुई टोके पंगतायान मंग बुचू आपो अरो ले चोन ले अहम को चंके ईटानगर के मेट्रोलॉजिकल सेंटर ए वेल सियांग सियांग इस सियांग लो रिवांग वैली बोमा तेरा डिस्ट्रिक्ट खान पकमा ले ऑरेंज अलर्ट जोन खामक्यक ले हाया डिस्ट्रिक्ट बुमा रंग अनि जोंतानी होनुइ तो तमतम रेनु मवात कोला ले होले हबोमा पापुम परे ओमला ले मामा डिस्ट्रिक्ट बनरम येलो अलर्ट जोन खामक्यक ले मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ए इंडिया मा पेट्रोल हिया डीजल टाटा खातो चू चिताई ले टाटा खातो चू चितुई ले पंखा तवई तई बकले ले होले हजराय ले मिनिस्ट्री ए तंगान वंती हन पकमा आबत असन ले गोंग खा मन तई लिचू होले अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विस एपीएसटीस ए एयाले चाकू तारिक तो तिरप डिस्ट्रिक्ट मा एपीएसटीस रंगपुनी बनुई के अपोना साले तु जाय हाजाचेन मा एपीएसटीस ए खोनसा मा नेहरू स्टेडियम मा गोल्डन जुबली माराथन ले अतु जाय हायमा हाफ माराथन बन किलोमीटर बोमा आगा किलोमीटर ले अपान ले रिके मालत के थामांग हिंगो चकटोन ले मुंजान जाउ को ए लेबनन तो यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग मिशन खामा मोके इंडियन आर्मी ऑफिसर मेयर अभिलाषा बाराक आंग 2025 रंग पोहान पकमा यूनाइटेड नेशंस मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर लेके मन चोंगको ले मेजर बाराक इपोंगमा यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनन यूनिफिल मा इंडियन बटालियन खामा शिकोबू टीम खामा कमांडर आंग अचांगलेंगो कोबोमा इंडियन आर्मी खामा पोंगवांग लेके शिको कॉम्बैट हेलीकॉप्टर पायलट चुचांगके हाबोमा आईपीएल क्रिकेट मा लखनऊ सुपर जेंट्स थम आजा उत्तर प्रदेश तो लखनऊ अंके भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी क्रिकेट स्टेडियम मा पंजाब किंग्स पाई अपानदारा पाई हाया मैच रंगनाक अनत बाजी सबन मेनस मखांग होवांग वांगाई अनि काका हो इवाई इजा आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ का हो।

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे वांचो भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। अब वक्त आ गया है एक बिल्कुल स्पेशल म्यूजिकल जर्नी का। अब से अगले कुछ समय के लिए हम लेकर आ रहे हैं नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले ऑफ द फिल्म नौटंकी साला। यानी दोस्तों, अब ना कोई ब्रेक, ना कोई बात, ना कोई इंटरप्शन, सिर्फ और सिर्फ गाने। बस आप अपनी आंखें बंद कीजिए, वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा लीजिए और खो जाइए उस दुनिया में जहां इमोशंस है, मस्ती है, रोमांस है और थोड़ी सी पागलपंती भी।

आकाशवाणी ईटानगर शोला पुची जानुलु ऐसो मानुले नी ऐतनी सी इधमिस्मी आहोला की जी दरगलंबो डिपार्टमेंट ममने मैं जोका चिया ऐजान बामगर हो आलो इमो आलम्रो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी में अन्ना वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मने अलिन जोका चिला माचे काकोप्रा अप्य बदा आहोगा इंडिया में जोका आयोग के बने इकिशा आत्यालम्रो को जोरगा चिता ने प्राइम मिनिस्टर में लाके गने आ मने आयु आलम रोगे बने यहाँ दाता अतिका ब्रह्म जोका योगा उषादा लगाता आहोगा ऐसा रोजगार मेला है इंडिया में जे आउ का प्रयोग यू मने अखने गला दा ला होगा अमेरिका में जे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो में कापी नहीं का बने इंडिया में मेलो गया होचा ओना अनामा कलकत्ता किम बदा आहोगा इंडिया ने अमेरिका में जोरगा जंदो अमोबा एओची पुआ ची जगा वचा रुपया में इंडिया मा मेलो इगा महो कोलकाता सेंट टेरेसा ची मिशनरी ऑफ चैरिटी मा ची हेडक्वार्टर मदर हाउस तो ने चिल्ड्रन होम मा अथु आ बदा आहोगा गवर्नमेंट में काजी जोगा वे आयो अम्रो दो ने जया इमु काजी जोगा आई दो ने काजी डेवलपमेंट जो मा बेहेंदो अथु देवे थोपुची पुआ ची जगा वचा चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू ने बुनी ईटानगर माने मीटिंग जिनेगा मा पपुम परे ने कैपिटल आतिका लापरागे होलोके डिस्ट्रिक्ट माचे एमएलए तो ने डीसी आलमपुर में गिगा बदा ला होगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चे उखो पोस्ट योगा मा क्यूदा उया में ऐताइन ने अब अहिला के पोचे जी होलो निमा चिन निबा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी ची ऑनलाइन पोर्टल माने अमुहा तिजिना ला होगा क्लास हुलु निमाचे आंसर आजपो हिलाओ इन्या है अनाय लिबा जी पोतगा लदा ने सीबीएसई माचे में ला होगा ने आजो हितुआ में एप्लिकेशन आजो हाते हो है एतनी ला प्रगे अनिनी मोखा गदा ला होगा इनिमु पेट्रोल दो ने डीजल अमय तगा मा गवर्नमेंट में ओना आकानी हुआ माचे अमय है प्रागबुशी अमय बा ऐचगा बदा होगा आ मुहे हो आ चला पुची जो मा माचे ने लिटर के मा प्रासो आमे बा ए आइ दोने अबे छि बु आसु ने पा प्राग बुशी आमे बा एगा बचे इनु गे नो गैस पु गबने इनि मे गैस पु आमे मु मामा थोन द हिमि इमु दया देगा मा हो इनु न्यू गवर्नमेंट में इनि मु गैस पु चोगुम दा लाहवा तगा मा इंडिया तिका एम एम गैस पो लुजी साखा लदा ने पेट्रोलियम दो ने नेचुरल गैस मिनिस्ट्री मच में ला होगा ना अरुणाचल प्रदेश मा अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस ए पी एस टी एस खागबा मंगा हूं बा महों ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में एचला पुची जानू हेखी माचि ने तिराप डिस्ट्रिक्ट खुंसा तिकोचे नेहरू स्टेडियम मा ने मंगा हूं बा इनी एना नगाओ मा अन्यू खे किलोमीटर हूँ किलोमीटर दो ने मंगा किलोमीटर मैराथन ठूमगा अखगा उदा ला होगा ने आ एमगा मा ठो नया है पाउ प्राइस हंगा उदा ला होगा लेबनान मा चे यूएन पीस कीपिंग मिशन मा जम्बेगा इंडियन आर्मी मा चे मेजर आजा अभिलाषा बराक है या नुगे बने यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड हंगा बदा आ होगा मेजर बराक में इंडियन आर्मी बटालियन याको नंबर चीफ फेमेल इंगेजमेंट टीम हेता नेगा महो आ में इंडिया मच एहन दो पायलट सेगा याकुदा लगा आईपीएल मैच आहोमा एतानी उत्तर प्रदेश लखनऊ मच अटल बिहारी वाजपेयी एकनाथ क्रिकेट स्टेडियम मने लखनऊ सुपर जायंट ने पंजाब किंग्स में एमगाई बोदा ला होगा ऐसा लिखी मची यानि अलियांडो माउंट एवरेस्ट यानि पु शूटेगा मा ताजू मेगे आजिगा बदा आहोगा ऐसा होने हैं तो आईटीबीपी मची होलो के या कुछ अपहे आलमरो में बुनी निगा नामा ताहो बजने मारो कांज मिनट मा ऐसा इन पेरो दने माओ बैंयो अने कप्पू यू मीटर यू माउंट एवरेस्ट यानि पु शूटेगा बदा ने आईटीबीपी मची आजागा में ला होगा ने यू में सुहिम्यांदो साउथ क्लोनेल रूट आए छे माने।

दोस्तों अभी आप सुन रहे थे दुमिश्मी भाषा में समाचार। ये आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 MHz है, जहां हम बात करते हैं दिल से दिल तक। दोस्तों समाचार ब्रेक से पहले हम सुन रहे थे फिल्म नौटंकी साला का नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले, और हमने पॉज लिया था एक बहुत ही प्यारे गीत में, तू ही तू, जिसे गाया है आयुष्मान खुराना ने। चलिए अब वहीं से शुरू करते हैं जहां से हमने लिया था पॉज, और शुरू करते हैं हमारा नॉन स्टॉप म्यूजिक रिले। आगे कुछ पलों के लिए दोस्तों बिना किसी इंटरप्शन के आप सुनेंगे हमारा नौटंकी साला का एल्बम।

दोस्तों, फिल्म नौटंकी साला का म्यूजिकल रिले बस यही तक। आशा करती हूँ आपने भी इस फिल्म की क्वर्की वाइड रेंज ऑफ वैरायटी को उतना ही एंजॉय किया जितना मैंने किया। दोस्तों, इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं हमारे आज के दोपहर प्रसारण सभा के अंत में। अब हमारे अगले प्रसारण सभा में आपको एक सुरीले सफर पर ले जाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ चुके हैं आरजे अपर्णा। अब मुझे यानी आपकी आरजे बिंदुम बिंदु मंच को दीजिए इजाजत। मैं आशा करती हूँ आपका शाम सुहाना हो और आप हमेशा सेहतमंद रहे। हंसते रहिए, गाने सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हमारे इस प्रसारण सभा को आप तक पहुंचाने के लिए स्टूडियो तथा एचपीटी में मौजूद थे अन्य सहकर्मियों सहित प्रसारण निष्पादक पी दोले एवं तकनीकी अभियंता बीसी शर्मा। दोस्तों, अब कुछ ही देर में आप सुनेंगे तांसा श्रोताओं का कार्यक्रम तांसा भाषा में समाचार, तो बने रहिए आकाशवाणी ईटानगर के अरुण एफएम 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, जहां हम बात करते हैं हमेशा दिल से दिल तक।

Ira akaswani itanagar dibrigar majusa duba rangkaro pang hayat nira krokro pang mejiling rangkarum tarik aro majurangja runglang ru kwang kon kamamai ro prime minister narendra modi ro bali bai department tam nang nei pariju organization tam nang sakul kam lap put jaru je chang hem appointment letter lik pu majusa rozgar mela nang video conferencing kaulam ma tafu kutu prime minister modi ro masau phan bai te nang sorkai ro mungwang jrau jasa mai ma sakuri kam kumunai hobida kumung ro bali bai mungtam jam ma krum lo kam sum ro ngoro te aro nang mung pa viksit bharat te yang ma kau nang mungwang jrau jasa mai yang pa nari secha ro moment prime minister modi ro phan te aro sorkai ro युवा शक्ति म अन्या हुबिदा कुम तान्र पर्प रोजगार मेला र तखै र मु प्राइम मिनिस्टर मोदी र भिडियो कन्फरेन्सिङ काउलाम म मसौ फान बाइते नाउ फान द रोजगार मेला प नाङमुङ बपम नाङ बलयोङ रासनन खग जगा ताम नाङ तथुङ त युएस सेक्रेटरी अफ स्टेट मार्को रोबियो र इन्डिया प रामलै राम राय रामुङ रौ मसौ रनाफ कोलकाता नाङ थोक द Marco Rubio pe India nang afang lak raro mung nai tung rohom pe tachen chi per ma trade nai defense kau nang la energy security nang nai technology per ju Indo Pacific strategy tam kau nang mung nai tung kang rohom pe tachen chi ngoro te Rubio pe Kolkata nang thok to hai alau madai apir Saint Teresa's Missionary of Charity headquarters jang ra mother home nei children's home pe rai ka to Chief Minister Pema Khandu yakung nang district wise review meeting phase 2 pe manisa Itanagar nang kathung to praju Sirasikhak district tamang MLA seng nei deputy commissioner seng thok to administrative kau nang han re man nei मेन पावर मई मथोम र मानरा परम इन्फ्रास्ट्रक्चर गेप्स ताम मानप अरिङ तयाङ र रफान्त परतुङ नाङ डिस्ट्रिक्ट वाइज रिभ्यू मिटिङ फेस थ्री मनप मचौसा कथुङ र इर मिटिङ प अरिङ जाङ र प्रजु एमले हेङ नुङवाङ नै परम रिमकेङ ताम नाङ काम सोम र ऑफिसर हेङ नुङवाङ सिङमुङ मई र मई म अखेक रा र मानप तार मुरो चीफ मिनिस्टर पेमा खांडू र सोशल मीडिया पोस्ट नाउ फाम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नंग बलि बाय पोस्ट ताम नंग डायरेक्ट भोटी कुरिम मुरो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यूपीएससी र अत गतक मई हेंग फांगवांग एप्लीकेशन लिंक चोर आरो एलिजिबल कैंडिडेट्स मई हेंग र एप्लीकेशन प मसो सा मसो एप्लाई कुरि र जन्या लिंग रंगसने तारीख आतंग नंग कमीशन वन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन पोर्टल काउ लम एप्लाई कुरी रक्षी मोरो द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन सीबीएसई र क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन मंगरो आंसर बुक्स स्कैन फोटो कॉपीज लम तखों म आथोन तारीख प निनापसा आता तथोत लिवन सार पन मामा आंसर बुक्स स्कैन कॉपी पर लापची है मार्क्स वेरिफिकेशन तयंग में मोरो अप्लाई कुरी में हमारे पर सने है लापची मोरो बोर्ड रफान द पेट्रोल लेटर सीनंग नहीं डीजल लेटर सीनंग मचुसा तकोसर सी पैसा है तचेन रोडे रंगसई मन तोहाई मु तुंका नंग दे तेर थांग पर लारूम खाक्सो तचेन रो इर कचे हेनंग मचोलिंग रंगस बंगा तारिक सा लेटर सिनंग सांगरोम तचेंत हाय म फंगलांग रंगस तो तारिक नंग तौसे पैसा कजोय तचेंत मु रोत आचुंग सुर कैबंग पेट्रोल ने नेचुरल गैस मिनिस्ट्री र फंदनंग मुंग नंग पेट्रोल ने डीजल प कमराप अतोंग खाम नंग मुंग वपम नंग तेल सप्लाई प अमामा जंग रु मु रोत आरो मचो बलांग तेल आरो मचौ बांलां तेल डिमांड पर नरी छेन रो होमय नंग मैहेंग रो सैपादक सेरो नै सिंगमुंग मै रो करुम कुरो तेल पर नरी नुंगलंग म होहाय कुशिमो मिनिस्ट्री रो फान द अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेस एपीएसटीएस रो पन
pam ayong so thoro sakan po machuling rangkhrat ka utarik nang sereng si parsa APSTS ro tirap district nang khunsa hanang Nehru Stadium nang Golden Jubilee Marathon thatungchi aro half marathon cheshi wen ro nei 10 km marathon cheshi wen ra parma 5 km runs cheshi wen ro kes ngan lapching ro de Lebanon mung nang United Nations Peacekeeping Mission jam kam sum ramai Indian Army officer Major Abhilasa Barakma United Nations Military Gender Advocate of the Year Award 2025 per kuta Major Barak machau Lebanon mung nang United Nations Interim Force nang Indian Battalion nang Female Engagement Team Commander Kayangla Parama Major Barakpo Indian Army Nang First Woman Combat Helicopter Pilotman Jangla Morota Meteorological Center Itanagar Onachal Pradesh Wang West Siang District Nai Siang District La East Siang Lower Devang Valley District Nai Tirap District Tampa Orange Alert Zone Nang Jangla Morota Iri district tam nang machosa akau hatam nang ramong rangfiek nei rang hai chi jam rang ahan jenchi man ajang ngo ro te pertung nang papumpare district nang mo alo serai room khak district tam ko yalu elar jon nang jang ro ngo ro te rung rang itana thum le

0: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे तांगसा समाचार। अगर आप हमारे तांगसा श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों। जी हाँ, मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही DRM के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, वो कहते हैं ना कि कदर करना सीख लीजिए, ना जिंदगी वापस आती है ना जिंदगी में आए हुए लोग। कई बार तबीयत दवा लेने से नहीं, हाल चाल पूछने से भी ठीक हो जाती है ना दोस्तों। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, एंड अ वेरी वेरी वार्म इवनिंग फ्रेंड्स। FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। संचरण निष्पादक टीतांजांग, तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्मो तथा स्टूडियो और HPD में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी की अपनी आरजे अपर्णा आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती है, और साथ ही है मौजूद आप सभी के खिदमत में अब से लेकर रात्रि के ठीक 9:30 तक। लेकिन दोस्तों, सबसे पहले हम शुक्रिया अदा कर देते हैं आरजे मांझ का, जिन्होंने मुझे स्टूडियो हैंडओवर करके गई है, और मुझे यकीन है अपने सेकंड ट्रांसमिशन के दौरान उन्होंने आप सभी की भरपूर एंजॉयमेंट कराई होगी। तो थैंक यू आरजे मांझ। तो दोस्तों, अब से उस कुछ ही दिन में आप सब आनंद उठा पाएंगे। जी हाँ, गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम के साथ बने रहे अरुण FM के साथ, सुनते रहे अरुण FM को।
1: नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: Superior handling, stylish look. Explore Maruti Suzuki Brezza. Comes with Superstar 9-inch Smart Play Pro Plus with Surround Sense by Archimis. It has 6-speed automatic 360-degree camera view, latest technology, electric sunroof, special safety features like 6 airbags, ABS, ESP, and also offers attractive mileage too. 19.89 km per liter in petrol and 25.51 km per kg in CNG.
3: Get attractive offers up to ₹55,000. Offer till stock lasts. Visit your nearest Maruti dealership today. TNC apply.
0: Good evening.

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम में। ये वो सेगमेंट होता है, ये वो प्रोग्राम है जो एक कंपोजिट प्रोग्राम है जहां हम आपको करवाते हैं मनोरंजन, लेकिन या तो कुछ इन्फॉर्मेशन या फिर कुछ छोटी सी मॉरल स्टोरी के साथ। जी हाँ दोस्तों, इसलिए इसे खास बना देता जो है। आज हम बात करेंगे आप सभी के साथ कुदरत के दो रास्ते के बारे में। जी हाँ दोस्तों, एक बच्चा दोपहर में नंगे पांव जो है फूल बेच रहा था। लोग मोल भाव कर रहे थे। एक सज्जन ने उसके पैर देखे, बहुत दुख हुआ, वो भाग कर गए और पास ही के दुकान से एक बूट लेकर आए और कहा, बेटा बूट पहन लो। लड़के ने फटाफट बूट पहने, बड़ा खुश हुआ और उस आदमी का हाथ पकड़कर कहने लगा, आप तो भगवान हो। वो आदमी घबराकर बोला, नहीं नहीं बेटा, मैं भगवान नहीं। फिर लड़का बोला, जरूर आप भगवान के दोस्त होंगे, क्योंकि मैंने कल ही रात भगवान को एक पत्र यानी कि एक लेटर लिखा और उसने कहा, भगवान जी मेरे पैर बहुत जलते हैं धूप में, मुझे एक बूट दिलवा दो। वो जो आदमी था उसके आंखों में आंसू आ गया, लेकिन वो मुस्कुराता हुआ उसको सर पे हाथ फेरते हुए चला गया। पर वो जान गया था कि भगवान का दोस्त बनना कुछ ज्यादा मुश्किल नहीं। कुदरत के दो रास्ते हैं, देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। तो दोस्तों, आप भी भगवान के दोस्त बन सकते हैं छोटी छोटी सी मदद दूसरों की करके। तो ये स्टोरी मैंने आप सभी को सुनाया, आप सभी के लिए मैं डेडिकेट करती हूँ। बहरहाल मैं अब आप सभी के लिए पेशा खिदमत करने वाली हूँ कुछ बेहतरीन नगमे। एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, अभी आप आनंद उठा रहे थे गुड इवनिंग ईटानगर प्रोग्राम के साथ। और हम आपको बता दें कि अब से बस कुछ ही देर में आप बारी बारी से हिंदी तथा अंग्रेजी में समाचार तथा नोक्ते समाचार सुन सकेंगे। तो बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।
1: नमस्कार, यह आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों के 51,000 से अधिक चयनित कर्मचारियों को नियुक्ति पत्र सौंपे। कहा, भारत युवाओं को अवसर, रोजगार और वैश्विक अनुभव प्रदान करने के लिए विश्व के विभिन्न देशों के साथ साझेदारी कर रहा है। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS अपनी स्थापना के 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में 29 मई 2026 शुक्रवार को तिरप जिले के खोंसा स्थित नेहरू स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन करेगा। केबुल ब्लूमिंग अर्ली इंटरवेंशन एंड लर्निंग सेंटर तथा अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन आयर मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सहयोग से 24 मई 2026 को ईटानगर स्थित आरके मिशन हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं कक्षा बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोंगो में इबोला के बुंडी बुगियो स्ट्रेन में उत्पन्न स्वास्थ्य खतरे को उच्चतम बत किया। और IPL क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकारी नौकरियां नागरिकों के जीवन को बेहतर और आसान बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम है। उन्होंने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश ने अपने कर्मयोगी पर भरोसा जताया है और अब ये उनकी जिम्मेदारी है कि वे अपनी लगन, आचरण और रोजमर्रा के कामों से उस भरोसे को मान रखे और उसे मजबूत करे। श्री मोदी ने कहा है कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है।
2: दुनिया भारत के युवाओं और भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस को लेकर बहुत उत्साहित है। आज दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनना चाहती है। भारत भी दुनिया के अलग अलग देशों के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। इसका उद्देश्य यही है कि भारत के युवाओं को अवसर मिले, रोजगार मिले, उनका सामर्थ्य खिल उठे। साथ साथ मैं चाहता हूं मेरे देश के नौजवानों को ग्लोबल एक्सपोजर।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि हर भारतीय देश को विकसित भारत बनने के संकल्प के साथ काम कर रहा है।
2: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा रही है।
1: श्री मोदी ने नवनियुक्त कर्मचारियों को आई गॉट कर्मयोगी प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने के लिए भी प्रोत्साहित किया।
2: कर्मयोगी प्रारंभ जैसे मॉड्यूल से आपको अपनी जिम्मेदारियां समझने में बहुत सहूलियत होगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ उठाएं। आज भारत का युवा दुनिया के हर क्षेत्र में अपनी पहचान बना रहा है। यही स्पिरिट, यही ऊर्जा पब्लिक सर्विस में भी दिखाई देनी चाहिए। विकसित भारत ऐसे ही युवाओं के प्रयास से बनेगा जो अपने काम को देश सेवा का माध्यम मानते हैं।
1: 19वें रोजगार मेले में सरकार के अलग अलग विभागों और संगठनों ने नवनियुक्त 51,000 से भी अधिक युवाओं को आज नियुक्ति पत्र सौंपे हैं। ये रोजगार मेरा पूरे देश में 47 अलग अलग जगहों पर आयोजित की गई। पूरे देश से चुने गए नए कर्मचारियों रेल मंत्रालय, गृह मंत्रालय, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और उच्च शिक्षा विभाग जैसे कई अलग अलग मंत्रालयों और विभागों में अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। अरुणाचल प्रदेश स्टेट ट्रांसपोर्ट सर्विसेज APSTS अपनी स्थापना के 50 स्वर्णिम वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आगामी 29 मई 2026 को तिरप जिले के खोनसा स्थित नेहरू स्टेडियम में मैराथन दौड़ का आयोजन करेगा। पुरुष और महिला दोनों वर्गों में हाफ मैराथन, 10 किलोमीटर दौड़ और 5 किलोमीटर दौड़ के विजेताओं को नकद पुरस्कार भी प्रदान किए जाएंगे। के ब्लूमिंग अर्ली इंटरवेंशन एंड लर्निंग सेंटर तथा अरुणाचल लाइफ सेविंग फाउंडेशन आयांग मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सहयोग से कल यानी 24 मई 2026 को राजधानी ईटानगर स्थित आरके मिशन हॉस्पिटल में रक्तदान शिविर आयोजित करेंगे। ये शिविर डोनेट ब्लड फॉर इंक्लूसिव फ्यूचर थीम के तहत आयोजित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस शिविर का उद्देश्य न्यूरो डायवर्सिटी के प्रति जागरूकता फैलाना और न्यूरो डायवर्स लोगों को समाज में स्वीकार करने का संदेश भी देना है। शिविर सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक आयोजित की जाएंगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन और बढ़ाकर कल तक कर दी है। CBSE ने यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया है, जिससे वेबसाइट बाधित हो रही थी। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थी को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पूर्ण मूल्यांकन का आवेदन करने

0: के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। सीबीएसई ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे इस विस्तारित समय सीमा का सदुपयोग करें और प्रक्रिया को पूरा कर लें। कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने कहा है कि रोजगार मेले के परिणाम स्वरूप पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से नियुक्तियों में वृद्धि हुई है। नई दिल्ली में 19वें रोजगार मेले में डॉ. सिंह ने कहा है कि इस पहल ने समय सीमा का सख्ती से पालन किया गया है, जिससे युवाओं में आत्मविश्वास बढ़ा है और योग्यता आधारित चयन प्रक्रिया सुनिश्चित हुई है। उन्होंने मिशन कर्मयोगी प्रारंभ के विकल्प के बारे में भी जानकारी प्रदान की।
1: आज हर भारतीय एक बड़े संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। ये संकल्प 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का संकल्प है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आज देश अलग अलग सेक्टर्स में निवेश कर रहा है और इस निवेश से देश के युवाओं के लिए रोजगार के लाखों नए अवसर बन रहे हैं, जिसे आज भारत में सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग की पूरी सप्लाई चेन तैयार की जा।
0: इंडियन ऑयल ने कहा है कि देश में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति स्थिर है और ईंधन की कोई भी कमी नहीं है। इंडियन ऑयल ने एक बयान में कहा है कि कुछ खुदरा दुकानों पर मांग आपूर्ति असंतुलित और चुनिंदा क्षेत्रों में मांग बढ़ने के कारण अस्थिर की खबर है। ऐसे मामले देश भर में 42,000 से अधिक खुदरा दुकानों में इंडियन ऑयल के नेटवर्क में से कुछ खुदरा दुकानों तक सीमित रही है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज वृद्धि की गई है। पिछले 10 दिन में तेल के मूल्यों में ये तीसरी वृद्धि है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 47 पैसे बढ़कर 99.51 रुपये प्रति लीटर हो गई है, जबकि डीजल का मूल्य 51 पैसे बढ़कर 92.49 रुपये प्रति लीटर हो गई है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज सीएनजी की कीमत में 1 रुपये की वृद्धि की है। इस वृद्धि के बाद राजधानी में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 81.09 रुपये हो गई है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो आज नई दिल्ली पहुंचे हैं। वे मंगलवार को नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। श्री रूबियो ने आज सेवा तीर्थ के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्री कल विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर से भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बांग्लादेश में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ बढ़ती हिंसक घटनाओं पर यूनिसेफ ने गहरी चिंता व्यक्त की है। सुरक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए तत्काल कदम उठाने का आह्वान किया गया है। कल जारी एक बयान में बांग्लादेश में यूनिसेफ के प्रतिनिधि राणा फ्लावर्स ने कहा है कि संगठन उन स्थानों पर बच्चों के साथ दुष्कर्म और हत्या के लिए हालिया मामले से बेहद आहत और दुखी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो में इबोला बुंडी बुग्यो स्ट्रेन में उत्पन्न सार्जरी स्वास्थ्य खतरे को राष्ट्र स्तर तक उच्चतम कर दिया है। एक रिपोर्ट।

0: आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। यह मैच लखनऊ में भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 55 रनों से हराया था। मौसम विभाग ने कल तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 6 से 7 दिन तक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में कई हिस्सों में लू की स्थिति बनी रहेगी। वहीं अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम के कुछ हिस्सों में आज मूसलाधार वर्षा का अनुमान है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 5 जिलों सियांग, ईस्ट सियांग, वेस्ट सियांग, लोअर दिबांग वैली और तिरप के लिए ऑरेंज एवं अन्य 13 जिलों वेस्ट कामेंग, पाके केसांग, पापुमपारे, अपर सियांग, लोअर सियांग, कामले, अपर सुबनसिरी, लोअर सुबनसिरी, लेपारादा, दिबांग वैली, नामसाई, चांगलांग और लोंगडिंग के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों में गरज के साथ बिजली गिरने और तेज से बहुत तेज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय मॉर्गन बागरा। Prime Minister Narendra Modi today distributed more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela through video conferencing. The Rozgar Mela was held at 47 locations across the country. Addressing the Rozgar Mela, Prime Minister said the country is partnering with various countries of the world to provide opportunities, employment,

दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रम। अगर आप हमारे नोक्ते श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी दोस्तों मीडियम वेव के 440.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआर

0: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: द ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कैपिटल ईटानगर हैज ऑब्जर्व्ड दैट illegal earth-cutting activities are being carried out at multiple locations without prior permissions from the competent authorities. Such activities pose serious risks to human life and property by increasing the chances of landslides, blocking drains and rivers, and damaging public infrastructures such as roads, culverts and government buildings. These issues become more severe during the monsoon season, leading to frequent road blockages, especially on NH415 and other sector roads. Therefore, under the provisions of the Disaster Management Act 2005, the district magistrate has ordered the following points. All earth-cutting activities by private individuals or government organizations are strictly banned within the Itanagar Capital Region with immediate effect until further notice. Administrative officers have been directed to take immediate action to stop such activities. Police authorities will deploy necessary forces to ensure enforcement of this order. Any violations can be reported to the District Grievances Redressal Cell. And the cell number is 700-5760-115. Strict legal action will be taken against violators under relevant section of the law. Thank you.
2: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम में। तो इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम में दोस्तों हम बातें करते हैं आप सभी से, कुछ खास कुछ छोटे मोटे स्टोरीज आपको मॉरल सुनाते हैं, मॉरल स्टोरीज सुनाते हैं, कुछ बातें करते हैं और पेशा खिदमत करते हैं बेहद चुनिंदा गीत आप सभी के लिए। तो आज मैं भी लेकर आई हूं एक बहुत ही प्यारा सा स्टोरी। चाणक्य नीति कहती है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। दोस्तों घर में बड़े बुजुर्ग, गुरु, मित्र इत्यादि कई लोग ऐसे होते हैं जो हमें कदम कदम पर सही रास्ता दिखाते हैं। जिस तरह ये लोग हमें जिंदगी जीने का पाठ पढ़ाते हैं, उसी तरह जानवर भी इंसान को कई सीख देते हैं दोस्तों, लेकिन शायद हम उसे या उन्हें गंभीरता से नहीं लेते। आचार्य चाणक्य के अनुसार इस धरती पर ऐसा कोई जीव नहीं जिसे ईश्वर ने बिना गुणों से पृथ्वी पर भेजा हो। चाणक्य ने श्लोक के जरिए एक गधे से क्या सीखना चाहिए, गधे का नाम सुनते ही आप लोग में से हम में से सब लोग चौंक जाते हैं और बेधड़ल्ले से किसी को भी या फिर बच्चे भी अगर पढ़ाई में कुछ नहीं सकते हैं ना, उनको थोड़ा सा स्लो लर्नर होते हैं तो हम झट से बोल देते हैं तुम गधा है या तुम गधे हो क्या, है ना। तो इस गधे के ऊपर ही चाणक्य ने कहा है कि गधे से हम क्या सीख सकते हैं। जिंदगी में सफल होना चाहते हैं तो गधे की तीन गुणों को जरूर अपनाइए। वो क्या क्या गुण है मैं आगे बताती हूँ स्टोरी में, लेकिन हो जाए एक प्यारा सा गीत आप सभी के लिए जो बिल्कुल आप सभी के लिए तैयार बैठा है। जी हाँ दोस्तों, तो फिर एंजॉय कीजिए।

पहला है संतुष्ट रहना। जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, यह खुशहाल जीवन जीने का सबसे बड़ा मंत्र है और इसे जितनी जल्दी अपना ले उतना ही अच्छा होता है। दोस्तों, हमारे पास उसमें संतुष्ट रहना चाहिए, उससे संतुष्ट रहना चाहिए, होर की दौड़ में हिस्सा ना ले, लालच को खुद पर हावी ना होने दे। ऐसा करने से आप हमेशा परेशान रहेंगे और खुशियां कभी भी आपके द्वार नहीं आएगी। दोस्तों जी हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बुद्धिमान बनने के साथ साथ हर काम में सफल होना है तो कभी किसी काम को लेकर आलस्य ना करे, जैसे कि गधा थक जाने के बाद भी बोझ ढोए रहता है, उसी प्रकार मन लगाकर अपने कार्य को पूरा करना चाहिए। आलसी होने से व्यक्ति को कार्य को टाला जाता है और उसे कभी भी खत्म नहीं कर पाता वो व्यक्ति, लेकिन गधा जो है हमेशा बोझा ढोते ढोते ढोते ही रहता है, वो अपने कार्य को कभी भी कल के लिए नहीं टालता।

कहानी की अगर हम कहें कि गधे को ऐसा बना दिया जाता है कि वो अपने कार्य को टाल ही नहीं सकता और इसीलिए वो कम में भी संतुष्ट रहता है, जितना दिया जाता है उतना ही खाता है, जितना लग दिया जाता है बस उतना ही करते रहता है। तो दोस्तों चलिए एक और गीत आप सभी के लिए है, एंजॉय कीजिए।

दोस्तों, गधे को ठंडे गर्म का फर्क नहीं पड़ता, वो मौसम के अनुसार खुद को ढालना जानता है और मजबूती से काम करता है। वैसे ही मौसम का बहाना करके किसी भी कार्य को कल के लिए छोड़ देना ठीक नहीं। कंपटीशन के इस दौर में ऐसा करना व्यक्ति के अवसर का खोने जैसा है। यानी कि अगर हम कल कर देंगे ऐसा सोचते हैं, हो सकता है कंपटीशन में आके कोई और आपका ये काम ये कह के ले ले कि मैं तो बस आधे घंटे में करके सर आपको या मैम आपको मैं पूरा करके दे दूंगी या दे दूंगा, तो आपका जो अपॉर्चुनिटी था वो कहीं आप मिस कर देंगे।

वो कहते हैं ना, वो कहावत है, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होगी बहुरी करेगा कब। लेकिन कुछ लोगों ने इसको उल्टा भी कर दिया है दोस्तों, कल करे सो परसों कर, परसों करे सो तरसो, इस इंतजार में कहीं बीत जाए ना बरसो। ये जो है मैंने अपनी तरफ से बोला है दोस्तों, तो अपने तरफ से बरसों मत बिताइए फ्रेंड्स, कल करे सो आज करो और आज करे सो अब का अब ही कर दीजिए, नहीं तो आपके हाथ से जो है आई हुई चीजें हैं वो कहीं उड़ ना जाए। जी हाँ दोस्तों, इससे जो है नुकसान आपका ही होगा। तो सफल होने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, जो व्यक्ति हर कदम पर मुश्किलों का सामना करने के लिए यह तैयार होता है, सफलता उसके कदम चूमती है दोस्तों। जी हाँ, और गधे से शायद मेहनत करने के सीख हमें बिल्कुल और बिल्कुल सीखनी चाहिए। चलिए एक और गीत आप सभी के इंतजार में है, तो मैं आप सभी के लिए वो प्ले कर देती हूँ, एंजॉय कीजिए।

बहुत ही प्यारा सा मीनिंगफुल सॉन्ग था दोस्तों। और चलते चलते मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आप कभी भी किसी को, किसी बच्चे को, अगर वो पढ़ाई नहीं सक रहा है, काम नहीं सक रहा है, तो उसे फट से टेक्निकल टर्म, तू गधा है, ये टर्म मत दीजिए दोस्तों। क्योंकि गधा एक रियली कहे तो बहुत ही हार्ड वर्किंग जो है एक जानवर है, जो कभी बैठता नहीं है और कभी भी थकता भी नहीं है, अपना काम करते रहता है। तो हमें कभी भी किसी को गधा वैसे भी नहीं कहना चाहिए। चलिए एक और गीत लास्ट चलते चलते आप सभी को डेडिकेट करते हुए चलते हैं, संपन्न करते हैं इवनिंग ड्राइव प्रोग्राम को। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में, बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।

यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही

0: आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 7005760115, पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51(b) के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का, जी हाँ, शाम की महफिल में। और ये कार्यक्रम आप तक पहुंचाया जा रहा है FM 103.1 MHz पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण FM से। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। शाम की महफिल में इस समय, आज के शाम, वीकेंड के शाम में आप बहुत ही अच्छे खासी वक्त शायद अपनों के साथ बिता रहे हैं। चिलचिलाती धूप या गर्मी की वजह से भी शायद आप घर पे हैं, या फिर कहीं वाटर पार्क वगैरह में होते होंगे, या फिर कई कई जगह पे तो बारिश भी हो रही है, छुटपुट बारिश की, रिमझिम बारिश की फुहारे हो रही है। आप किसी खास अपनों के साथ में बैठे हुए हैं और ये भी हो सकता है कि आप कहीं खास जगह पर बैठ के दूर बैठे अपने किसी स्पेसिफिक पर्सन को याद कर रहे हो। ऐसे में अगर शाम की महफिल को खास बना दे अरुण FM तो क्या बात है ना दोस्तों, क्योंकि हमारा तो काम ही है आपके लिए काम करना और आपके शाम को परफेक्ट एम्बियंस देना बॉलीवुड ट्रैक के साथ। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं ना कि प्यार जब दिल में उतरता है तो उसकी मिठास भी अलग होती है और जुदाई का दर्द भी। दोस्तों आज हम कुछ ऐसे ही गीतों को आप सभी के लिए लेकर आए हैं, जो गीत सिर्फ सुने नहीं जाते, उन्हें महसूस किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, और अब जो गीत मैं सुनाने जा रही हूँ उसमें प्यार है, इंतजार और दिल की बेचैनी को खूबसूरती से बयां करता है। तो आइए खो जाते हैं इस सदाबहार नगमे की मिठास में और बना देते हैं आज की शाम को कुछ खास।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों, अब आप सुन सकेंगे एक और प्यार भरा गीत। जब भी प्यार की बात होती है तो दिल में किसी खास का चेहरा जरूर उभर आता है, और ऐसे में एहसासों की खूबसूरती से बयां करता हुआ ये शानदार गीत अगर आ जाए तो क्या बात है। जी हाँ, और एहसासों में खोने के लिए बस कुछ नहीं है, बस दिल को छू लेने वाली गीत होती है और कानों को सुकून देता है, दिल को सुकून देता है दोस्तों ऐसे गीत। तो लीजिए, एंजॉय कीजिए इस खूबसूरत से गीत को।

दोस्तों, इस बहुत प्यारे से नगमे के साथ ही हमारी आज की शाम की महफिल दोस्तों अब यहीं पर संपन्न होती है। हम ये उम्मीद रखते हैं कि आपको हमारे आज के इस सेगमेंट पे पेश किए गए नजराने सभी बेहद पसंद आए होंगे। FM बैंड के 103.1 MHz पर यह आकाशवाणी का अरुण FM है। अरुण FM यानी कि आप सभी का अपना FM, अरुण FM, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक, है ना दोस्तों। तो अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ। बने रहे अरुण FM के साथ और सुनते रहे अरुण FM को। नमस्कार ईटानगर के वासियों, मौजूदा मानसून को देखते हुए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में भूस्खलन, बाढ़, सड़क अवरोध की आशंका हो रही है। यदि अग्रिम सावधानी नहीं बरती गई तो मानव जीवन और संपत्ति की हानि होने की पूरी संभावना है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर के रहने वाले सभी निवासी जल्द से जल्द संवेदनशील क्षेत्र को खाली करें ताकि संभावित जान माल की हानि से बचा जा सके। मॉनसून के आगमन के साथ लोगों की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण सावधानी बरतना आवश्यक है और उचित तैयारी से इसके प्रभाव को भी कम किया जा सकता है। जैसे कि जल भराव वाले क्षेत्र में न जाए और जलमग्न सड़कों, नालों या धाराओं को पार करने का प्रयास न करे, क्योंकि पानी का स्तर और बहाव अपेक्षा से अधिक हो सकता है। भारी वर्षा, आंधी तूफान और तेज हवाओं के दौरान अत्यंत आवश्यक न हो तो घर के अंदर ही रहे। आपातकालीन संपर्क नंबर और हेल्पलाइन नंबर हमेशा अपने पास रखें। बिजली के उपकरण और वायरिंग को पानी से दूर रखें ताकि करंट लगने से बचा जा सके। जो लोग निचले या बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में रहते हैं वे सतर्क रहे और आवश्यकता पड़ने पर सुरक्षित स्थानों पर चले जाए। तूफान या बिजली गिरने के दौरान पेड़ों, बिजली के खंभों या अस्थायी ढांचों के नीचे शरण न ले। पीने का पानी, आवश्यक दवाइयां, टॉर्च और बैटरियां जैसे आपातकालीन सामान तैयार रखें। प्रशासन द्वारा जारी मौसम संबंधी चेतावनियों पर ध्यान दें और निर्देशों का पालन करें। बाढ़, गिरे हुए पेड़, क्षतिग्रस्त बिजली के खंभे या

0: नालों जैसी घटनाओं के तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना भी दे। और किसी भी इमरजेंसी नंबर के लिए आप डायल कर सकते हैं DEOC यानी कि डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेटिंग सेंटर का नंबर, जिसका नंबर है 9436824371। धन्यवाद।
1: नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
2: दिल से दिल तक बात पहुँची, मिलते मिलते सनम, ओ
3: गीत संगीत
4: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
3: प्यार भरे अल्फाजों में
4: दिल से दिल की बात,
3: बस आपके नाम।
4: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगा।

वाकई दोस्तों आपके दिल से हमारे दिल का रिश्ता वाकई पुराना है, तभी तो हम आ जाते हैं बार बार आप सभी के खिदमत में, आप सभी का मन पसंदीदा प्रोग्राम्स लेकर। जी हाँ, वक्त हो चला है हिंदी फिल्मी गीतों का, तो एंजॉय कीजिए बैक टू बैक सॉन्ग से।

नमस्कार अरुणाचल, स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।

दोस्तों, अभी आप आनंद उठा रहे थे दोस्तों, हिंदी फिल्मी गीतों के साथ, और इसे आप सबके लिए पेश किया जा रहा था एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर से, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम से। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम। हम आप सभी को बता दें कि 6:10 का वक्त रहेगा, जी हाँ दोस्तों, हमारे आदि समाचार का, यानी कि आदि में आप समाचार सुन सकेंगे। तो कृपया कुछ पल प्रतीक्षा करें।

अभी आप वो सुन रहे थे हमारे आदि में समाचार। अगर आप हमारे आदि श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में, यानी कि 675 किलो हर्ट्ज पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलो हर्ट्ज पर। जी हाँ दोस्तों, आप सुन रहे हैं एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के अरुण एफएम को। वक्त हो चला है दोस्तों आज के कलाकार का। आज के कलाकार में आज हम पेशे खिदमत करने वाले हैं एक ही कलाकार, यानी कि सलीम खान के बहुत ही सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स को, और उनके बारे में बातें करेंगे। जी हाँ, सलीम खान अगर हम कहें तो भारतीय सिनेमा के एक पटकथा लेखक, अभिनेता और फिल्म निर्माता है। जी हाँ दोस्तों, और इनका जो है वास्तविक नाम है अब्दुल सलीम खान है। जी हाँ, सलमान खान के नाम से आप तो बहुत परिचित है, यानी कि सलमान खान के पापा के रूप में। लेकिन मैं बता दूं आप सभी को कि सलीम खान जो है सलमान खान की परिचय की मोहताज बिल्कुल नहीं है। तो अगर हम कहें दोस्तों कि अब बहुत ढेर सारे फिल्में हैं, जैसे जंजीर, दीवार, शोले, सीता गीता, डॉन, त्रिशूल, क्रांति, तो एक लंबी सी लिस्ट है सलीम खान की फिल्मों की। बहरहाल बातें कम करते हुए आप सभी को मैं दिखा देती हूं आप सभी के पसंदीदा फिल्मों के गीत जो कि सलीम खान के लिखे हुए हैं। जी हाँ,

सलीम खान जो है दोस्तों अभिनेता बनना चाहते थे, लेकिन बन गए वो एक जो है पटकथा लेखक। इनका जन्म जो है भारत के इंदौर शहर में हुआ और इनके पिता ब्रिटिश भारतीय सेना में थे। सलीम खान ने साल 1959 में बतौर अभिनेता से करियर की शुरुआत की। हालांकि उन्हें पर्दे पर कोई खास सफलता नहीं मिली और इनको जो है जावेद अख्तर ने कहा कि तुम कहानियां लिखो, किरदार गढ़ो, और असली पहचान सलीम जावेद की जो है जादुई जोड़ी बनी। और मैंने कहा ना, जंजीर, दीवार, शोले, सीता और गीता, डॉन, त्रिशूल, क्रांति, अनगिनत फिल्मों में इन्होंने लेख लिखी और बहुत अच्छे जो है इनकी फिल्में चली। तो चलिए और भी गीत आप सभी को सुना देते हैं सलीम खान के जो है लिखे हुए गीतों को, सलीम जावेद के इनफैक्ट।

दोस्तों, इसी के साथ ही हमारे आज के कलाकार सेगमेंट अब यही पर संपन्न होता है। हम आप सभी को बता दें कि शाम के ठीक 7 बजे का वक्त रहेगा निशी समाचार का। बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: Energy Security Technology of Indo-Pacific Sim Alia Dukuba Awam Ham Jamishit Kuba So Marco Rubio Ye Bharat Lo Kalijit Kuna Hamla Mem Pato Oka US Secretary of State Ye Kolkata Lo Alik Danab Kuku Lo So City Lo Home A Gede Gadok Karka Nam Saint Teresa Missionaries of Charity Headquarter Mother House Menam Lo Kali Jikuma Hamla Mempa Tardo Lunan District Wise Review Meeting Menam Ham Morga Nya Alho Itanagar Lo Chief Minister Nepema Kantu Ga Chairmanship Ara Lo Do Fukunaba So Papum Pare La Itanagar Capital Guda Lok Mimp La Sok Kabadu Kumlo Urugola Aken District Lok Emele Gudila Desi Gudha Dopa Dapa Nyakna Mahab Mempa Dop Ok Administrative Ga Kudu Kama Liku Lo Ridigrik Kunam Gala Yuk Yara Alanam Rilendaglan Gama Kunam Ni Rigmeng Kun Gudiga Puma Puchi Kunam Ok Development Namte Lo Alba Enjo kacho jiska agum ambelu ham sok kaba do kum lokai alba japka mis nyap kum ham la mempa tha to ok sok district wise review meeting lugum nan ham shilo do puk nam ham la mempa to nur shin shipu shi makazbani tar pukum lok thal ro nya to paro sarkar lo os os post le ga ba exam jila den gut ne upsc ha application ham jilig nyat ku ka ham la tom gu du kun ba ok Sikne post good lo jika miss kalam kunpa mere sangne ni candidate good ha shilogol ka lala hik la arne ga hil por ga aloluri gola lu nan tol goba commission online recruitment application portal lo jili tukka hamla jabdu kuda ba fam to class 12 board examination ga answer book good ham photocopy scan momsa alo ham Loken go Loven Lolo Jila Arne Goba Mula Modkuba Central Board of Secondary Education CBSE Mobak Ninja Pukunaba Opasik Nam Otolo Shilo Alolo Goba Mutur Modkuba Jabak Jilin Pukunaba Oka Anchar Buga Isken Munam Kopi Ham Panam Go Kuku Loso School Agriha Mark Panam Ham Alaba Kader Tapa Modkuba Apply Mulari Kudahamla Board Japata Dukunaba Ham Top alo lure ga ara lo petrol la diesel ga dor da ba kham shilo lugum na ba letar aken lo acham kona gola aken paisa go ke yad ba muji gi ba kham la mem pa do ok so gin cho lo ke liga alo lure gola long na no ho petrol la diesel liter aken lo abar burum go ke yad ba muji ga greek la ke liga alo lure gola lo ko kona nan ho letar aken lo acham kona paisa go ke yad ba muji ga greek la silo letar aken lo acham kona gola aken paisa go ke yab latem ta de kuba muji gi kwa khabla mem pa tha do Arunachal Pradesh state ga West Siang la Siang East Siang Lower Dibang Valley ok Tirap district ke thilo dugum tora ke ajen ba nido ha tup arba huluk jir kuna sok laga ba sok district gud ne orange alert ba ok sok tayo lo district uru gola om gud ne yellow alert ba Itanagar ga meteorological center ha jabe ke jip kuma khabla mem pa dok shurungan shipuye hebo
1: दोस्तों आप सुन रहे थे निशी समाचार. अगर आप हमारे निशी श्रोताओं के कार्यक्रमों का आनंद उठाना चाहते हैं तो आपको ट्यून करनी पड़ेगी मीडियम वेव के 444.4 मीटर में यानी कि 675 किलोहर्ट्ज़ पर, साथ ही डीआरएम के 666 किलोहर्ट्ज़ पर, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर या आकाशवाणी का अरुण एफएम है. अब से बस कुछ ही देर में आप आनंद उठा पाएंगे हिंदी फिल्मी गीतों के साथ.
2: नमस्कार अरुणाचल. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी. इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी. टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी. सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दें और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाएं।

इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 700-5760-115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।

0: दोस्तों, अभी आप सब आनंद उठा रहे थे हिंदी फिल्मी गीतों के सेगमेंट के साथ। जी हाँ दोस्तों, एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, अब से बस कुछ ही देर में एक और हिंदी फिल्मी गीतों का सेगमेंट हम लेकर हाजिर हो जाएंगे आप सभी के खिदमत में। बने रहे अरुण एफएम के साथ, सुनते रहे अरुण एफएम को। नमस्कार अरुणाचल। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी। इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी। टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी। सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाएं। आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाएं। ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी। धन्यवाद।
1: यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है। इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है। इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है। ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है। अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे। साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है। अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। AC ईटानगर, नाहरलगन एवं CO बंदरदेवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर, नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे। साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र, जिसका नंबर है 7005760115, पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं एनएस की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 बी के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।

वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर। यह आकाशवाणी का अरुण एफएम है। अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक। जी हाँ दोस्तों, वक्त हो चला है हिंदी फिल्मी गीतों का, लेकिन इससे पहले कुछ एक खास बात मैं आज आप सभी से कहना चाहूंगी। एक व्यक्ति को छोटी छोटी बातों पर बहुत गुस्सा आ जाता था। घर, काम और रिश्तों में उसका ये स्वभाव जो है सबको परेशान करता था। लोग धीरे धीरे उससे दूरी बनाने लगे और वो सोचता कि क्यों कोई मुझसे प्यार नहीं करता। ऐसे सोच रहा था वो। आगे क्या होता है हम आपको थोड़ी देर में बताते हैं। हो जाए इससे पहले एक बहुत प्यारा सा गीत एंजॉय कीजिए।

जो भी देखे यही पूछ है किसकी बिल्लो, हर अदा तेरी जगाती है कयामत कोई।

तो दोस्तों वो अपने आप को पूछता था कि क्या बात है कि लोग मुझसे प्यार नहीं करते, कोई मुझसे प्यार क्यों नहीं करता। और एक दिन एक बुजुर्ग ने उसे समझाया कि उसे एक लकड़ी का तख्ता जो है और कुछ जो कीले हैं उसे उन सभी चीजों को लेकर आने के लिए कहा। और जब वो लेकर आता है तब उन्होंने कहा कि जब भी गुस्सा तुम्हें आए इसमें एक कील ठोक देना। कुछ ही दिनों में उसने देखा कि तख्ता तो कीलों से भर गया। वो व्यक्ति हैरान हुआ कि उसने कितनी बार गुस्सा की है और उसे कितना गुस्सा आता है। फिर क्या हुआ आगे?

दोस्तों, हमारा जो गुस्सा करने वाला इंसान था, उसने किलो से उस तख्ते को भर दी और फिर वो एक दिन उस बुजुर्ग के पास गया और बुजुर्ग बोले, अब कोशिश करो कि जब भी गुस्सा आए धैर्य रखो, हर धैर्य से काम लोगे तो एक कील जरूर निकाल देना। धीरे धीरे उसने अपने गुस्से पर काबू पाना शुरू किया समय के साथ।

साथ सारी कीले वहां से निकल गई, लेकिन तख्ते पर गहरे निशान रह गए। वो फिर बुजुर्ग के पास गया। बुजुर्ग ने कहा, गुस्सा खत्म हो सकता है, लेकिन उसके छोड़े हुए घाव हमेशा रह जाते हैं। धैर्य ही तुम्हारी अकेली ताकत है, गुस्सा तुम्हारी कमजोरी है। उस दिन से उसने संकल्प किया कि जीवन में धैर्य को हथियार बनाएगा। उसका स्वभाव बदल गया, रिश्ते सुधर गए और लोग फिर से उसके करीब आने लगे। तो मसला ये है दोस्तों कि गुस्सा जब भी आता है वो संहार ही लाता है, बर्बादी ही लाता है। तो वैसे मुझे भी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है दोस्तों, और इस स्टोरी को सुनने के बाद, बोलने के बाद, मुझे भी अब लगता है मुझे थोड़ा सा पेशेंस की जरूरत है। अगर आपको भी बहुत गुस्सा आता है तो थोड़ा सा पेशेंस रखे, धैर्य रखे, अपने गुस्से पर काबू रखे, जुबा पर काबू रखे। देखिएगा, अगर आप धैर्य बना के रखेंगे ना, तो सब कुछ एक दिन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दोस्तों, चलते चलते अब धीरे धीरे वक्त हो जा रहा है कि हम अपनी हिंदी फिल्में गीतों का ये सेगमेंट को अब यही संपन्न करें। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि हमारे आज के इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी नजराने आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। रात्रि के ठीक 8 बजे का वक्त रहेगा वीकली स्पोर्ट्स राउंड अप का। बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को।

0: गीत संगीत
1: ज्ञान और मनोरंजन के गुलदस्ते से
0: प्यार भरे अल्फाजों में
1: दिल से दिल की बात
0: बस आपके नाम
1: ये है आकाशवाणी ईटानगर का अरुण FM 103.1 मेगाहर्ट्ज़।

0: And that was the final track for today. I hope these songs kept you company and made your day just a little brighter. This was Western Music Program, only on Akashwani Itanagar. Take care and have a great day.
1: दोस्तों अभी आप आनंद उठा रहे थे. जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न मेलोडीज के प्रोग्राम के साथ, और आपने इसका भरपूर लुत्फ उठाया होगा, इसकी हम उम्मीद करते हैं. एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज पर या आकाशवाणी का अरुण एफएम है. अरुण एफएम यानी कि आप सभी का अपना एफएम, अरुण एफएम, जहां हम करते हैं दिल से दिल की बात और पहुंचा देते हैं आप सभी के दिल की बातों को आप सभी के अपनों तक. अब से बस कुछ ही देर में आप सब आनंद उठा पाएंगे दोस्तों, जी हां, भूले मिश्रे गीतों के सेगमेंट के साथ. तो बने रहे अरुण एफएम के साथ और सुनते रहे अरुण एफएम को.
2: नमस्कार अरुणाचल. स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 से 26 के तहत भारत सरकार द्वारा अधिकृत सर्वे टीम 31 मई 2026 तक अरुणाचल प्रदेश के विभिन्न शहरों और अर्बन लोकल बॉडीज का दौरा करेगी. इस सर्वे के दौरान टीम बाजार, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, सफाई व्यवस्था और वेस्ट मैनेजमेंट साइट्स का निरीक्षण करेगी. टीम नागरिकों से सफाई और स्वच्छता को लेकर फीडबैक भी लेगी. सभी नागरिकों से निवेदन है कि सर्वे टीम को पूरा सहयोग दे और अपने शहरों को स्वच्छ और सुंदर बनाने में भागीदारी निभाए. आइए मिलकर स्वच्छ अरुणाचल और स्वस्थ अरुणाचल बनाए. ये सूचना डायरेक्टर ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज अरुणाचल प्रदेश और स्वच्छ भारत मिशन अर्बन 2.0 द्वारा जनहित में जारी. धन्यवाद.
3: यह देखा गया है कि ईटानगर कैपिटल रीजन के विभिन्न स्थानों पर बिना सक्षम प्राधिकरण से पूर्व अनुमति प्राप्त किए अवैध रूप से मिट्टी कटाई यानी कि अर्थ कटिंग का कार्य किया जा रहा है. इस प्रकार के अवैध मिट्टी कटाई से भूस्खलन जैसी घटनाओं के कारण मानव जीवन को खतरा उत्पन्न होता है तथा नालों और नदी धाराओं में अवरोध पैदा होता है. इससे सरकारी भवनों, सड़कों, नालों, पुलियों और जल निकासी तंत्र को भी नुकसान पहुंचता है. ऐसी अवैध गतिविधियों से राष्ट्रीय राजमार्ग 415 तथा अन्य सड़कों के मार्गाधिकार में बाधा और क्षति होती है, जो विशेष रूप से मानसून के दौरान अधिक देखने को मिलती है. अतः इन घटनाओं को रोकने हेतु समय रहते कार्यवाही आवश्यक है, जिस कारण डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के सबसेक्शन 30 के क्लॉज 1 के अनुसार जिला प्राधिकरण जिला स्तर पर आपदा प्रबंधन की योजना, समन्वय और क्रियान्वयन के लिए उत्तरदायी है तथा राष्ट्रीय एवं राज्य प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दिशा निर्देशों के अनुसार आवश्यक कदम उठाए जाएंगे. साथ ही सेक्शन 34 के सबसेक्शन 1 ऑफ द डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अनुसार किसी भी संभावित आपदा की स्थिति में जिला प्राधिकरण समुदाय की सहायता, सुरक्षा और राहत हेतु आवश्यक कदम उठा सकता है. अतः डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट कम चेयरमैन ऑफ DDMA कैपिटल कॉम्प्लेक्स श्री तोको बाबू आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30(1) एवं 34 के अंतर्गत आप सभी को यह आदेश देते हैं कि ईटानगर कैपिटल रीजन में निजी एवं सरकारी

सभी प्रकार की मिट्टी कटाई तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक प्रतिबंधित की जाए। एसी ईटानगर नाहरलगन एवं सीओ बंदर देवा को अपने अपने क्षेत्र में इस गतिविधि को रोकने हेतु तत्काल आवश्यक कार्रवाई करने का भी निर्देश दिया जाता है। पुलिस अधीक्षक ईटानगर नाहरलगन आवश्यकता अनुसार पर्याप्त पुलिस बल तैनात करेंगे, साथ ही इस संबंध में किसी भी शिकायत के लिए जिला शिकायत निवारण केंद्र जिसका नंबर है 7005760115 पर भी संपर्क कर सकते हैं। उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध BNSS की धारा 163 एवं BNS की धारा 326 तथा आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51B के अंतर्गत मामला दर्ज किया जाएगा। धन्यवाद।

दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भूले बिसरे गीतों के सेगमेंट के सेगमेंट में। ये भले ही भूले बिसरे गीत हो लेकिन सदाबहार नगमों का कारवा जरूर है दोस्तों। दोस्तों मौसम चाहे जैसे भी हो लेकिन ये जो गीत होते हैं ना सदाबहार गीत होते हैं। अब जो हम आप सभी को सुनाने जा रहे हैं ये एक सदाबहार नगमा जिसमें अपनी जादुई आवाज दी है किशोर कुमार ने। जी हाँ दोस्तों, और इस शाम में रियली इसको खूबसूरत और रंगीन बनाने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट बैठता है ये गीत। बस आप सभी के लिए एंजॉय कीजिए।

0: दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में कुछ मुलाकातें ऐसी होती हैं जो बस एक बहाना बन जाती है दिल की बातों को कहने के लिए। एक मुस्कान, एक नजर और दिल चुपके से किसी का हो जाता है। आज के इस खूबसूरत शाम को लेकर आए हैं एक ऐसे ही सदाबहार गीत जो प्यार की मासूमियत और दिल की धड़कनों को बड़ी नजाकत से बयां करता है। जी हाँ दोस्तों, तो आइए एहसासों में बस डूब जाइए दोस्तों।
1: गाने सुने अनसुने से जुड़े रहने।

दोस्तों, इस बेहद खूबसूरत सी गीत के साथ ही हमारे आज की भूले बिसरे गीतों का जो सेगमेंट है दोस्तों, वो यहीं पर संपन्न होता है। हम ये उम्मीद रखते हैं दोस्तों कि आपको हमारे आज के इस सेगमेंट में पेश किए गए सभी गीत आप सभी को बहुत पसंद आए होंगे। राल दोस्तों, चलते चलते अब वक्त हो चला है कि हम आप सभी से अलविदा कहें। आप सुन रहे थे एफएम बैंड के 103.1 मेगाहर्ट्ज़ पर, यानी कि आकाशवाणी के अरुण एफएम को। जी हाँ दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं दोस्तों कि हमारे आज के तीसरे प्रसारण सेवा में पेश किए गए सभी कार्यक्रम आप सभी को बेहद पसंद आए होंगे। इन्हीं तरह के तमाम ज्ञानवर्धक तथा मनोरंजक कार्यक्रमों को लेकर हम आप सभी के खिदमत में एक बार फिर हाजिर हो जाएंगे कल सुबह के ठीक 5:48 पर। कल का सवेरा आपके जिंदगी में ढेर सारी खुशियां लेकर आए। आप हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और सेहतमंद जरूर रहे। और याद रखें कि जैसे उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार परेशान मन समाधान नहीं दिखता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का हल मिल जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ संचार निष्पादक टीतानजांग, तकनीकी अभियंता होलीराम ब्रह्म तथा स्टूडियो और एसपीडी में मौजूद सभी साथियों के साथ आप सभी के अपने आरजे अपड़ा को दीजिए रुखसत होने की इजाजत। और जी हाँ, आगे के कार्यक्रमों के लिए आप एफएम गोल्ड पर बने रहे दोस्तों। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद।

0: नमस्कार, आकाशवाणी की राष्ट्रीय विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं अल्पी कुमारी।
1: और मैं संजय किशोर।
0: विज्ञान भारती में हम विज्ञान, तकनीक, शोध, नवाचार और समाज पर उनके प्रभाव से जुड़े विषयों को आप तक पहुंचाते हैं।
1: आज के अंक में हम चर्चा करेंगे आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा, विज्ञान और तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका पर।
0: इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और सुपर कंप्यूटर,
1: दुर्लभ खनिजों के निष्कर्षण की नई तकनीक,
0: विश्व प्रवासी पक्षी दिवस और बिहार में प्रवासी पक्षियों की गणना, खरीफ फसलों के नई किस्में एवं जैविक उर्वरक,
1: साथ ही सुनेंगे विज्ञान जगत की बातें, मई माह में जन्मे और दिवंगत महान वैज्ञानिकों के योगदान तथा मई माह के प्रमुख विज्ञान दिवस।

0: गौरवशाली 90 वर्षों की यात्रा इन 9 दशकों में आकाशवाणी ने केवल समाचार और मनोरंजन ही नहीं बल्कि विज्ञान और तकनीक के जन जागरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत में रेडियो प्रसारण की शुरुआत होती है वर्ष 1927 से, किंतु वर्ष 1936 के समय देश में केवल 6 रेडियो स्टेशन थे और इनकी पहुँच लगभग 11% आबादी तक थी। आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। वर्तमान में आकाशवाणी के 470 से भी अधिक केंद्र कार्यरत हैं, जो देश के लगभग 92% भौगोलिक सीमा और 99% जनसंख्या तक पहुंच रखते हैं। यह दुनिया के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक है। यह आंकड़ा केवल प्रसारण क्षमता का संकेत नहीं देता बल्कि यह दर्शाता है कि आकाशवाणी ने भारत के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक विज्ञान और तकनीक की जानकारी पहुँचाने में कितनी प्रभावी भूमिका निभाई है। आज FM, डिजिटल रेडियो और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग के माध्यम से विज्ञान आधारित कार्यक्रम नई पीढ़ी तक पहुंच रहे हैं। आकाशवाणी के 90 वर्ष केवल प्रसारण की यात्रा नहीं बल्कि ज्ञान, शिक्षा और वैज्ञानिक चेतना के प्रसार की गौरव गाथा है। स्वतंत्रता के बाद देश खाद्यान्न संकट से जूझ रहा था। कम उत्पादन, पारंपरिक खेती और वैज्ञानिक जानकारी के अभाव के कारण किसान आर्थिक कठिनाइयों में थे। ऐसे समय में आकाशवाणी किसानों का सबसे बड़ा वैज्ञानिक मार्गदर्शक बनकर सामने आया। COVID-19 महामारी के दौरान सोशल मीडिया पर अफवाहें तेजी से फैल रही थीं। वहीं लोग वैक्सीन से डर भी रहे थे, कहीं घरेलू उपचारों को वैज्ञानिक सत्य मान लिया गया था। ऐसे समय में आकाशवाणी ने डॉक्टरों, वैज्ञानिकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के माध्यम से प्रामाणिक जानकारियां प्रसारित की। ग्रामीण क्षेत्रों में जहां इंटरनेट की पहुंच सीमित थी, वहां रेडियो सबसे विश्वसनीय माध्यम बना। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा और समुद्री तूफान जैसे आपदाएं हर वर्ष लाखों लोगों को प्रभावित करती हैं। ओडिशा चक्रवात, बिहार बाढ़, असम की बाढ़ और सुनामी जैसी आपदाओं के दौरान रेडियो जीवन रक्षक माध्यम के रूप में सामने आया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में आकाशवाणी ने स्वयं को तकनीक रूप से आधुनिक भी बनाया है। विज्ञान एवं तकनीक के प्रचार प्रसार में आकाशवाणी की भूमिका के बारे में आइए जानते हैं ICMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर VK श्रीवास्तव से।
1: 1990-92 के बीच में ICMR ने आकाशवाणी के साथ मिलकर के एक रेडियो डेट प्रोग्राम किया। डेट मतलब ड्रग, अल्कोहल, टोबैको, एजुकेशन। ये ऑल इंडिया रेडियो के 84 स्टेशन से ब्रॉडकास्ट हुआ प्रोग्राम, 30 एपिसोड का, 16 लैंग्वेजेस में। तो ये प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल रहा। सबसे ज्यादा का फायदा ग्रामीण क्षेत्रों में हुआ। इसका इवेल्युएशन हम सिर्फ 2 जगह कर पाए, कर्नाटक और गोवा के ग्रामीण क्षेत्रों में। उससे पता चलता था 4-6% लोगों में, कहीं 4%, कहीं 6% लोगों ने इस प्रोग्राम को सुनने के बाद में इन बुरी आदतों से छुटकारा पाया। एक सबसे और अच्छी बात थी, ये अपने से छोटे बच्चों को सिखाते थे, उनमें बुराइयां बताते थे, उनको शिक्षित करते थे। 2 तरह का फायदा हुआ इस प्रोग्राम से। तो हम तो चाहते हैं इस तरह के प्रोग्राम और होते रहने चाहिए। सन 86 के आसपास भारतवर्ष में HIV का दौर शुरू हुआ। सन 88 में फिर मैंने HIV पर एक नेशनल फीचर, आधे घंटे का फीचर किया। उसमें हिंदुस्तान भर में जा जाकर जो उस समय के अपने एक्सपर्ट थे, मुंबई में डॉक्टर गिलाडा थे, तो चेन्नई में डॉक्टर सोलोमन थे, और यहाँ के उनकी पेशेंट्स के इंटरव्यू किए, यहाँ होम्योपैथिक एक्सपर्ट्स, आयुर्वेदिक एक्सपर्ट्स, एलोपैथिक एक्सपर्ट्स, WHO, इन सबके से इंटरव्यू करके इनकी रिकॉर्डिंग करके 30 मिनट का प्रोग्राम एक फीचर किया।
0: विज्ञान जगत में किए गए अपने योगदान को याद करते हुए आकाशवाणी में कार्यरत पूर्व ADG मनोज पटेरिया ने अपने अनुभव इस तरह साझा किए।
2: मैंने नाटक भी लिखे विज्ञान पर जो ब्रॉडकास्ट हुए। समय नाम का नाटक था जो टाइम मशीन के ऊपर था, एक प्रदूषण के ऊपर था, जिसमें ये था कि किस प्रकार से प्रदूषण आने वाले समय में मुश्किलात पैदा कर सकता है।
3: अब बात करते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी पटना की उपलब्धियों और नवीन अनुसंधानों की। संस्थान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, सस्टेनेबल एनर्जी और बिहार का पहला सुपर कंप्यूटर जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। IIT पटना के निदेशक डॉक्टर TN सिंह।
4: यहाँ पर 3 शोध के एक नए आयाम खुले हैं, जिनको हम इनक्यूबेशन सेंटर कहते हैं, TBI, TIH। इन तीनों का मैंडेट अलग अलग है और इसमें एक नए नवाचार और नए तरह की शोध करने वाले विद्यार्थियों, न केवल IIT पटना के लेकिन बिहार और सुदूर राज्यों से भी आए हुए विद्यार्थी विद्यार्थी इसमें काम करते हैं। नई एक शोध हमारे यहाँ के एक शिक्षक और विद्यार्थियों ने मिलकर किया है कि डिमेंशिया की बीमारी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे डिटेक्ट किया जा सकता है और उसके तहत उनका पेटेंट भी ग्रांट हुआ है। इस तरह से हमारे यहाँ 100 से ऊपर के पेटेंट फाइल हुए हैं और बहुत सारे ग्रांट भी हुए हैं। अभी भाषिनी प्रोजेक्ट चल रहा है जो अंतर इंस्टीट्यूशनल कार्यक्रम है जिसमें कि कुछ IIT कुछ NIT कुछ यूनिवर्सिटी सभी मिलकर के ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं जिसमें एक भाषा में यदि कोई व्यक्ति बोल रहा है तो सुनने वाला अपनी लोकल भाषा में उसको समझ सके और उसको सुन सके और प्रश्न भी कर सके अपनी भाषा में, तो वक्ता के पास उसकी भाषा में जिसमें वो बोल रहा है उसको वो प्रश्न का उत्तर देगा। बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत ही सफल प्रयोग है यहाँ के शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए और पहली बार IIT पटना से विदेश में बैटरी गई है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। बिहार में पहला सुपर कंप्यूटर IIT पटना के प्रांगण में स्थित है। हमारे यहाँ जो सुपर कंप्यूटर है ये ब्रह्मास्त्र का हम बोलते हैं, ये सुपर कंप्यूटर की 13 बाइट में इसकी स्पीड हो, 13 बाइट बहुत ही फास्ट स्पीड, त्वरित काम को निष्पादित करने का इसके अंदर जो है काम है। AI के क्षेत्र में काफी यहाँ काम हो रहा है, केवल हम भाषा तक ही नहीं, हम AI के क्षेत्र में फॉर्मेशन तक के अंदर किस तरह से 5G, 6G को स्पीड अप किया जाए उसके लिए भी, और क्वांटम में भी यहाँ का फिजिक्स और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का विभाग जो है वो राष्ट्रीय स्तर के जो मिशन है क्वांटम का उसके साथ जुड़े हुए हैं।
0: दुर्लभ खनिज यानी रेयर मिनरल्स या क्रिटिकल मिनरल्स, ये ऐसे खनिज हैं जो स्वच्छ ऊर्जा, विद्युत, वाहन, रक्षा, अंतरिक्ष, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा उन्नत विनिर्माण उद्योगों के लिए अत्यंत आवश्यक होते हैं। वर्तमान समय में वैश्विक स्तर पर 17 खनिजों को दुर्लभ खनिज का दर्जा दिया गया है जिनकी मांग तेजी से बढ़ रही है क्योंकि विश्व ऊर्जा परिवर्तन यानी एनर्जी ट्रांजिशन और हरित प्रौद्योगिकी की ओर अग्रसर है। भारत का राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन या ANRF देश के विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और अनुसंधान संस्थानों में वैज्ञानिक अनुसंधान और नवाचार के लिए धन देने, बढ़ावा देने और रणनीतिक दिशा प्रदान करने के लिए अनिवार्य सर्वोच्च निकाय।

0: एएनआरएफ ने आईआईटी पटना के एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत हती के परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक से दुर्लभ खनिज के निष्कर्षण के अनुसंधान को ग्रांट दिया है।
1: जो आपका दुर्लभ खनिज है और हम लोग बोलते हैं कि क्रिटिकल मिनरल्स है, ये है कि आपका जो हम लोगों का डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स या इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स होता है, तो वो सब चीज

0: जो डिपॉजिट्स होता है, सो ये डिपॉजिट से अगर आप एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जो हम लोग उनको बोलते हैं कि प्राइमरी सोर्स या प्राइमरी रिसोर्स, तो वो उसके जियोलॉजिकल हैजर्ड्स हो सकते हैं। तो नेक्स्ट जो होता है हमारे पास सेकेंडरी रिसोर्स होता है। सेकेंडरी रिसोर्स ये होता है कि जैसे ई वर्ज्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, जो भी हम लोग डे टू डे यूज करते हैं, तो सारा चीज एक यूजुअल लाइफ पीरियड के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाता है। और ऑब्सोलीट हो जाने के बाद क्या है कि उसमें उससे हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से उसको हम लोग निष्कासित करते हैं। निष्कासित करने के लिए आपके पास तरीका जो होता है, टेक्निकल तरीका, वो बोलते हैं कि पायरोमेटलर्जी, हाइड्रोमेटलर्जी एंड बायोमेटलर्जी। पायरोमेटलर्जी में हम लोग क्या करते हैं कि आपको हीट ट्रीटमेंट देते हैं, और उससे क्या है कि अगर आप मेटेरियल प्राइमरी सोर्स पे अगर कोई मटेरियल है, प्लास्टिक्स है, तो उसको जलाया जाता है, तो उससे प्रदूषण हो सकता है। तो इसलिए दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास हाइड्रोमेटलर्जी होता है। हाइड्रोमेटलर्जी में जनरली लोग क्या करते हैं कि एसिड और अल्कली यूज करते हैं, तो वो जो एसिड और अल्कली होता है वो जनरली कन्वेंशनली लोग उसका स्ट्रॉन्ग एसिड और अल्कली यूज करते हैं। तो उसके बदले में अगर कुछ ऑल्टरनेटिव ये है कि अगर आप कुछ नेचुरल ऑर्गेनिक एसिड यूज करें, और नाउडेज क्या है कि नोबेल जो टेक्निक आया है उसको बोलते हैं कि हम लोग डीप यूटेक्टिक सॉल्वेंट, उससे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो हमें एनआरएफ से जो रिसर्च ग्रांट मिला है, इससे हम लोग करें सेकेंडरी रिसोर्स परमानेंट मैग्नेट। उससे परमानेंट मैग्नेट जनरली आप देखेंगे व्हीकल्स में यूज होता है, जनरली देखेंगे विंड मिल में यूज होता है। सो परमानेंट मैग्नेट जब वो ऑब्सोलीट हो जाता है उस परमानेंट मैग्नेट से, और मेजोरिटी ऑफ द सोर्स ऑफ परमानेंट मैग्नेट आपका चाइना है, तो वो सब आप एक्सपोर्ट सब बंद कर दिया। जो डेवलप कंट्रीज है जिनके पास क्रिटिकल मिनरल का मेजोरिटी ऑफ द रिजर्व्स है, वो लोग इसका दुर्लभ खनिज का एक्सपोर्ट बंद कर दिया है। जो अगर स्वावलंबी बनना है भारत को, तो इसलिए क्या है कि हम लोग सेकेंडरी रिसोर्स से ये सब पदार्थ और दुर्लभ खनिज निष्कासित करना है। तो इसी संदर्भ में ये जो परमानेंट मैग्नेट से क्रिटिकल मिनरल निष्कासित करना डीप यूटेक सॉल्वेंट लेके, ये एक हमारा पहल है जिसमें हम लोग काफी शोध कर चुके हैं, और आगे इस शोध को हम लोग स्केल अप करेंगे।
1: और अब हम जानेंगे प्रवासी पक्षी के बारे में। प्रत्येक वर्ष हजारों लाखों किलोमीटर का सफर तय करके हमारे देश, हमारे शहर और हमारे इर्द गिर्द पहुंचते हैं, और इन्हीं पक्षियों के लिए 9 मई 2026 को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया। इस बार विश्व प्रवासी पक्षी दिवस का थीम था हर पक्षी महत्वपूर्ण है, आपका नजरिया मायने रखता है। वैज्ञानिकों के अनुसार पक्षी दो प्रमुख वजहों से प्रवास करते हैं, भोजन और घोंसले की तलाश में ये पूरी दुनिया में प्रवास करते हैं। वर्ल्ड लाइफ के अनुसार विश्व के पक्षियों की 40% प्रजातियां अब घट रही हैं। प्रवासी पक्षी पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं, और उनकी घटती संख्या जल की गुणवत्ता, खाद्य सुरक्षा और जलवायु परिवर्तन के प्रति कमजोर सहनशीलता का कारण बन रही है। भारत में हर साल 370 से अधिक प्रजातियों के प्रवासी पक्षी आते हैं। बिहार में 70 से अधिक प्रवासी पक्षियों सहित कुल 260 से ज्यादा प्रजातियों के 10,000 से अधिक पक्षियों की गणना की गई है। आप ई बर्ड बिहार पर जाकर राज्य के विभिन्न क्षेत्रों जैसे पटना, भागलपुर या और भी जो क्षेत्र हैं, उनमें हाल ही में देखे गए पक्षियों की सूची और चेकलिस्ट को देख सकते हैं। बिहार में प्रवासी पक्षियों के बारे में विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ है डॉक्टर देव नारायण चौधरी, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी डिपार्टमेंट, तिलका मांझी विश्वविद्यालय, भागलपुर।
2: पिछले कई सालों से बिहार का जो वन मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, वो और बॉम्बे की संस्था है बीएनएचएस, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, इन दोनों के प्रयास से पक्षियों की गणना शुरू हुई है। 2022 से इसकी शुरुआत हुई और ये 26 लगभग 5 गणना हो चुकी, और इससे काफी अच्छे परिणाम आए हैं। हम लोगों ने बिहार के 3800 जिलों में जितने भी इम्पोर्टेंट वेटलैंड्स है जहाँ पर इन पक्षियों का वास होता है, ये प्रवासी पक्षी जहाँ से आकर के पनाह लेते हैं, वहाँ पर इसकी गिनती शुरू हुई। और इसमें जो भी पक्षी विशेषज्ञ थे, जो बर्डर थे, जो ट्रेनर थे, उन लोगों को इसमें लगाया गया, और हर डिस्ट्रिक्ट में एक कोऑर्डिनेटर की बहाली हुई जो एक्सपर्ट के रूप में काम करते हैं। इससे अच्छे परिणाम आए, तो धीरे धीरे हर साल कुछ कुछ वेटलैंड की संख्या भी बढ़ती चली गई, उसको भी हम लोग कवर करते हैं। तो इसमें देखा गया कि एक अच्छा डाटा तैयार हो गया, और आने वाले दिनों में बिहार के पक्षियों पर एक अच्छा डॉक्यूमेंटेशन हो सकता है। जो इसके पहले 2012 में ही एक बुक पब्लिश हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट के द्वारा, बर्ड्स ऑफ बिहार, उसका जो इन्फॉर्मेशन था उससे कहीं ज्यादा इस रिपोर्ट के बाद जो ये छपेगा, तो आने वाले दिनों में जो एकेडमिक्स के फील्ड में ये एक अच्छी जानकारी साबित होगी।
1: और अब जानते हैं विज्ञान जगत की नवीनतम घटनाओं के बारे में। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाला सुपर एल नीनो 1950 के बाद सबसे शक्तिशाली में से एक हो सकता है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों को प्रभावित कर सकता है। यह कई क्षेत्रों में बाढ़,

0: सूखा, हीट वेव और जंगलों में आग जैसी घटनाओं को बढ़ा सकता है। जलवायु परिवर्तन इसकी प्रकृति को और अधिक अनिश्चित बना रहा है। सुपर एलनीनो का मतलब समुद्र के तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस से अधिक की असामान्य बढ़ोतरी से है, जिससे वैश्विक तापमान बढ़ता है। खासकर दक्षिण एशिया पर इसका अधिक असर पड़ता है।
1: भारत के असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पहली बार सैटेलाइट ट्रैक की गई गंगा सॉफ्ट सेल कछुए को छोड़कर संरक्षण के क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की गई है। यह संवेदनशील मीठे पानी की प्रजाति का कछुआ है, जो नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके व्यवहार, प्रवास और पर्यावरणीय खतरों के प्रति प्रतिक्रिया का अध्ययन करने के लिए ट्रैक की जा रही है। यह पहल वैज्ञानिकों को इस जलीय सरीसृप प्रजाति के दीर्घकालिक संरक्षण को सुनिश्चित करने में मदद करेगी। इस प्रजाति को असुरक्षित श्रेणी में शामिल किया गया है। और अब स्वाद और सेहत से भरपूर बिहार की पहचान मखाना के बारे में जानते हैं। सुपर फूड बन चुका मखाना अब वैज्ञानिक अनुसंधान के माध्यम से नई ऊंचाइयों तक पहुंच रहा है। मखाना अनुसंधान केंद्र में मखाना की नई प्रजातियों और उत्पादन तकनीकों पर कार्य किया जा रहा है। इस संबंध में ICAR राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार।
2: कोरोना काल के बाद से जब स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता काफी तेजी से बढ़ी है, तो मखाना में पाए जाने वाले जितने औषधीय गुण है, इसमें पाई जाने वाली जितनी पौष्टिकताएं हैं, तो इन गुणों के प्रति, इन स्वास्थ्य लाभों के प्रति बहुत तेजी से दुनिया भर में जागरूकता हुई है। इसमें मिनरल्स काफी प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटाशियम। पोषक तत्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हमारे न्यूट्रिशन के लिए, जैसे आयरन, जिंक इत्यादि बहुत अच्छी मात्रा इसमें पाई जाती है। इसके अलावा ये जीरो फैट फूड इसे मानते हैं। इसमें फैट की मात्रा बहुत ही कम है, कोलेस्ट्रॉल बहुत कम है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स इसमें बहुत कम होता है, मधुमेह के जो मरीज हैं वो भी बहुत से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, मोटापे की समस्या से जो ग्रसित है वो भी आसानी से इसका इस्तेमाल कर पाते हैं, क्योंकि फैट इसमें बहुत कम है। इसके अलावा इसमें बहुत सारे औषधीय गुण हैं। राष्ट्रीय मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा के माध्यम से भी एक नई प्रजाति अभी विकसित की जा रही है, और मेरा मानना है कि अगले एक वर्ष में ये वैरायटी आ जाएगी, जिसकी उत्पादन क्षमता यहां से करीब 15-20% और ज्यादा होगी। और इसके अतिरिक्त कांटे रहित मखाना के प्रभेदों के विकास पर भी अभी चर्चा हो रही है।
0: हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रासायनिक उर्वरकों के उपयोग को सीमित करने की बात कही है, ताकि खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा को प्राप्त किया जा सके। बिहार के 13 जिलों में जैविक खेती की जा रही है। कृषि विज्ञान में खरीफ खाद्यान्न की नई प्रजाति के विकास एवं ब्लू अलगी जैविक उर्वरकों के उपयोग के संबंध में बता रहे हैं डॉक्टर दिव्यांशु शेखर, कृषि विज्ञान केंद्र जाले दरभंगा।
3: जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी देश को प्राथमिकता में रखा है कि हम रासायनिक उर्वरकों से हटकर प्राकृतिक या जैविक उर्वरकों की तरफ बढ़े, जिससे कि न कि हमारा फसल की उत्पादकता बनी रहे, साथ में ही उसकी गुणवत्ता में भी कोई ह्रास न हो। खास तौर पे धान की फसल में जो हमारा ब्लू ग्रीन एल्गी या जिसको हम अजोला कहते हैं, उसका यदि हम प्रयोग करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन की जो रिक्वायरमेंट है या आवश्यकता है वो 10-20% तक हम उसके द्वारा कम कर सकते हैं। साथ में ही इसके प्रयोग करने से हमारे भूमि में कार्बनिक तत्वों की भी मात्रा बढ़ती है और साथ साथ जो खरपतवार होते हैं उनकी भी संख्या कम होती है।
1: और अब अंतरिक्ष की बात। हाल ही में विश्व का पहला ऑप्टो SAR सैटेलाइट मिशन दृष्टि लॉन्च किया गया। यह एक भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप के द्वारा बनाया गया सैटेलाइट है। अंतरिक्ष क्षेत्र में अर्जित उपलब्धियों के बारे में हमसे बात की भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुअनंतपुरम के कुलपति प्रोफेसर दीपांकर बनर्जी ने।
4: दो चीज होता है, देखिए आप जो 100 साल से हम लोग कोडाईकनाल से सूर्य का अध्ययन कर रहे हैं, ये जरूरी इसीलिए है कि वो हमारे सबसे नजदीकी तारे हैं, उसका चुंबक क्षेत्र का कुछ परिवर्तन होता है। वो परिवर्तन का एक 11 साल का एक हम बोलते हैं सोलर साइकिल जैसा है, तो कभी कभी उसमें चुंबक क्षेत्र थोड़ा ज्यादा हो जाता है, कभी कभी थोड़ा कम होता है। एंड ये जो बढ़ना और कमना का जो ऑसिलेटर पैटर्न जो है, इसको स्टडी करने के लिए एक डायनामो मैकेनिज्म को हम लोग मैथमेटिकली अब इस्तेमाल करते हैं। सोलर डायनामो एक थ्योरी है जो हमको समझने के लिए ये करते हैं कि क्यों ऐसा सूर्य में चुंबक क्षेत्र 11 साल का एक पीरियोडिसिटी क्यों रहता है। बट ये तो एक थ्योरी हो गया, थ्योरी को तो मैच करने के लिए आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ऑब्जर्वेशन जितना लंबा होगा तभी इतना अच्छा है, इसीलिए ये कोडाईकनाल में ऑब्जर्वेशन हम लोग 1904 साल से चालू किया। उसी जमाने में तो फोटोग्राफिक प्लेट होता था, फिल्म होता था, हमने वो पूरा जो आर्काइव है उसको पूरा डिजिटाइज किया है। आजकल का जमाना में तो कोई हाथ से तो कुछ करते नहीं, आपको

0: इमेज होना चाहिए जो डिजिटल मोड है. एक्चुअली पुराना आर्काइव है उसको डिजिटाइजेशन करना भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक प्रोजेक्ट है. तो ये 100 साल का पूरा डेटा डिजिटाइज करने के बाद हमने अभी अध्ययन किया कि ये 11 ईयर साइकिल कैसा होता है. कभी कभी एक साइकिल थोड़ा बड़ा होता है, कभी थोड़ा छोटा होता है. जब बड़ा होगा उसमें सोलर जो तूफान वो और ज्यादा होगा, जब थोड़ा चुंबक क्षेत्र थोड़ा कम होगा तो वो भी जानकारी होना चाहिए. एक तो है कि अभी हाल ही में ये तूफान आने वाला है या नहीं आने वाला, ये जानकारी. और एक है कि पहले ऐसा तूफान होता था कि नहीं होता था. अभी सन जो स्टार वो मिडिल एज में है, वो जब बड़ा हो जाएगा, वो रेड जायंट हो जाएगा, हम तो बच नहीं पाएंगे. अभी मिलियनियर में नहीं होने वाला है तो अभी सोचने का नहीं है, बट ये सब जानकारी होना चाहिए.
1: मई का महीना विज्ञान के इतिहास में बेहद खास है. कई महानतम वैज्ञानिकों का जन्म हुआ जिन्होंने भौतिकी, चिकित्सा और रसायन विज्ञान की दिशा हमेशा के लिए बदल दी. इस महीने देश के कुछ ऐसे महान वैज्ञानिक और गणितज्ञों का जन्म हुआ जिन्होंने न केवल भारत में आधुनिक विज्ञान और परमाणु कार्यक्रम की नींव रखी बल्कि पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया. डॉक्टर राजा रमन्ना, आप भारत के परमाणु कार्यक्रम के शिल्पकार कहे जाते हैं. आपका जन्म 28 मई 1925 को तुमकुर कर्नाटक में हुआ. के आर रामनाथन, आप भारत के मौसम विज्ञान और ओजोन अनुसंधान के जनक माने जाते हैं. आपका जन्म 28 मई 1893 को पलक्कड़ केरल में हुआ. हरीश चंद्र, जो कि गणित और भौतिकी के महान सेतु कहे जाते हैं, आपका जन्म हुआ 11 मई 1923 को कानपुर उत्तर प्रदेश में. आप महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन के सहायक भी रहे. आपने लाइक ग्रुप्स और रिप्रेजेंटेशन थ्योरी में क्रांतिकारी सिद्धांत दिए जिन पर आज भी क्वांटम मैकेनिक्स और आधुनिक गणित टिकी हुई है. हमारे अगले वैज्ञानिक हैं डॉक्टर विजय भटकर. आप भारतीय सुपर कंप्यूटर के जनक हैं. आपका जन्म 11 मई 1946 को मोरंबा महाराष्ट्र में हुआ. आपके नेतृत्व में सीडेक ने साल 1991 में भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर परम 8000 बनाया. आगे नाम आता है प्रोफेसर डॉक्टर बलराम भार्गव का, जिनका जन्म 3 मई 1961 को हुआ था. आप भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के महानिदेशक रहे. पूरी दुनिया जब सबसे बड़ी महामारी कोविड-19 से जूझ रही थी, तब भारत की वैज्ञानिक लड़ाई का नेतृत्व करने वाले मुख्य चेहरों में डॉक्टर भार्गव का नाम सबसे आगे था. और अब हम जानेंगे मई महीने में दुनिया ने विज्ञान जगत के कुछ बेहद प्रतिष्ठित चेहरों को खोया है. डॉक्टर मोनिका मोंटे फाल्कोन, आपका निधन 14 मई 2026 को हुआ. आपने समुद्री पारिस्थितिकी और जीव विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है. डॉक्टर विलियम चार्ल्स लिविंगस्टन, आपका निधन 2 मई 2026 को 98 वर्ष की आयु में हुआ. आपने सौर्य खगोल विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य किया.
2: आज विज्ञान पत्रिका के इस अंक में आकाशवाणी के 90 वर्षों की गौरवशाली यात्रा को याद करते हुए हमारे सुधी श्रोताओं ने अपने विचार कुछ इस तरह व्यक्त किए. बिहार विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर प्रेम कुमार,
3: शब्द ब्रह्म के मूल मंत्र को चरितार्थ करते हुए देश के जन जन की आवाज एवं सूचना क्रांति के उद्घोष के प्रतीक आकाशवाणी ऑल इंडिया रेडियो के गौरवमयी चरित्र के 90 वर्ष पूर्ण होने पर संपूर्ण आकाशवाणी परिवार और इसे करोड़ों श्रोताओं को मैं प्रेम कुमार, अध्यक्ष बिहार विधानसभा, हार्दिक बधाई एवं शुभकामना देता हूँ. 8 जून 1936 को अपनी औपचारिक यात्रा शुरू करने वाला आकाशवाणी आज केवल एक प्रसारण माध्यम नहीं बल्कि स्वतंत्र भारत के सामाजिक, सांस्कृतिक और लोकतांत्रिक विकास का जीवन साथी. स्वाधीनता संग्राम से लेकर आधुनिक भारत के निर्माण तक आकाशवाणी राष्ट्र के सूत्र में पिरोने का अभूतपूर्व कार्य किया है. संकट और आपदा के समय इसकी प्रमाणिक खबरों ने हमेशा देश का मार्गदर्शन किया है, जिससे इसकी विश्वसनीयता आज भी अक्षुण्ण है. जन जागृति और राष्ट्र निर्माण सुदूर गांव, खेतों, खलिहानों और सीमावर्ती क्षेत्रों तक ज्ञान और चेतना का प्रकाश फैलाने में इस माध्यम की भूमिका रहती है. कृषि सुधारों से लेकर मन की बात जैसे संवादों के माध्यम से इसने जन जागृति को एक नई दिशा दी है. स्वास्थ्य, शिक्षा विज्ञान और सरकारी लोक कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम पावदान पर खड़े व्यक्ति तक सरल भाषा में पहुंचाकर आकाशवाणी ने बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को सिद्ध किया है। मैं इस अवसर पर आकाशवाणी के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। यह अद्वितीय संस्थान आदि की अपनी स्पष्टता राजभक्ति और सेवा से देश को आलोकित करता रहेगा। रेडियो की वह मधुर पुकार आज भी दिलों में बसती है। आकाशवाणी की हर धुन भारत की आत्मा से लगती है।
1: पंचायती राज्य मंत्री बिहार सरकार दीपक प्रकाश।
4: मैं दीपक प्रकाश, मंत्री पंचायती राज विभाग, आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आकाशवाणी की पूरी टीम को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हम सबों के सामाजिक जीवन में, देश के राजनीतिक जीवन में, आर्थिक जीवन में और साथ ही साथ जो हमारा देश का इतिहास है, उन सबों में आकाशवाणी का एक विशेष रोल रहा है। आजादी की लड़ाई हो या विभिन्न कालखंडों में जन आंदोलन को लोगों तक पहुंचाने का काम हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने कमेंडेबल काम किया है। हम सबों के बचपन की यादें भी आकाशवाणी से जुड़ी हैं। क्रिकेट की कमेंट्री आकाशवाणी पे सुननी हो, पुराने गाने आकाशवाणी पे सुनने हो, सभी विद्यार्थियों के लिए टॉक शोज के माध्यम से ज्ञानवर्धन करने की बात हो, तमाम क्षेत्रों में आकाशवाणी ने काम किया है। टेक्नोलॉजी के साथ साथ आकाशवाणी ने अपने को बदलने का भी काम किया है। एनालॉग से डिजिटल तक का सफर आकाशवाणी का विशेष रूप से कमेंडेबल है। आज के इस चकाचौंध और दिखावटी मीडिया के दौर में आकाशवाणी का एक विशेष स्थान है जो कि हमें अपने जड़ों से जुड़ने के लिए प्रेरित करता है। आकाशवाणी का विशेष रूप से हम धन्यवाद इस बात के लिए भी देना चाहेंगे कि आकाशवाणी के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम सबों के बीच किया जाने वाला मन की बात कार्यक्रम प्रसारित होता है। एक बार पुनः आकाशवाणी को 90 वर्ष पूरे करने के लिए बधाई देते हुए, और आकाशवाणी हम लोगों के बीच जीवन का और हिस्सा बने, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे, आज के युवा आकाशवाणी से जुड़े, इस बात की शुभकामना देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद।
5: मेरा नाम नीलम चौधरी है, मैं एक्स IAS ऑफिसर हूं और एक कथक डांसर भी हूं। आकाशवाणी के 90 वर्ष पूरे होने पर मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयां। आकाशवाणी का नाम आते ही एक स्पंदन सा होने लगता है और याद आता है अपने स्टूडेंट लाइफ का वो स्टडी टेबल जहां हमेशा एक ट्रांजिस्टर रखा रहता था। चूंकि मैं म्यूजिक की फील्ड से हूं, इसीलिए म्यूजिक के लगभग सब कार्यक्रम मैं आकाशवाणी का सुना करती थी, चाहे वो शास्त्रीय संगीत का हो या फिल्मी गानों का हो, गैर फिल्मी गानों का हो, भजन हो, लोक संगीत हो, मैं सब कार्यक्रम सुनती थी और वो सारे गाने मुझे कॉन्सेंट्रेशन देते थे और मुझे पढ़ाई अच्छी मेरी होती थी। मैंने महसूस किया है कि आकाशवाणी ने समाज के हर क्षेत्र, हर वर्ग के लोगों को अपने कार्यक्रम में इनकॉर्पोरेट किया है, चाहे वो कृषि के क्षेत्र से हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र से हो, तकनीकी क्षेत्र से हो, नारी सशक्तिकरण की बात हो, लगभग सभी क्षेत्र के लोगों के लिए इसने कार्यक्रम बनाया है। बच्चों के लिए हो, शाम में 7:30 बजे अनंत सिंह का न्यूज होता था, वो तो बहुत ही लोकप्रिय था और बहुत स्पष्ट और बहुत अनबायस्ड कार्यक्रम हुआ करता था। उसके अलावा नाटक में हवा महल और लोहा सिंह का नाटक हम लोग बहुत इंतजार करते थे और सुनना चाहते थे। तो ये रिचनेस आकाशवाणी में शुरू से रहा है। आज भी हर वर्ग के लिए कार्यक्रम बनाना, उसे सक्सेसफुली प्रसारित करना, ये एक बहुत बड़ी क्वालिटी है आकाशवाणी की और मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरी इच्छा है। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह से 90 वर्षों का सफर तय हुआ, उससे भी और आगे बढ़कर आकाशवाणी अपना कार्यक्रम करे, लोगों में प्रिय रहे और हर वर्ग के लोग इसमें जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर दिनेश सिंह, पद्मश्री, उपाध्यक्ष जम्मू एवं कश्मीर उच्च शिक्षा परिषद और पूर्व कुलपति दिल्ली विश्वविद्यालय।
6: पूर्ण रूप से अपने हृदय बधाई दे रहा हूं आकाशवाणी से जुड़े सारे जो हमारे सहयोगी हैं, और मैं चाहता हूं कि इसको एक त्योहार के रूप में भारत में मनाया जाए, त्योहार के रूप में कि आकाशवाणी ने भारत के लिए क्या किया। मैं आकाशवाणी से बचपन से जुड़ा हूं और आकाशवाणी से अमृत बरसता है पूरे देश में, विश्व में। मैंने यहां से इतनी रचनात्मक युक्तियों को ग्रहण किया है, इसने भारत की आत्मा को आकाशवाणी ने सींचा है। अब इसके जो एनिवर्सरी आ रही है, इसके 90 वर्ष पूरे हो रहे हैं, हम सबको इसमें भागीदारी लेनी है और इस उत्सव को पूर्ण रूप से अपने अपनी जगह मनाना है। आकाशवाणी ने भारत का बहुत भला किया है।

0: ये थी हमारी आज की विशेष प्रस्तुति। उम्मीद है आपको हमारा यह कार्यक्रम पसंद आया होगा। अगली बार हम फिर मिलेंगे नई जानकारियों, नवीन शोध परक बातों एवं विज्ञान जगत की हलचलों के साथ।
1: तो सीखें कुछ नया, सोचें कुछ अलग। आज की विज्ञान पत्रिका विज्ञान भारती को तैयार करने में स्वर सहयोग रहा अल्पी कुमारी और संजय किशोर का। संयोजक थे दिलीप झा और प्रस्तुतकर्ता रजत कुमार। आकाशवाणी पटना।
0: नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज भारत अमेरिका व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में लगातार हो रही प्रगति, क्षेत्रीय तथा वैश्विक शांति और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की। विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने आज नई दिल्ली में सेवा तीर्थ में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारत और अमेरिका वैश्विक भलाई के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। इस बैठक के दौरान विदेश मंत्री डॉ जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भी उपस्थित थे। प्रधानमंत्री कार्यालय ने एक बयान में कहा कि अमेरिका के विदेश मंत्री ने श्री मोदी को रक्षा, रणनीतिक तकनीकों, व्यापार तथा निवेश, ऊर्जा सुरक्षा, कनेक्टिविटी, शिक्षा और लोगों के बीच संबंधों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग में लगातार हो रही प्रगति के बारे में जानकारी दी। श्री रूबियो ने पश्चिम एशिया की स्थिति सहित विभिन्न क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर अमेरिका का दृष्टिकोण साझा किया। श्री मोदी ने शांति प्रयासों के लिए भारत के निरंतर समर्थन की पुष्टि की और बातचीत तथा कूटनीति के माध्यम से संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान की अपनी अपील दोहराई। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिकी दूतावास की सपोर्ट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए श्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में $20 अरब का निवेश किया है। Expanded
1: commercial ties. अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में $20 अरब से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और ज्यादा प्रगति होगी।
1: इस रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर भी हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के युवा एक विकसित भारत की ओर अग्रसर होने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने आज वर्चुअल माध्यम से 19वें रोजगार मेले को संबोधित करते हुए ये बात कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरी दुनिया भारत की विकास यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहिर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निवे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। केंद्र ने रक्षा अवसंरचना को मजबूत करने के लिए भूमि की आवश्यकता के मद्देनजर नई दिल्ली स्थित जिमखाना क्लब को 5 जून तक परिसर खाली करने का निर्देश दिया है। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के अधीन भूमि और विकास कार्यालय के आदेश में कहा गया है कि ये भूमि तत्काल संस्थागत आवश्यकताओं, शासन अवसंरचना और जनहित परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवश्यक है। चीन के शांक्सी प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। ये विस्फोट कल क्यूआन काउंटी के लियो शेनियो कोयला खदान में हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे में हुई जान माल की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी जिनफिंग और चीन की जनता के प्रति संवेदना व्यक्त की है। वियतनाम के दानांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेको से, वहीं 67 किलोग्राम वर्ग में सागर सिंह को एजान खलमा खानों से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। चीन में कोयला खदान विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने घटना पर शोक व्यक्त किया। फ्रांस ने इसराइल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुइर के अपने क्षेत्र में प्रवेश करने पर प्रतिबंध लगाया। और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक जीते। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका जिस तरह से हिंद प्रशांत क्षेत्र को देखता है उसमें भारत की भूमिका सबसे अहम है। नई दिल्ली में अमेरिका दूतावास की स्पॉट एनेक्स बिल्डिंग का उद्घाटन करते हुए विदेश मंत्री रूबियो ने कहा कि भारतीय कंपनियों ने अमेरिका में 20 अरब डॉलर का निवेश किया है।
1: अब हमारे व्यापारिक संबंध और भी बढ़ गए हैं। इसमें भारतीय कंपनियों का अमेरिका में 20 अरब डॉलर से अधिक का निवेश शामिल है। हमने हिंद प्रशांत क्षेत्र में सैन्य अभ्यासों के माध्यम से अपनी सुरक्षा साझेदारी को और भी मजबूत बनाया है। निश्चित रूप से इस महत्वपूर्ण रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए एक व्यवस्थित और सुरक्षित काउंसलर प्रणाली की अत्यंत आवश्यकता है।
0: श्री रूबियो ने कहा कि उनकी इस यात्रा से दोनों देशों के आपसी संबंध और मजबूत होंगे तथा उनमें और अधिक प्रगति होगी।
1: रिश्ते की बुनियाद राष्ट्रपति ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच का आपसी संबंध है। ये एक निजी रिश्ता है। इसकी शुरुआत पहले कार्यकाल के दौरान हुई थी जब राष्ट्रपति ट्रंप को भारत आने का मौका मिला था। ये रिश्ता दूसरे कार्यकाल में भी कायम रहा। आप उन दोनों के बीच के जुड़ाव को साफ साफ देख सकते हैं और मुझे लगता है ये बेहद अहम है।
0: विदेश मंत्री रूबियो ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और अमेरिका के बीच संबंधों को और अधिक मजबूत बनाने के लिए दोनों देशों की ओर से आने वाले समय में कई और रोमांचक तथा नई घोषणाएं की जाएंगी। भारत ने पैक्स सिलिका समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। विदेश मंत्री रूबियो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को दो ऐसे बेहद गंभीर नेता बताया जिनका पूरा ध्यान दीर्घकालिक लक्ष्यों पर केंद्रित है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज महाराष्ट्र के शिरडी स्थित सावली विहर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित तोप के गोले बनाने के वाले संयंत्र का उद्घाटन किया। इस परियोजना को निबे ग्रुप ने विकसित किया है। इस दौरान श्री सिंह ने कहा कि मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से देश रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है।
2: हमने यह समझा सेल्फ रिलायंट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के लिए प्राइवेट सेक्टर की एनर्जी का उपयोग आवश्यक है। इसलिए पॉलिसी रिलेटेड रिफॉर्म्स, नीतिगत सुधार भी किए गए। FDI को, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को लिबरलाइज किया गया। पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट लाई गई। हम लोगों ने एक लंबी लिस्ट मोर देन 5000 आइटम्स की तैयार की है। इस पॉजिटिव इंडिजनाइजेशन लिस्ट में आइटम्स हैं, हम उनको निर्धारित समय के अंदर हम भारत की धरती पर बनाएंगे। हम दुनिया के किसी देश से उसको इम्पोर्ट नहीं करेंगे।
0: रक्षा मंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में निजी क्षेत्र की भागीदारी लगभग 30-35% है, जिसे भविष्य में बढ़ाकर 50% किया जाएगा। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने निबे ग्रुप की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस परियोजना से अहिल्यानगर जिला रक्षा विनिर्माण केंद्र बन गया है। इस दौरान निबे ग्रुप और इसराइल की एक कंपनी के बीच समुद्री विमानों और ऑप्टिकल उपग्रह प्रौद्योगिकी के विकास के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। चीन के शांस्की प्रांत में एक कोयला खदान में गैस विस्फोट के कारण मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हो गई है। यह विस्फोट कल क्याउन काउंटी की ल्यूशेन कोयला खदान में

हुआ। अब तक 201 खनिकों को बचाया जा चुका है। बचाव कार्य जारी है। चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने व्यापक बचाव अभियान और घायलों के उपचार के निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने दुर्घटना के कारणों की गहन जांच की मांग की है। साथ ही कानून के अनुसार दोषियों को सजा दिलाने का भी निर्देश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के शांक्सी प्रांत में खनन हादसे में हुई जानमान की हानि पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने भारत की ओर से राष्ट्रपति शी चिनफिंग और चीन की जनता के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने लापता सभी लोगों की शीघ्र और सुरक्षित वापसी के लिए प्रार्थना की। उन्होंने शोक संतप्त परिवारों को दुख की इस घड़ी में शक्ति प्रदान करने की कामना की। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। फ्रांस ने इसराइल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतामार बेन ग्वीर के फ्रांस में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस के विदेश मंत्री जीन नोएल बेरोट ने कहा कि ये कदम गाजा जा रहे समुद्र बेड़े पर सवार कार्यकर्ताओं के साथ किए जा रहे दुर्व्यवहार को लेकर बढ़ते आक्रोश को दर्शाता है। श्री बेरोट ने यूरोपीय संघ से बेन ग्वीर पर प्रतिबंध लगाने का भी आग्रह किया है। इसराइल के सुरक्षा मंत्री का पुलिस हिरासत में लिए गए कार्यकर्ताओं का मजाक उड़ाता हुआ वीडियो सामने आने के बाद व्यापक आलोचना का सामना करना पड़ा है। कंबोडिया में दो अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में 14 श्रमिकों की मौत हो गई और 93 अन्य घायल हो गए। पहली घटना कंबोडिया के काबोंग छनांग प्रांत में हुई, जहां एक भारी मालवाहक ट्रक श्रमिकों को कारखाने ले जा रहे एक वाहन से टकरा गया। इस दुर्घटना में 9 श्रमिकों की मौत हो गई और 53 अन्य घायल हो गए। दक्षिण पूर्वी प्रांत स्वे रिंग में एक अन्य दुर्घटना में कारखाने के श्रमिकों को ले जा रही एक बस दुर्घटना में 5 लोगों की मौत हो गई और 40 अन्य लोग घायल हो गए। यूक्रेन के सूमी शहर के बाहरी इलाके में रूस के ड्रोन हमलों में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 9 अन्य घायल हो गए। यह हमला यूक्रेन के लुहांस क्षेत्र के रूस नियंत्रित इलाके के स्टारोब्लिक्स में एक कॉलेज के छात्रावास पर हुए ड्रोन हमले के बाद जवाबी सैन्य कार्रवाई में हुआ। स्टारोब्लिक्स में 11 लोग मारे गए थे। इसके अलावा यूक्रेन द्वारा रात भर रूस पर किए गए ड्रोन हमलों में एक रूसी तेल टर्मिनल में आग लग गई, इसमें 2 लोग घायल हो गए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल सोमवार से भारतीय व्यापार जगत के नेताओं के प्रतिनिधिमंडल के साथ कनाडा की 3 दिन की यात्रा पर रहेंगे। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने बताया कि श्री गोयल व्यापार निवेश CEPA वार्ताओं को आगे बढ़ाने के लिए ओटावा और टोरंटो में द्विपक्षीय बैठकें करेंगे। इस दौरे का मुख्य केंद्र बिंदु भारत कनाडा व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता वार्ताओं को आगे बढ़ाना है। इस वर्ष मार्च में प्रधानमंत्री मार्क कार्नी के भारत दौरे के दौरान टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए गए थे। वार्ताओं का पहला दौर मार्च में वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया गया था और दूसरा दौर 8 मई को संपन्न हुआ। इस दौर के दौरान वार्ताओं का एक और दौर सोमवार से शुक्रवार तक ओटावा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सेना की अधिकारी मेजर अभिलाषा बराक को 2025 के संयुक्त राष्ट्र सैन्य लैंगिक समानता सार्थक पुरस्कार दिया गया है। मेजर अभिलाषा बराक लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षा मिशन में कार्यरत हैं। मेजर बराक वर्तमान में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल में महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में भारतीय बटालियन में कार्य करती हैं। मेजर बराक भारतीय सेना की पहली महिला लड़ाकू हेलीकॉप्टर पायलट भी हैं। अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गोबार्ड ने इस्तीफा दे दिया है। सुश्री गोबार्ड ने कहा कि उनके पति की गंभीर बीमारी का पता चलने के बाद ये फैसला लिया गया। वे 30 जून से अपने पद से हट जाएंगी। राष्ट्रपति ट्रंप ने सुश्री गोबार्ड की प्रशंसा करते हुए कहा है कि प्रशासन को उनकी कमी खलेगी। सुश्री गोबार्ड के बाद राष्ट्रीय खुफिया प्रधान उप निदेशक आरोन लुकास कार्यवाहक निदेशक के रूप में कार्यभार संभालेंगे। वियतनाम के दा नांग में आज एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने रजत पदक अपने नाम किए। 60 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में सूरज वशिष्ठ को एबेक एतबेकोव से, वहीं 67 किलोग्राम भार वर्ग में सागर सिंह को एतजान खालमा खनोव से हार का सामना करना पड़ा। प्रतियोगिता में कुमार सचिन ने 77 और रोहित ने 97 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक के अपने मुकाबलों में जीत दर्ज की। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिकी विदेश मंत्री ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। उन्होंने भारत को हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति अमेरिका के दृष्टिकोण की आधारशिला बताया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा, भारत मेक इन इंडिया पहल के माध्यम से रक्षा विनिर्माण में आत्मनिर्भर बन रहा है। चीन में कोयला खदान विस्फोट में मरने वालों की संख्या बढ़कर 90 हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने इस घटना पर शोक व्यक्त किया।
फ्रांस ने इसराइल के सुरक्षा मंत्री इतामार बेन गुरीर के अपने क्षेत्र में प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया और भारतीय पहलवान सूरज वशिष्ठ और सागर सिंह ने वियतनाम में आयोजित एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक अपने नाम किए। और इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।